आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। हिंदी समाचार थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: To youth, to working life, to old age.
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की

0: बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं।

आराधना। श्रोताओं, हमारे देश ने कई नई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज पूरा विश्व भारत को आशा और विश्वास के साथ देखता है। देश की विकास यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हम सभी नागरिक अपने देश से रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत करें।

रंजना का लिखा भक्ति गीत आपने सुना एल नितेश और साथियों के स्वर में, संगीत निर्देशन संजय का था। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, मनुष्य सुख की तलाश में भटकता रहता है। कोई तीर्थों में सुख खोजता है, कोई संपत्ति में, कोई प्रतिष्ठा में, तो कोई भौतिक विलासिता में। भारतीय आख्यानों में कस्तूरी मृग का उदाहरण प्रसिद्ध है। साथियों, मनुष्य की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। वह सुख शांति और आनंद को बाहर खोजता है, जबकि वास्तविक स्रोत उसके अपने अंतर्मन में निहित है।

अनुराधा पौडवाल और साथियों का गाया भक्ति गीत आपने सुना। गीत और संगीत अभिजीत जोशी का था। अब आइए सुनते हैं आराधना कार्यक्रम में मनीष राइटर का लिखा भक्ति गीत, उज्ज्वल कुमार के संगीत निर्देशन में ज्योति रघुवंशी का गाया हुआ।

0: ज्योति रघुवंशी और साथियों का गाया भक्ति गीत आपने सुना। रचना थी मनीष राइटर की और धुन तैयार की थी उज्ज्वल कुमार ने। और इसी के साथ आज की आराधना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। खेती की बात कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है खरीफ उड़द की उन्नत खेती। वाचन स्वर है अभिनव गौराहा के।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। हमारे

0: मुख्य रूप से किसान भाई मन धान के फसल खरीफ के सीजन में लेते हैं। मुंगेली कति देखबो त पार मन में बढ़िया राहर के उन्नत खेती करे जाते, कतको किसान भाई मन उरीद के भी बढ़िया खेती करते। तो आज आप मन ल बताबो, अगर आप मन खरीफ उड़द के उन्नत खेती करना चाहा था तो कौन ढंग से कर सकत था और कौन कौन सा बढ़िया एक हर उन्नत बीज आए। सबले पहली उड़द के खेती बर भुइया के चुनाव बड़ जरूरी होते। ये तो वैसे कोनो भी प्रकार के भूमि में हो जाते, लेकिन कहूँ हल्का रेतीला दोमट या मध्यम आकार के भुइया हवा जौन में पानी निकास के उचित साधन होए। अब भूमि के पीएच मान अगर खेत के आप मन माटी के जांच कराए हो हा तो 7 से 8 के बीच हो, तो ऐसन भूमि में आप मन उड़द के खेती बढ़िया कर सकत हा। उड़द के खेती पर आप मन ला बता दी, ज्यादा अम्ली और ज्यादा क्षारीय भूमि उपयुक्त नहीं हो। अभी के समय बढ़िया सटीक समय है, जब मानसून लठियावत है। 2-3 पैत अभी बढ़िया ढंग से जोत के खेत ला समतल कर लेना है, जेखर से खेत के खरपतवार खत्म हो जाए। ए हका होते जोते ले भुरभुरा बनते और पौधा के बढ़वार बढ़िया ढंग से होते। बुआई के समय की बात करी, मानसून के आगमन होए के बाद 1-2 पैत पानी गिर जावे या जून के अंतिम आखिरी हफ्ता या जुलाई के 15 तारीख तक आप मन बढ़िया ढंग से खर बुआई कर सकत था। बीज के मात्रा के बात करी तो 15 से 20 किलो बीज 1 हेक्टेयर भूमि पर पर्याप्त हो ही। अब अगर 15 किलो 20 किलो बीजा ला 2.5 से भाग करिया तो जितका बचिस वो हमन ला 1 एकड़ पर पर्याप्त हो ही। कोनो भी बीज ला लगाथन तो आजकल देखथन फफूंद के बड़ समस्या होते, आगे चल के रोग राय बीमारी आते। हमार खेत में अतका सुघर तो आजकल जिनिस बाँच नहीं गए जेखर से जौन उमन हमार फसल ला बचा दही। काबर आज के खेती है हमन के दवाई और उर्वरक डाल डाल के बर्बाद हो गई है। तो कोनो भी बीज ला बुआई से पहली फफूंद नाशक दवाई से खचित उपचार कर लेना है। अगर हमन रासायनिक जिनिस में जाबो तो बाविस्टिन या विटावैक्स नामक दवाई से कोई भी एक दवाई 3 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से मिला के बढ़िया खमोच खमोच के बीजा ला हल्का पानी छींच के बीज उपचार करके ओला बो सकत हन। अगर हम जैविक विधि में जाबो तो ट्राइकोडर्मा या राइजोबियम कल्चर विरडी नामक जिन दवाई आते ओमा 5-5 ग्राम मिला के भी बीजोपचार कर सकत हन। ये हमन ला बढ़िया लाभ दही। अब खाद उर्वरक के मात्रा के बात करी तो जतका जेखर से शक्ति उतका हम गोबर के खाद के उपयोग कर सकत हन अपन खेत में। हमरे खेत में ह्यूमस बाढ़ी, हमरे खेत में जैविक जीनिस बाढ़ी। अगर रासायनिक उर्वरक के बात करी, नत्रजन 20 किलोग्राम, स्फुर 50 किलोग्राम के मान से पूरा खाद के मात्रा बुआई के समय कतार में बीजा अगर लाइन से बोथन तो ओकरे तीर में डालना है। दलहनी फसल में गंधक युक्त उर्वरक जैसे सिंगल सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, जिप्सम आदि के उपयोग कर सकत हन। तो अगर हम फास्फोरस बर डीएपी के जगह एसएसपी देथन वह 500-600 रुपया में आ जाही तो ज्यादा फायदा मन रखी। सिंचाई प्रबंधन के बात करी तो वैसे तो बरसाती फसल ला सिंचाई के जरूरत ज्यादा नहीं पड़े, फिर भी 1-2 सिंचाई समय देके कर सकत हन। अब अंत में आप मन ला बढ़िया उन्नत किस्म बताता हूँ, एला नोट कर ले। जवाहर 3 जवाहर 2 ये दोनों 70 से 75 दिन के अवधि है। बीज मध्यम छोटा हल्का, पौधा मध्यम आकार के होते। T9 बसंत बहार, पंत U 30, TPU 4, PU 19, ये सब मन 70 से 80-85 दिन के फसल है। इमन के बीज घलो हा छोटे होते, पौधा सामान्य आकार के होते, दाना बढ़िया करिया होते और कोनो कोनो किस्म हा पीला मोजेक रोग से निरोधी रही थे। ऐसन ढंग से आपन उरीद के उन्नत खेती कर सकत था जौन कम समय में आपन ला लाभ दे दही। राम राम, जय जोहार।
1: खेती की बात कार्यक्रम में अभी आप जानकारी सुन रहे थे। विषय था खरीफ उड़द की उन्नत खेती और वाचन स्वर अभिनव गौरहा की थी। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। इस समय सुबह के 6:35 होने ही वाले हैं। लीजिए पेश है रामचरित मानस का गायन। मुख्य गायक कलाकार हैं सुरेश वाटकर और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिवजी के धनुष भंग का संदेश सुनकर अयोध्या में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ पुत्रों के विवाह के लिए बारात सजाने की तैयारियों में लगे हैं। राम लक्ष्मण तो जनकपुर में हैं, अतः भरत को हाथी घोड़े तथा रथ सजाने का आदेश हुआ। शौर्य का बाना धारण कर रणधीर वीर नगर के बाहर एकत्रित हुए। सभी चुने हुए छैल छबीले वीर चतुर नवयुवक हैं। भेरी और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर इनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं। सारथियों ने ध्वज पताकाओं तथा रत्नाभूषणों से रथ सजाए हैं। अगणित श्यामवर्णी घोड़े ऐसे हैं जो जल पर भी स्थल जैसी द्रुत गति से दौड़ते हैं, ऐसे वेग से कि उनकी टापें पानी में नहीं डूबती। रथों पर चढ़ी बारात नगर के बाहर आ जुटी है। घंटों से सुसज्जित मतवाले हाथी इस प्रकार झूमते चले जैसे सावन के श्यामवर्णी बादलों के झुंड गरजते हुए चलते हैं।

रामचरितमानस का गायन अभी आप सुन रहे थे। मुख्य गायक कलाकार थे सुरेश वाटकर और संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हो चुके हैं साथियों, और अब वक्त है कार्यक्रम नवविहान का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको जानकारी देंगे पोषण अभियान के बारे में।

श्रोताओं, पोषण अभियान प्रधानमंत्री की समग्र पोषण योजना भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण, एनीमिया और कम जन्म के वजन जैसी समस्याओं को कम करना है। पोषण अभियान के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं साथियों। कुपोषण में कमी, इसके तहत बच्चों में बौनापन और अल्प पोषण को चरणबद्ध तरीके से कम किया जाता है। एनीमिया का निदान, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों में खून की कमी को दूर किया जाता है। पहले 1000 दिन, गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म के पहले 1000 दिनों के महत्व पर जोर दिया जाता है, जो बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पोषण अभियान के प्रमुख घटक की बात करें तो पोषण ट्रैकर के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन, इसके जरिए सेवाओं की वास्तविक समय पर निगरानी और लाभार्थियों का पंजीकरण किया जाता है। पोषण माह और पोषण पखवाड़ा, समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष सितंबर महीने में राष्ट्रीय पोषण माह और अप्रैल में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से पौष्टिक आहार बांटे जाते हैं और जागरूकता फैलाई जाती है। समुदाय आधारित गतिविधियां, इसमें गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, बच्चों का अन्न प्राशन और पोषण मेलों का आयोजन सीधे सीधे ग्राम स्तर पर किया जाता है।

इस तरह से साथियों, इसके मुख्य लाभार्थी 0 से 6 साल के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और किशोरियां हैं।

साथियों, ये अभियान न केवल पोषण के स्तर को सुधारने में मदद कर रहा है, बल्कि माताओं और बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव भी रख रहा है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं या पोषण अभियान जन आंदोलन की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।

कार्यक्रम नवविहान के अंतर्गत अभी आप छोटी सी जानकारी सुन रहे थे पोषण अभियान के बारे में। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त होता है कार्यक्रम विवरण का।

कार्यक्रम इनसे मिले सुबह 8:30 पर हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। रायपुर केंद्र से ही रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार सुबह 9:55 पर और 11:55 पर। गुंजे स्वर गांव के इस कार्यक्रम में प्रातः 10 बजे आप सुनेंगे हीरा खंड गोड़वाना का किस्सा। गायन स्वर होंगे दुल्ली चंद टंडन फत्ते राम और साथियों के। साथी सुनेगा बांस गीत। गायक कलाकार होंगे दुर्योधन प्रसाद दुबे और साथी। कार्यक्रम आज सुबह का प्रसारण समय सुबह 7:05 पर। कार्यक्रम गांधी चर्चा सुनेगा सुबह 7:20 पर। आज का विषय होगा प्रतिक्रिया और उत्कर्ष। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से सुबह 7:30 पर और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद पेश करेंगे सुबह 10:30 पर।

प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सुबह 11 बजे। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे सुबह 9 बजे से 9:55 तक, 11:30 से 11:55 तक, 12 बजे से शाम 5 बजे तक और फिर रात 9:15 से रात 11 बजे तक। शाम 5 बजे सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। शाम 7:10 पर हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला। आज का विषय जन विश्वास इज ऑफ डूइंग बिजनेस। शाम 5:05 पर सुनेगा फोन इन कार्यक्रम, विषय होगा जैविक खेती की आवश्यकताएं एवं संभावनाएं। विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमेंद्र कुमार केशरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर। साथ ही सुनेगा गीत, मौसम मंडी की जानकारी दी जाएगी और श्रोताओं को सामयिक सुझाव भी दिए जाएंगे।

0: शाम 5:35 पर युवा जगत कार्यक्रम में आज की बात का विषय बचपन को संवारने में सहयोग करें, नशा पान से दूर रहे। साथी होगा क्रम स्वास्थ्य पत्रिका। ईमेल करें, गीत सुने। फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे। चित्रपट संगीत शाम 7:45 पर आप सुनेंगे और रजनीगंधा कार्यक्रम का प्रसारण समय रात 8:15 पर। रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे मन्ना डे। हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर याद दिला दें, शाम 7:10 पर हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला। आज का विषय जनविश्वास। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे, पहले संस्कृत और फिर हिंदी में।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
1: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% तक कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तेलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे।

0: श्रोताओं, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष 12 जून को यानी आज के दिन मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक जागरूकता फैलाना और बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन का अवसर प्रदान करने हेतु कार्रवाई को मजबूत करना है। साथियों, इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य दुनिया भर में बाल श्रम की स्थिति को उजागर करना, बाल मजदूरों को इस समस्या से बाहर निकालना और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है। श्रोताओं, ये दिन सरकारों, नियोक्ताओं, श्रमिक संगठनों, नागरिक समाज के साथ साथ लाखों लोगों को बाल श्रम को जड़ से खत्म करने के लिए एकजुट करता है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में लाखों बच्चे आज भी ऐसे खतरनाक कामों में लगे हुए हैं जो उनके स्वास्थ्य और विकास के प्रतिकूल हैं। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये दिवस बाल श्रम के मूल कारणों जैसे गरीबी और शिक्षा की कमी पर ध्यान केंद्रित करने और ठोस नीतियां बनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है। हमारे देश में इस संबंध में कुछ किए गए हैं। भारतीय संविधान ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा और बाल श्रम को रोकने के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं। अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी और बेगार यानी बिना वेतन के काम पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक रोजगार में काम करने से रोकता है। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार, दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर आप सुन रहे हैं उमाशंकर पांडे से। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जिले की प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग या मुख्य जिला मार्ग से लेकर सभी शहरी एवं ग्रामीण सड़कों में अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले में यातायात व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। हमारी यही शुभकामना है एवं प्रयास है कि आप सभी की इन सड़कों में यात्रा शुभ हो, सुरक्षित हो, किंतु इसके लिए आवश्यक है आप हमेशा यातायात नियमों का पालन भी करें। मित्रों, प्रायः देखा जाता है सड़क में दौड़ रहे वाहनों में यदि कभी दो वाहन आपस में टकरा गए, कोई बाइक वाला गिर गया, ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि गिरे वाहन को तत्काल उठाकर किनारे लाएं, या चार पहिया वाहन यदि आपस में रगड़ गए हैं तो भी दोनों वाहनों को तत्काल बीच सड़क से किनारे ले जाकर दोनों ही वाहनों के चालकों को आपस में बातें करना चाहिए, किंतु ऐसे में दोनों ही वाहन चालक बीच सड़क में ही बाइक या आपस में टकराए वाहनों को यथावत छोड़कर आपस में वाद विवाद या हाथापाई करने लगते हैं। परिणाम सड़कों में दोनों ही दिशा में वाहनों की कतार लग जाती है, जाम की स्थिति बन जाती है। अतः ऐसे वाहन चालकों से अनुरोध है संबंधित वाहन को तत्काल सड़क से किनारे लाएं ताकि अनावश्यक यातायात बाधित ना हो, लोग परेशान ना हो। साथियों, एक तरफ जहां शासन प्रशासन अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आम लोगों को सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने तत्पर है, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के

0: चलते आम रास्ते में बाधा उत्पन्न करने से नहीं चूकते। प्रायः देखा जाता है कुछ लोग अपने घर या जमीन के पास सड़क में ही भवन निर्माण सामग्री जैसे ईंट, रेत, गिट्टी, मिट्टी, छड़ आदि इस प्रकार रख देते हैं जिससे सड़कें संकीर्ण हो जाती है या रेत, मिट्टी, मुरुमादी के सड़क में बिखरने से दो पहिया वाहन वाले फिसल कर गिरते भी हैं, कई गंभीर दुर्घटना के शिकार भी हो चुके हैं। अतः इस संदेश के माध्यम से ऐसा करने वालों को सख्त हिदायत है कि ऐसा करने से बच जाएं, क्योंकि यह अवैधानिक भी है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये था आज का ट्रैफिक अपडेट।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, जयश्री तलपड़े, जिन्हें हम जयश्री टी के नाम से जानते हैं, एक भारतीय नायिका और नर्तकी हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्म निर्माण और कुछ टीवी निर्माणों में काम करती हैं। तलपड़े ने अपनी करियर की शुरुआत गूंज उठी शहनाई फिल्म से की थी। फिल्मों में आइटम डांस करने के बाद उन्हें लोकप्रियता मिली क्योंकि वे कथक में माहिर थी। हालांकि बाल कलाकार के रूप में उन्होंने पहले ही जगह बना ली थी। उन्होंने अपने मूल नाम तलपड़े के आधार पर जयश्री टी नाम अपनाया। 70 और 80 के दशक में उन्होंने 500 से अधिक फिल्मों में नृत्य किया। हिंदी, अंग्रेजी के अलावा जयश्री टी ने कई भारतीय भाषाओं में अभिनय किया है। जयश्री टी ने रफी, मन्ना डे, मुकेश और आशा भोसले के साथ मंच पर प्रस्तुतियां भी दी हैं। ढेर सारे पुरस्कार उन्हें प्रदान किए गए हैं। 1953 में आज ही के दिन यानी 12 जून को जन्म हुआ था इस खूबसूरत अभिनेत्री और नर्तकी जयश्री तलपड़े का। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं उन्हीं पर फिल्माया ये गाना।

0: इसी के साथ कार्यक्रम आज सुबह बस यहीं तक। आज्ञा दीजिए सीमा को।
1: आज सुबह।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा। आज का विषय है प्रतिक्रिया और उत्कर्ष।

गांधी चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद शीघ्र ही उनके अनुयायियों में गंभीर मतभेद के लक्षण प्रकट होने लगे। कुछ प्रमुख कांग्रेसी नेताओं ने, जिनमें

पंडित मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास भी थे, ये मत प्रकट किया कि काउंसिलों का बहिष्कार समाप्त कर देना चाहिए। प्रांतीय और केंद्रीय लेजिस्लेटिव काउंसिलों के चुनाव में भाग लेने के लिए उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। उनकी राय में काउंसिल प्रवेश शत्रु के गढ़ जीतने के उद्देश्य से उसके अंदर घुसना था। वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी और दूसरे लोग जो मूल असहयोग कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन चाहते थे, अपरिवर्तनवादी कहलाए। 1923 के पूरे वर्ष में कांग्रेस राजनीति में अस्थिरता बनी रही। कुछ लोगों ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति और कांग्रेस महासमिति से इस्तीफा दे दिया। लोगों की नियत पर शुभा किया गया, नियम आपत्तियों के प्रश्न उठाए गए और कांग्रेस संविधान पर अति विस्तारपूर्वक बहस हुई। सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी वालों को अगले नवंबर में होने वाले काउंसिलों के चुनाव में उम्मीदवार खड़े करने की अनुमति दी गई। यद्यपि चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए मुश्किल से 2 महीने मिले, फिर भी स्वराज पार्टी को केंद्रीय विधानसभा में काफी सीटें मिली। प्रांतीय विधानमंडलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला और मध्य प्रांत की परिषद में तो बहुमत ही मिल गया। मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा में और चितरंजन दास ने बंगाल की प्रांतीय परिषद में अपने दल का नेतृत्व संभाला। गांधी जी ने जेल में अभी 2 साल की ही कैद पूरी की थी कि वो फरवरी 1924 में अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन होने के बाद छोड़ दिए गए। उनके अपरिवर्तनवादी भक्तों की आज्ञा थी कि गांधी जी उनका समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत पार्टी में फूट रोकने का उन्होंने भरसक प्रयत्न किया। कांग्रेसी विद्रोही स्वराजिस्टों के प्रति उन्होंने सद्भावना के कई संकेत किए और राजनीतिक मंच पर उनकी प्रधानता बनी रहने दी। वायसराय ने इंग्लैंड भेजे एक पत्र में लिखा था, गांधी जी अब दास और नेहरू का पुछल्ला बन गए हैं। यद्यपि ये लोग अपनी ओर से हर संभव प्रयत्न करते हैं कि गांधी और उनके साथी यही सोचें और समझें कि गांधी जी उनके सरदार नहीं तो सरदारों में से एक तो जरूर है। जेल से छूटने के बाद गांधी जी को यदि पहली निराशा काउंसिल प्रवेश के प्रश्न पर कांग्रेस जनों की आपसी फूट से हुई, तो दूसरी ओर उससे बड़ी निराशा सांप्रदायिक फूट के कारण हुई। असहयोग आंदोलन के उभार के दिनों की हिंदू मुस्लिम एकता की तो अब सिर्फ यादें रह गई थी। पारस्परिक विश्वास का स्थान गहरे अविश्वास ने ले लिया था। सांप्रदायिक दंगे तो हो ही रहे थे, अखबारों और राजनीति में एक नई तरह की कटुता भी आ गई थी। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो असहयोग आंदोलन को खिलाफत से संबद्ध किए जाने को इसका कारण मानते थे और गांधी जी को इस बात के लिए दोषी ठहराते थे कि उन्होंने समय से पहले उकसाकर जनता के साथ खिलवाड़ किया है। गांधी जी ने इसका यह कहकर जवाब दिया था, जनता को जगाना तो राजनीतिक प्रशिक्षण का आवश्यक अंग था, जागी हुई जनता को फिर से सुलाने के लिए तो मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन वो ये भी चाहते थे कि जनता की जागृति का उपयोग रचनात्मक कार्यों में हो। शिक्षा के द्वारा दोनों संप्रदायों की मानसिक जड़ता दूर करने की आवश्यकता का भी वो अनुभव करते थे। उनके मतानुसार अहिंसा देश की स्वतंत्रता की ही नहीं सांप्रदायिक शांति की भी कुंजी थी। सर तोड़ना 2 दिलों को मिलाने का तरीका नहीं है। यदि सभ्य समाज में अहिंसात्मक उपायों से वैयक्तिक झगड़े निपटाए जा सकते हैं तो 2 वर्गों के बीच मतभेदों को दूर करने में हिंसा से क्यों नहीं बचा जा सकता। ये मतभेद पारस्परिक सहिष्णुता और आपसी समझौते से भी दूर हो सकते हैं। गांधी चर्चा में हम करेंगे कुछ और बातें, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्रिय भजन।

इस भजन के बाद कुछ और बातें गांधी जी के संबंध में। सितंबर 1924 में अपने को शुद्ध करने और लोगों को प्रभावित कर सकने की अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने 21 दिन का उपवास किया। उपवास से शांति तो हुई, पर थोड़े ही समय के लिए। सांप्रदायिक झगड़ों का अंत नहीं हुआ। समस्या जिस रूप में उभर कर सामने आई वो थी दोनों संप्रदायों के पेशेवर लोगों के बीच राजनीतिक शक्ति से होने वाले लाभ के लिए लड़ाई। ये रोटी के उन टुकड़ों के लिए छीना झपटी थी जो अंग्रेज भारतीय राजनीतिज्ञों को दे रहे थे। गांधी जी ने घोषणा की कि बहुसंख्यक समुदाय को आत्म बलिदान का आदर्श उपस्थित करना चाहिए। मुसलमानों ने स्वयं गांधी जी द्वारा बाद में पेश किए गए इस प्रस्ताव की खिल्ली उड़ाई कि वे गांधी जी द्वारा दिए गए कोरे चेक को चाहे जहां भुना लें, कोरे चेक तुल्य। इस प्रस्ताव से हिंदुओं में रोष पैदा हुआ। कोरे चेक की ये बात विधानमंडलों में सीटों और सरकारी नौकरियों के लिए तू-तू मैं-मैं के प्रति गांधी जी के दृष्टिकोण की प्रतीक थी। दुर्भाग्यवश इस विषय पर समझौते की बातचीत में हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ वही व्यवहार किया जो ब्रिटिश सरकार का भारतीय राष्ट्रीयता के साथ था। उन्हें रियायतें तो दी, लेकिन बहुत ही थोड़ी और समय निकल जाने पर। अगले 3 वर्षों में राष्ट्र की राजनीति में सांप्रदायिकता और विधानमंडलों में उठने वाले विवादों की प्रधानता बनी रही। गांधी जी राजनीति से अलग हो गए। ये कहना ज्यादा सही होगा कि उन्होंने अपने को समय के राजनीतिक विवादों से अलग रखा और अपना पूरा समय नीचे से ऊपर तक राष्ट्र का निर्माण करने के कम प्रचारित लेकिन अधिक महत्वपूर्ण काम में लगाया। उन्होंने रेल, मोटर या बैलगाड़ी, जो भी सवारी मिली उससे देश का एक छोर से दूसरे छोर तक दौरा किया। वो जहां भी जाते लोगों से बाल विवाह और छुआछूत की युगों पुरानी सामाजिक कुरीतियों को छोड़ने और चरखा चलाने का आग्रह करते। चरखे की सिफारिश मुख्य रूप से गांवों में की संपूर्णता अथवा आंशिक बेकारी मिटाने के लिए की गई थी, लेकिन गांधी जी ने उसे ग्रामोद्योग के एक सरल उपकरण से

ऊंचा उठाकर कुछ और बना दिया। इस प्रयास में कि लोग चरखे को अपना ले, गांधी जी ने उन गुणों को बड़े रोमांचकारी ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने उसे आर्थिक बीमारियों का रामबाण इलाज ही नहीं, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता का मूल मंत्र बताया। चरखा विदेशी राज्य के विरोध का प्रतीक हो गया। खादी ने राष्ट्रीयता प्रदर्शन करने वाले परिधान का रूप ले लिया और जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने एक बार सरस भावना से कहा था, ये आज़ादी की वर्दी बन गई। आज की गांधी चर्चा हम यहीं संपन्न करते हैं। अनुमति दें, नमस्कार।

कार्यक्रम गांधी चर्चा का प्रसारण अभी किया जा रहा था। आज का विषय था प्रतिक्रिया और उत्कर्ष। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:32 हो चुके हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम यादों के झरोखे से।

कण कण में भगवान, इस फिल्म का गाना अभी आपने सुना सुमन कल्याणपुन की आवाज़ में। गीत लिखा था भरत व्यास ने और धुन तैयार की थी शिवराम ने।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

मोहम्मद रफ़ी का गाया गंवार फिल्म का गाना आपने सुना। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन तैयार की थी नौशाद ने। पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें, सुबह 8:30 पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए। रायपुर केंद्र से ही रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार सुबह 9:55 पर और 11:55 पर। 10 बजे सुनेगा कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। आज आप सुनेंगे हीराखंड गुणवाना का किस्सा, गायन स्वर दुल्ली चंद टंडन फत्ते राम और साथियों के। साथ ही सुनेगा बांस गीत, गायक कलाकार होंगे दुर्योधन प्रसाद दुबे और साथी। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर और प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण समय सुबह 11 बजे। ये थी कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, इस फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यादों के झरोखे से कार्यक्रम आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम अपने सुनने वालों को याद दिला दें, आज शाम 7:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला। आज का विषय होगा जनविश्वास। शाम 5:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। शाम 5:05 पर सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम, विषय होगा जैविक खेती की आवश्यकताएं एवं संभावनाएं। विशेषज्ञ डॉक्टर परमेंद्र कुमार केशरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर। साथ ही सुनिएगा गीत मौसम मंडी की जानकारी दी जाएगी और सामयिक सुझाव भी दिए जाएंगे। शाम 5:35 पर युवा जगत कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा बचपन को संवारने में सहयोग करें, नशा पान से दूर रहें। साथ ही होगा क्रम स्वास्थ्य पत्रिका। ये थी कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना गीता दत्त की आवाज में। संगीत निर्देशन ओपी नैयर का था और फिल्म थी 12 ओ क्लॉक।

0: जॉनी मेरा नाम। इस फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, धुन तैयार की थी कल्याण जी आनंद जी ने। और इसी के साथ पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, 8 बजे है समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और

0: वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
1: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो केवाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि

होंगी। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

0: को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं।

0: मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपये होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Centre signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the centre has signed a historic ट्राइपार्टाइट

इनसे मिले कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को दीपक हटवाणी नमस्कार। श्रोताओं, उच्च शिक्षा की अगर बात करें तो हमारे प्रदेश में भी उत्तरोत्तर प्रगति हुई है और इसी प्रगति का एक रूप है आईआईटी भिलाई। आईआईटी भिलाई में अभी वहां पर अध्ययनरत छात्रों को उनका भविष्य किस तरह से नजर आता है, आईआईटी भिलाई में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और हमारे प्रदेश और मध्य भारत के लिए ये कितना महत्व

0: महत्वपूर्ण है। इस संबंध में विस्तार से बातचीत के लिए हमने आमंत्रित किया है आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रोफेसर राजीव प्रकाश जी को। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: आईआईटी भिलाई छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है और ये संस्थान जमीनी स्तर की समस्याओं से जुड़ने के लिए प्रयास करता है, और इनके क्या क्या समाधान हैं इसके बारे में आप सबसे पहले बताएंगे।
1: तो अगर हम इनमें बात करें तो हमें कैटेगरीज में आईआईटी ने तीन कैटेगरी में इन समस्याओं को रखा है। एजुकेशन को हम अभी फिलहाल नहीं लेते, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जिसे हम एग्रीटेक बोलते हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, हेल्थ से रिलेटेड जिसे हेल्थटेक बोलते हैं, हेल्थ से संबंधित टेक्नोलॉजी, और फाइनेंस जिसमें कि हम रोजगार तो उसे फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो इन तीनों को हमने टेक्नोलॉजी से जोड़ा है, एग्रीटेक, हेल्थ टेक एंड फिनटेक। ये हमारी फोकस्ड एरिया है जिसमें आईआईटी का मेजर फोकस है। ऑफ कोर्स एजुकेशन जैसे मैंने कहा, वो तो हम एजुकेशन के लिए ही है, यहाँ इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए हब है। सो आईआईटी भिलाई इस तरह से एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में और फाइनेंस कैसे इंप्रूव किया जाए, इस चारों पे कार्य कर रहा है। जल्दी अगर हम इन चारों को अगर बात करते हैं तो एजुकेशन के लिए स्कूल्स को अडॉप्ट करना, टीयर टू टीयर थ्री कॉलेजेस को लेना और उनके साथ कार्य करना, आईटी पार्क जैसी, रिसर्च पार्क जैसी संस्थाओं को लाने पर विचार करना, और ऑनलाइन एजुकेशन पर बात करना। शायद आगे हमें मौका मिलेगा तो हम इस पर और भी बात करेंगे। हेल्थ टेक पे बात करें तो कैसे हम आज की सुविधाओं को आसानी से गांव तक या वनंचल जो वन में रह रहे हैं वहां तक पहुंचा सकें, उस पर कार्य करना एम्स के साथ मिलकर के, इस पे भी हम कर सकते हैं आपके साथ। और फिनटेक में आपके जो यहाँ के लोगों में अपनी खूबियां हैं, जो हुनर है इस राज्य की अपनी, जिसके लिए ये नोन है, उस एरिया में काम करते हुए, उन व्यवसायों पर काम करते हुए, उसमें कैसे हम धन अर्जन करा सकें, उनको उनकी वृद्धि कर सकें, धन की प्राप्ति की, और कैसे उनको आधुनिक बना सकें, इस पर कार्य करना। तो इसमें कार्य करने के लिए हम लोगों से जुड़ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे महिलाओं से जुड़ करके 4000 से ज़्यादा महिलाओं को हमने ट्रेनर बनाया है जो ट्रेनिंग दे रही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं को, तो उनसे उनके व्यवसायों को आगे ले जाना, वनों में जाकर के कुछ प्रोजेक्ट चलाना। तो जैसे ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए आईआईटी भिलाई ने पूरे देश के लिए कार्य किया, विशेष ध्यान छत्तीसगढ़ पर रखते हुए कुल 20 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आईआईटी भिलाई ने दिए। ये प्रोजेक्ट्स ऐसे थे कि जिसमें विभिन्न संस्थानों में इन के लोग जो उत्सुक हैं इस तरह के कार्य करने के लिए, जिसमें ट्राइबल डेवलपमेंट की बात की जाए, तो उन एरियाज में उन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए जो जमा किए आईआईटी में, उसका हमने रिव्यू किया और उनके साथ हैंड होल्डिंग करके और उन्हें धन भी दिया और उनकी फंडिंग करके ऐसे प्रोजेक्ट्स को चला, तो जिनसे कि छोटे छोटे रोजगार आए, व्यवसाय आए, जो कार्य वो कर रहे हैं उसको आगे लेके चले। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आईआईटी के पाठ्यक्रम भी उस तरह से बताते हैं, छात्र छात्राओं में भी उस तरह का भावना प्रकट हो, ऐसा करके भी लोगों ने कोशिश की है। एडॉप्टेशन स्कूलों का करना, ऐसा हम लोगों ने शुरू किया। अभी एक स्कूल जिसको कि हमारे ठीक बाउंड्री वॉल से लगा हुआ आप कह सकते हैं कि स्कूल था, जिनमें बच्चे बड़े ही उत्सुकता के साथ हम लोगों के साथ जुड़ते थे, आते थे, पढ़ते थे, तो उनको हमारे यहाँ के अध्यापक लोग भी और छात्र भी सब ध्यान रखते थे, तो उन बच्चों के रिजल्ट्स आए अभी, तो देख के बहुत खुशी हुआ कि 75% से ऊपर सभी ने मार्क्स पाए जो भी हमसे जुड़े हुए थे, और प्लस उन्हें बहुत सीखी, इवन एआई भी उनको सिखाते हैं स्कूल लेवल से। तो इस तरह से इन चीजों पर हम लोग कार्य कर रहे हैं।
0: प्रदेश की स्थिति के अनुसार, यहाँ की समस्याओं को, यहाँ की जरूरतों को समझते हुए आईआईटी भिलाई कार्य कर रहा है जैसे बताया। अब हम भिलाई के कैंपस के बारे में जानना चाहेंगे कि इस कैंपस के नए इंफ्रास्ट्रक्चर और अत्याधुनिक लैब और दूसरी खासियतों के बारे में भी आप बताएं।
1: अगर कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यह गृह अवार्डी कैंपस है, गृह 5-स्टार अवार्ड इस कैंपस को मिला है, इसके डिज़ाइन को, इस कैंपस को हम

0: नेट जीरो जिसे कहते हैं, मतलब आप कंप्लीट रूप से अपने पानी, अपने बिजली के लिए, आप अपने ऊपर, अपनी ऊर्जा के लिए अपने ही उसे पैदा करें, इसकी तरफ हम अग्रसर हैं। एनर्जी में भी अभी एक बड़ी पहल की है, हमारे सारे बिल्डिंग में जो भी जितनी भी हैं, कुल 1.5 लाख स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन है 400 एकड़ में। तो इन सब का रूफटॉप खाली जनरली फ्री होता है, तो उसके ऊपर सोलर एनर्जी लगाई जाए। अभी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि हम सोलर एरिया में पूरी दुनिया में आगे जा रहे हैं। और सो बहुत इजी है, इससे आपका वो बिल्डिंग भी कूलिंग रहती है अगर छत पे अगर सोलर पैनल लगे हैं, तो हम अपनी भी खुद पूरा बना सके, इसकी हम अग्रसर हैं। नई आधुनिक सुविधाओं की अगर आप बात करें, तो चूंकि नई IITs हैं, तो ये कि फायदा, एक लाभ मिलता है आपको कि आप पुरानी सारी IITs में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या कमियां थी, क्या होना चाहिए, उसे आपको देखने का एक मौका मिल जाता है। और आप शुरू से ही उन बातों को देख करके, सोच करके आगे बनाते हैं। दुनिया की स्टेट ऑफ आर्ट जो है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, आप उसे लाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब लाने की कोशिश की गई। IIT भिलाई को 2 फेज में पूरा होना है। पहला फेज पूरा हो चुका 2024 में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया February 20, 2024 को, और डेडिकेट किया नेशन को। फेज टू अब जल्दी ही शुरू होगा, और इतना ही करीब करीब 1.5 लाख स्क्वायर मीटर एरिया का निर्माण फिर से किया जाएगा। और इस तरह से 2 फेजेस के बाद ये एक कह सकते हैं कि आधुनिकतम IITs में से एक होगा। स्टेट ऑफ आर्ट सुविधाएं हैं, अच्छे से अच्छे उपकरण जिनकी आप जरूरत सोच सकते हैं, इंजीनियर वो हैं। नए नए विषय भी जोड़े गए हैं, मेकाट्रॉनिक्स जैसा विषय जो आधुनिक विषय है, जिसमें अभी बहुत कम IITs शिक्षा दे रहे हैं, वो मेकाट्रॉनिक्स की हम पढ़ाई कराते, टिक भी हम देते हैं। और EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अभी बड़े डिमांड में, पे भी हम एक अलग से डिसिप्लिन ही रखा है, डिसिप्लिन है EV जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। AI, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, ये सारे तो आज बहुत ही आधुनिक सब्जेक्ट हैं, जिसमें कि साइबर सिक्योरिटी और क्रिप्टो, ये सारे सब्जेक्ट्स पर हमें पढ़ाइयाँ, रिसर्च हो रहे हैं। इन्वायरमेंट से प्रति जागरूकता रहे, सजगता रहे, इसलिए छात्र छात्राओं को उस पर भी क्लासेस कराई जाती हैं। इंटरप्रेन्योरशिप छात्र में शुरू से ही, जॉब सीकर ना हो, जॉब देने की भावना आए, जॉब अपना करें, खुद करें, ऐसा करने के लिए इंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स, इंटरप्रेन्योरशिप पर भी कोर्सेज चलाए जाते हैं।
1: राजीव सर, यहाँ 3D मॉडलिंग और डिज़ाइन कोर्स पर भी खास जोर दिया जाता है, हमें पता चला है। तो आप बताएं कि फैब्रिकेशन लैब और इलेक्ट्रिकल लैब और 3D प्रिंटिंग लैब के बारे में, जो कि 3D मॉडलिंग और डिज़ाइन कोर्स का एक अहम हिस्सा है।
0: एकदम आपने सही कहा। आज अगर आप देखें तो 3D प्रिंटिंग से आर्टिफिशियल ऑर्गन्स भी बनाए जा रहे हैं, 3D प्रिंटिंग से तरह तरह के स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, और 3D प्रिंटिंग से यहाँ तक कि घर और मकान भी बनाए जा रहे हैं। तो ये 3D प्रिंटिंग आप कह सकते हैं कि इसको अगर हम मैकेनिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इन तीनों में अगर मिला के देखें, तो 3D प्रिंटिंग का काफ़ी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, और इस बात को शुरू से ही सोचा गया। तो प्रोटोटाइप 3D प्रिंटिंग जैसी लैब को हम लोगों ने शुरू से ही ध्यान देते हुए बनाया। तो इस दिशा में जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, आधुनिक से आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सबको ला करके हम लोगों ने एक 3D प्रिंटिंग लैब बनाई है। बहुत आधुनिक लैब है, इसमें स्टूडेंट्स आ करके सीख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। और इंडस्ट्रीज जो जिन्हें, जैसे मैंने कहा, अगर इम्प्लांट इम्प्लांट मटेरियल्स लेना है कोई बायोमेडिकल में, या कोई सर्जरी के लिए, तो उस तरह के इम्प्लांट्स भी बनाए जा सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स या किसी और सेक्टर में अगर किसी स्पेसिफिक टूल्स की जरूरत हो, जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट को हम लोगों ने ये ऑफर दे रखा है कि कोई स्पेसिफिक पार्ट टूल का जरूरत हो, तो उसको हम के आपको दे सकते हैं। तो ये सारी एरियाज के लिए 3D प्रिंट उपयोग हो रहा है, और हम लोग इस एरिया में अच्छे से IIT भिलाई में एस्टेब्लिश है।
1: अगर हम देश की नई शिक्षा नीति 2020 की बात, तो इसके तहत IIT भिलाई में कौन-कौन से नए प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं, इसके बारे में आप
0: जी,
1: बताएं।
0: महत्वपूर्ण ये विषय है। नई शिक्षा नीति जो हमारे राष्ट्र की आई, जिसे हम NEP कहते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020,

0: इसके तहत अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ फ्रीडम था, काफ़ी कुछ रिलैक्स किया गया उनको, बहुत सारे ऐसे विषयों को पढ़ने में भी सहायता पहुंचाने की कोशिश की गई जिन्हें कि कन्वेंशनल सिस्टम में नहीं पढ़ा जा सकता था या मुश्किल था। अगर बड़ा ही आसान शब्दों में अगर हम इसे समझाएं तो साइंस का विद्यार्थी साइंस पढ़ेगा, आर्ट्स का विद्यार्थी आर्ट्स पढ़ेगा, मेडिकल का विद्यार्थी मेडिकल पढ़ेगा, ऐसा करके है, जिसमें कि अभी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश की गई। जैसा मैंने आपको कहा कि हम हमारा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट मेडिकल भी पढ़ सकते, कुछ भी विषय जैसे हमारे यहाँ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अगर शुरू की गई तो हमारे स्टूडेंट्स एम्स में भी जा करके क्लासेस करते हैं, तो हफ्ते में एक दिन वो स्टूडेंट्स एम्स जाते हैं, वहाँ पे क्लास करते हैं। तो ऐसे विषयों को लाया गया, सेलेबस को नया बनाया गया और सेलेबस में इस तरह की छूट दी गई, ऐसी बातों को डाला गया कि जिससे कि स्टूडेंट्स अपनी चाहत के हिसाब से सब्जेक्ट को ले सके। हाँ, पर न हो जाए, एक उनको डायरेक्शन भी दिया गया और सब्जेक्ट्स को लिंक्स भी किया गया कि ताकि वो इंटरडिसिप्लिनरी या ट्रांसडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स बने रहें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र अगर बायोलॉजी पढ़ना चाहता है तो ठीक है, वो इसलिए पढ़ना चाहता है कि बहुत से बायोलॉजिकल सिस्टम्स में हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है, फ्लूइड डायनेमिक्स की जरूरत पड़ती है, तो इन सब को सोच करके उस तरह के सेलेबस को भी बनाया गया। प्लस इसके अलावा हॉबी कोर्सेज या अपनी इच्छा के अनुसार कुछ कोर्सेज लेने के लिए उन्हें फ्रीडम दी जाए, जो कि ठीक है, वो अपनी हॉबी के हिसाब से लेगा। वो म्यूजिक पढ़ना चाहता है इंजीनियरिंग करते करते, तो ऐसे ओपन इलेक्टिव्स के नाम पे ओपन कोर्सेज भी कोर्सेज लाए गए। नए प्रोग्राम्स की शुरुआत, जैसे मैंने पहले भी अभी बताया, कई नए कोर्सेज भी आईआईटी ने शुरू किए हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण और बात है कि हमने एनईपी में मल्टीपल इंट्री तो नहीं कह सकेंगे कि अभी पूरी तरह से हम लागू कर पाए हैं, बट एग्जिट दिया है। अगर स्टूडेंट ने काम करते हुए लगा कि नहीं, उसे एक वर्ष जा करके अपना कोई रोजगार, अपना कोई स्टार्टअप या कोई और बात करनी चाहिए, या कहीं और जाके उसको एक साल पढ़ना चाहिए, तो इस तरह का सेमेस्टर से सेमेस्टर आउट करने का प्रोग्राम, सेमेस्टर ब्रेक का प्रोग्राम इस तरह के, या वो ड्रॉप करना चाहे कि नहीं ठीक है, मैं 2 साल पढ़ लिया, अब मुझे अपना काम का शुरू करना है, रोजगार शुरू करना है, तो उसे एक एग्जिट के लिए डिप्लोमा दे करके, डिग्री की जगह बीटेक की जगह डिप्लोमा दिया, सर्टिफिकेट दिया, ऐसा व्यवस्था भी कर दी गई है। एक बात और जोड़ेंगे, सिर्फ यही नहीं, एनईपी सिर्फ आईआईटी भिलाई ही नहीं लागू करे, हम एनईपी और संस्थान कैसे लागू करें, उसके लिए आईआईटी आज एक नॉलेज हब की तरह है। हमने यहां की और तमाम यूनिवर्सिटीज में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में, उनको भी हम जाकर के ट्रेनिंग दे रहे हैं या उनके लोग आकर के हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। अभी हाल में कई स्कूल के प्रिंसिपल्स के कई प्रोग्राम हुए जिसमें 50-50 की टोलियां बना करके उनके प्राध्यापकों को, उनके आचार्यों को बुला करके ट्रेनिंग दिया गया। तो एनईपी को राज्य में अच्छे से लागू करने के लिए आईआईटी भिलाई कटिबद्ध है।
1: श्रोताओं, इनसे मिले कार्यक्रम में आज हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रोफेसर प्रकाश जी को, और आप आईआईटी भिलाई से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दे रहे हैं। तो राजीव सर, इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले मन कर रहा है कि आपकी पसंद का एक फिल्मी गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाया जाए।
0: एक दो गीत ऐसे हैं जो काफी दिल के करीब रहे हैं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रीत।

0: श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रोफेसर राजू प्रकाश जी। राजू साहब, आज का दौर प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के साथ साथ ऑनलाइन का भी सहारा ले रहा है और आज तो ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने में ऑनलाइन के कार्यक्रम की बात करें तो ये किस तरह सहायक साबित हो रहा है?
1: बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑफलाइन शिक्षा दे पाना, सभी को एक जगह बुला करके क्लासरूम में बिठा के शिक्षा दे पाना, ये थोड़ा मुश्किल भी है और मैं मानता हूं कि ये उतना अनिवार्य भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको आप आसानी से ऑनलाइन से दूरस्थ शिक्षा दे करके कर सकते हैं और वो अपने जगह पे बैठे हुए, अपने संस्थान पे रहते हुए उस शिक्षा को ले सकता है और कर सकते हैं। ऐसा करके आईआईटीज ही नहीं, बहुत से और भी संस्थानों में ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुआ। आप एक तरह से कह सकते हैं कि इसका एक सफल प्रयोग कोविड के दौरान हुआ, जो उस समय ऑनलाइन एजुकेशन शुरू किया गया वो आगे भी बड़े सफलता से चलता रहा। आईआईटी भिलाई भी बहुत सारी डिग्रियां, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑनलाइन देते हैं। और इसमें एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऑनलाइन एजुकेशन में हम लोगों ने बहुत डिग्रियां ऐसी इंट्रोड्यूस की हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऐसे इंट्रोड्यूस किए हैं जिसके लिए आपको जेईई एडवांस जैसी परीक्षा को पास करके आने की जरूरत नहीं है। बिना उन परीक्षाओं के पास किए भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जैसे उदाहरण दे रहे हैं, आप किसी इंडस्ट्रीज में इंजीनियर हैं, आप वहाँ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयड हैं। अब आपको लगता है एक नया एआई आ गया, एमएल आ गया और एआई एमएल का ज़माना है, अब हम कैसे अपने को इम्प्रूव कर लें, अपस्किल कर लें, तो इसके लिए आप अपने कार्य को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप करते रहिए। परमिशन ले लीजिए वहाँ अपने एम्प्लॉयर से कि मैं एक ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम है आईआईटी का, मैं वहाँ जुड़ना चाहता हूँ, और आप जुड़ जाइए इस प्रोग्राम में। ये सारे कोर्सेज या तो शाम को चलते हैं, नहीं तो वीकेंड्स पे चलते हैं, और वीकेंड्स में एक

0: से पैकेज बना करके ये डिलीवर करते हैं, वैसा ही है जैसा कि आपके सेमेस्टर्स होते हैं प्रोग्राम्स में, दो हर साल में 2 सेमेस्टर एग्जामिनेशन। हाँ, एग्जामिनेशन के लिए हम लोग ऑफलाइन बुलाते हैं, बीच बीच में भी हम लोग ऑफलाइन बुलाते रहते हैं ताकि आप कैंपस को देख सकें, और आप उस तरह से ही उन सब्जेक्ट्स में जो हम ऑफलाइन दे रहे हैं, आप ऑनलाइन भी उन सब्जेक्ट्स में अपनी डिग्री को प्राप्त कर सकते हैं।
1: हमारा छत्तीसगढ़ राज्य एक जनजाति बाहुल्य राज्य है। अगर हम जनजातियों के लिए शोध की बात करें तो आईआईटी भिलाई में किस तरह के शोध किए जा रहे हैं?
0: जैसे मैंने पहले भी कहा, जनजातीय समाज हमारा जुड़ा हुआ है खेती से, वनों से, वनोपज से, और कुछ ऐसे रोजगारों से जो यहाँ के लिए यूनिक हैं, खनन से संबंधित हैं, लॉ से संबंधित हैं, एलॉयज हैं, जैसे कि मेटल वर्क यहाँ का बहुत फेमस है, बहुत से बुनकरी और काश्तकारी भी फेमस है। अगर कोसा करें तो कोसा सिल्क, उससे बने हुए वस्त्र, आभूषण, ये सारे यहाँ किए, और ये अपने आप में अनूठे हैं, ये कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेटल वर्क की बात करें, आईआईटी के लिए एक एक, एक एरिया है मेटलर्जी जिसे हम कहें, और मेटलर्जी में जब हम यहाँ का मेटल वर्क देखते हैं, यहाँ का एलॉय देखते हैं, तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि हजारों साल पहले उस तरह के एलॉयज, उस तरह के मेटल वर्क यहाँ होते, जो अपने आप में बहुत ही अनूठे हैं, और उस तरह से मेटल वर्क कैसे इन्होंने किया, इसको सोच करके आश्चर्य होता है। इसके अलावा है कोसा, है कोसा सिल्क है, बट ये सारी एरियाज में अभी आधुनिकता लाने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते हैं कि इनके ज्ञान है, इनका नॉलेज जो है उसको चेंज करने की जरूरत है, नहीं, उसको सपोर्ट करने के लिए आधुनिकता लाने की जरूरत है, उसको सपोर्ट करने के लिए मशीन की जरूरत है। इसलिए उनकी अपने नॉलेज को, उनकी अपने हुनर को देखते हुए हम ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चला रहा है, दे रहा है, जो उनको सुविधाजनक हो। एक छोटे छोटे उदाहरण इसके साथ लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे वनोपज है, और बहुत ही अच्छे अच्छे वनोपज है, महुआ से लेकर के फुटू तक की बात है, और वो अपने में बहुत ही पौष्टिक भी हैं, उनके अच्छे खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं, बट उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका प्रोसेसिंग, ये अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो उसमें कुछ मशीनें डाल दी जाए जो आसानी से उनको प्रोसेस कर सके, उन्हें सुखा सके, काट सके, सीड बाहर निकाल सके। इमली है तो कैसे जल्दी से सीड को बाहर निकाला जा सकता है, कैसे उसे हम ड्राई करवा सकते हैं, उसके पाउडर बना सकते हैं, ताकि ये उसका कोई दूसरा प्रोडक्ट बना सके। तो इस तरह से वनोपज में उन्हें सुविधाएं करने के लिए वो आसान टेक्नोलॉजीज को देना। तो अभी बस्तर पंडुम हुआ था, तो बस्तर पंडुम में आईआईटी भिलाई ने एक बड़ा स्टॉल लगाया, जिसमें छोटे छोटे ऐसे उपकरणों की वहां पर मेला लगाई कि भाई ये उपकरण आईआईटी भिलाई आपको बहुत आसानी से सस्ते में या लोन में उपलब्ध करा सकता है। उसकी बात करें तो यहां पर कोसा सिल्क और टेक्सटाइल्स है, तो टेक्सटाइल्स के भी एरिया में हम लोगों ने अभी कैसे आप उसमें नए डिजाइन को ला सकते हैं, कंप्यूटर एडिट प्रोग्राम कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग उनको मदद पहुंचा रहे हैं। मेटल वर्क के लिए जो मैंने पहले भी आपसे कहा, उनकी मेटलर्जी धीरे धीरे यहां पर यह कार्य कम होता गया, बंद होने लगा, लेकिन इसके लिए प्रोत्साहन देने के लिए भी प्रोजेक्ट्स हम लोग लगा रहे हैं, अपने यहाँ भी हम लोग वर्कशॉप करते हैं, उनको भी उसमें प्रोत्साहन करना। और एक लास्ट जोड़ेंगे इसमें, यहाँ की औषधियाँ जो वनोपषधि हैं, जिसमें कि आपकी यहाँ महारत है, उसमें आइडेंटिफिकेशन, वैलिडेशन, करेक्टराइजेशन, ये सब करने के बाद उन औषधियों को ऑथेंटिक रूप से आप बाजार में पहुंचा सके, क्योंकि मार्केट में पहुंचने के बाद ये लगता है कि ये औषधि ठीक है लेना क्या, कि नहीं ठीक, नहीं ठीक है क्या, इससे साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे। इन भ्रमों को दूर करने के लिए अगर आईआईटी उनकी जांच स्वतः करके और ऐसे औषधि को अप्रमाणित कर दे कि नहीं ये ठीक है सकते हैं, तो ये आयुर्वेदा संस्थान के साथ मिलकर के, यहाँ के वैद्यों के साथ मिलकर के आईआईटी इसमें कार्य पिछले 1 वर्षों से कर रहा है, और उम्मीद है बहुत जल्द ही कुछ ऐसे औषधियों को भी मार्केट में ला दिया जाएगा।
1: राजीव सर, 2024 में माननीय राज्यपाल जी ने सीसीएलटी की स्थापना की थी, यानी कि आईआईटी भिलाई में संस्कृति, भाषा और परंपरा अध्ययन केंद्र। तो
0: जी
1: आप बताएंगे कि

0: वर्तमान में ये किस तरह से कार्य कर रहा है?
1: ये जनजातीय समुदाय से जुड़ी हुई ही बात है जो आपने अभी अपना प्रश्न किया था, ये उसी से जुड़ते हुए एक केंद्र की स्थापना करना। भाषा है, संस्कृति है, उनकी परंपराएं हैं, तो इन परंपराओं को, संस्कृति को कैसे बनाए रखा जाए, संजोए रखा जाए।
0: राजू सर, हाल ही में आईआईटी भिलाई ने दुर्ग जिला प्रशासन के साथ मिलकर आईटी पार्क का उद्घाटन किया है, तो इसके उद्घाटन में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, तो आप बताएंगे कि इस आईटी पार्क का उद्देश्य क्या है?
1: आईटी पार्क का, जिसमें कि हमारे जो भी युवा हैं वो आईटी और आईओटी, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स कहते हैं आईओटी, और आईटी और आईओटी से रिलेटेड अपने रोजगार को आगे ले जाना चाहते हैं ऐसे युवा, उन युवाओं को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जहां से वो एक आसान शुरुआत कर सकें, जिसमें उनको नॉलेज मिल सके, सपोर्ट मिल सके, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके और गाइडेंस मिले, ताकि जब शुरुआती दौर में कोई स्टार्टअप चलता है तो उसमें बड़ा रिस्क होता है और ज़्यादातर स्टार्टअप वहीं पे बंद हो जाते हैं। ऐसा ना होने पाए इसलिए देश भर में जगह जगह आईटी पार्क, रिसर्च पार्क, ऐसे पार्कों की स्थापना की जा रही है।
0: देश और प्रदेश के युवाओं की आंखों में आने वाले कल के ढेर सारे सपने हैं, और उन सपनों को साकार करने के लिए वे प्रयासरत भी हैं, तो वे अपने मार्ग पर अपने लक्ष्य को निर्धारित करके सही दिशा में आगे बढ़ें। इसके लिए हमारे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय शिक्षा, उसका अध्ययन करना। आज किसी न किसी तरीके से आप विश्वविद्यालयों से, विद्यालयों से, इंजीनियरिंग एजुकेशन हो, चाहे आर्ट्स हो, ह्यूमनिटीज हो, कोई भी एरिया हो, उनसे जुड़िए। बहुत तरीके हैं उनसे जुड़ने का, केवल डिग्री के लिए नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और सहयोग की भावना के साथ, टीम वर्क के साथ आगे बढ़ती। कोई भेद नहीं, न जाति का, न धर्म का, न राज्य का, न क्षेत्र का, न भाषा का, एक होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। इस भाव के साथ और वसुधैव कुटुंबकम को मानते हुए कि हमें दुनिया के कल्याण के लिए बात सोच करके करनी है, बढ़े थोड़ा एक बात का ध्यान रखते हुए कि हम अपने लिए ही केवल नहीं, केवल अपने बार के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या हितकर है, ऐसा सोच के चलें। यही भारतीयता है, यही भारतीय धर्म।
0: तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये संदेश हमारे सभी युवाओं तक पहुंचेगा, और वे युवा अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूर्ण संकल्प के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे, और उनके जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई अगर आए तो उसका सामना भी पूरी हिम्मत के साथ करते हुए वे आगे बढ़ेंगे। यही हमारी शुभकामनाएं आपके इस वक्तव्य के साथ हमारे सभी युवा साथियों के लिए रहेगी, सभी विद्यार्थियों के लिए रहेगी। राजीव प्रकाश जी, आज आपने आकाशवाणी में पधार कर आईआईटी भिलाई के बारे बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। इस मुलाकात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ इनसे मिले कार्यक्रम का ये अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।

कार्यक्रम इनसे मिलिए अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। श्रोताओं, अब से लेकर 9:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: जब शोर भरी दुनिया में विविध भारती हो आपके संग, तो घुलता है सुकून का रंग। दिन में 11 बजे जब आप सुनते हैं रंग तरंग, गैर फिल्मी गजलें, गीत और कव्वालियों का सफर।
1: ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो।
0: रंग तरंग हर रोज दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

संस्कृति से चित्रलोक, अलकायग्निक और शान की आवाजें। फिल्म का नाम बस इतना सा ख्वाब है,

अब सुन रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम। विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपको नए फिल्मी गीत सुनाते हैं। अब आज का ये कार्यक्रम यहीं खत्म होता है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: यह है विविध भारती।
3: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार हैं गुजरे जमाने के जानी मानी ऐसी अदाकारा जो हैं बला की खूबसूरत, जिनके चेहरे पर है नूर।

0: अभिनेत्री श्यामा लाहौर में एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। उनके माता पिता ने उनका नाम खुर्शीद अख्तर रखा था। फिल्मों में आने के बाद उनका नाम श्यामा पड़ा।
1: एक दिन मैं गई प्रकाश पिक्चर
0: जी,
1: प्रकाश पिक्चर वालों ने मुझे बुलाया और उसमें कहा, नई माँ एक पिक्चर थी, उसमें रोल था छोटी लड़की का
0: जी।
1: तो मुझे बीजू भाई ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मैंने कहा खुर्शीद अख्तर। तो कह लगे खुर्शीद तो गाने वाली है, और फिर हमारे पास एक दूसरी भी है खुर्शीद, वो है खुर्शीद जूनियर, और ये तुम सीनियर कहाँ से आ गई
0: जी।
1: तो मैंने कहा तो फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं। मैंने कहा जैसे आप कहें। तो उन्होंने मुझे मेरा नाम श्यामा दिया।
0: अच्छा, उस समय
1: और मुझे वो नाम इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि लोगों को अभी तक याद है कि श्यामा कौन है
0: जी। बिल्कुल।

दोस्तों 9 साल की नन्ही खुर्शीद ने पहली बार फिल्म जीनत की कवाली में बतौर सिंगर काम किया। उन दिनों नूरजहां की किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और खुर्शीद अख्तर यानी श्यामा अपनी सहेलियों के साथ पहुंच गई दादर के स्टूडियो में शूटिंग देखने। तभी उस फिल्म के निर्देशक और नूरजहां के पति शौकत हुसैन ने पूछा कि तुम में से कोई लड़की इस फिल्म में काम करोगी। इस पर श्यामा ने तुरंत कहा, हाँ मैं करूंगी। बस इस तरह श्यामा का फिल्मी पर्दे की शुरुआत हो गई। हालांकि श्यामा के माता पिता हरगिज नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में काम करें, लेकिन श्यामा के जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा।

गाने में सिचुएशन ये है कि कार में गुरुदत्त और श्यामा हैं और रूठे हुए गुरुदत्त को श्यामा मना रही हैं। उन्होंने आंखों और चेहरे के भावों से ऐसी खास अदायगी की है कि जब जब आंखों से और चेहरे से अभिनय की बात चलती है तो श्यामा का नाम आता है।

श्यामा को बचपन से ही एक्टिंग और डांस से बेहद प्यार रहा है। स्कूल के दिनों में लंच टाइम में वे डेस्क पर खड़ी होकर डांस किया करती थीं। बाद में उन्होंने नृत्य और गायन की बाकायदा तालीम ली। घर में फुर्सत के लम्हों में डांस की प्रैक्टिस किया करती थीं। अब सुनिए फिल्म शारदा का ये गीत।

0: श्यामा को फिल्म शारदा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म देखने की बड़ी शौकीन रही हैं श्यामा। खास बात यह है कि करीब करीब हर फिल्मों से जुड़ी उनकी याद आज भी ताजा है।
1: जब मैं साइड हीरोइन बनी
2: जी,
1: तो तब दिलीप साहब के साथ एक पिक्चर आई थी मेरी, और उसका नाम था तराना
2: जी,
1: जिसमें थी मधुबाला और दिलीप साहब और श्यामा ही कहूंगी अपने आप को अब
2: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर पिक्चर मिली मुझे सजा। सजा पिक्चर में भी देवानंद साहब थे और निमी जी।
0: उस दौर के जाने माने सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री ने श्यामा की खूबसूरती को कैमरे के लेंस से देखते हुए और सेल्यूलॉइड पर उतारते हुए उन्हें दिल में उतार लिया। फली मिस्त्री और श्यामा पहले प्यार के बंधन में बंधे और सन 1953 में फली मिस्त्री से उनका विवाह हो गया।

1979 में श्यामा अकेलेपन से घिर गईं और उनके पति फली मिस्त्री उन्हें इस फानी दुनिया में अकेला छोड़ गए। लेकिन श्यामा हिम्मत नहीं हारी, वे कदम दर कदम आगे बढ़ती गईं फिल्म संसार में। अभिनेत्री श्यामा ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। फिल्मी पर्दे पर लगभग एक दशक श्यामा का एक छत्र राज था, यानी पांचवें दशक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में उनका नाम शुमार था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की इस छवि को श्यामा ने कभी धूमिल नहीं होने दिया। उन दिनों सशक्त अभिनय के चलते उनके पास फिल्मों की भरमार थी, उनकी अदाकारी के जलवे थे और श्यामा उन दिनों खूब व्यस्त रही फिल्म संसार में।

0: लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। छत्तीसगढ़ के अनूप रंजन पांडे को इस साल का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह 2 दिवसीय प्रवास पर आज रायपुर आएंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। नीति आयोग शासी परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि अगले 3 वर्षों में बस्तर में निवास करने वाले परिवार मासिक आय बढ़ाकर 30,000 रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए डेयरी, सिंचाई, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में विशेष योजनाएं लागू की जा रही हैं। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। सम्मान सूची में छत्तीसगढ़ कलाकारों का चयन किया गया है। इनमें लोक कलाकार और रंगकर्मी तथा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हो चुके डॉक्टर अनूप रंजन भी शामिल हैं, जिन्हें इस साल का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर अनूप रंजन पांडे के अलावा कथक नृत्य के लिए वरिष्ठ साधक पंडित रामलाल बरेट को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप

0: था युवा रंगकर्मी घनश्याम साहू और डॉक्टर आनंद कुमार पांडे को उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। श्री सिंह आज दोपहर रायपुर के एक अस्पताल में विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे शाम को राजधानी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। श्री सिंह आज राजधानी में हैंडलूम हस्तशिल्प सिल्क और राज्य तथा क्षेत्रीय टेक्सटाइल अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। अपने प्रवास के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री कल 13 जून को राजधानी में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे ऑक्सीजोन गार्डन में पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। किर्गिस्तान के इसिक्कुल में 8 जून से 13 जून तक आयोजित एशियन पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के पैरा आर्म रेसलर श्रीमंत झा ने रजत पदक जीता है। श्रीमंत ने यह सफलता बेहद कड़े मुकाबले वाली PIUH 85 किलोग्राम श्रेणी में हासिल की है। पैरा आर्म रेसलर श्रीमंत झा ने अपनी इस कामयाबी को भारत के वीर शहीदों के नाम समर्पित किया है। नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में आज से 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता शुरू हो रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कायाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन द्वारा भारतीय कायाकिंग कैनोइंग संघ और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में होने जा रही 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में भर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने छत्तीसगढ़ के 5 नए मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कुनकुरी, जांजगीर चांपा और कवर्धा में नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन NMC ने ऑनलाइन प्रस्तुत दस्तावेज और उपलब्ध जानकारी का परीक्षण करने के बाद दावों को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। छत्तीसगढ़ के अनूप रंजन पांडे को इस साल का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह 2 दिवसीय प्रवास पर आज रहेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे है। लीजिए पेश है कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। इस कार्यक्रम में आज सुनिए हीराखंड गोडवाना के किस्सा, दुल्ली चंद टंडन फत्ते राम और साथियों के स्वर में, और 5 गीत सुनिएगा दुर्योधन प्रसाद दुबे और साथियों का गाया हुआ। कार्यक्रम में पहले सुनिए हीराखंड गुड़वाना के किस्सा, दुल्ली चंद टंडन और साथियों का गाया हुआ।

घर लाया है तोला सोने माता कुंजी हीरा घर मा भैया मारा सोने नवई न घर मा आप अकेला मैं अवधा कर आए हूँ। अरे जुक्ति मोर कहना अब चलना मान जा रे आज के जुक्ति ला हीरा खंड बोला जुक्ति ला बोलन लगाए हीरा खंड वही मन माना गुणन लगाए कैसे मोर जुक्ति लिए दी कनवा जुक्ति मोर याद देवा ना लागे रे भैया गुनाह जुक्ति लर भेजाए शीशम के लकड़ी मिला वहाँ पर कनवा जुक्ति कहती अरे गुनाह जुक्ति जा करके लकड़ी के अंदर में समा जा जैसे चक्की से आटा निकले वही किस्म से है आटा के बराबर घुन घुन के तो निकालत जा कहा आज जा करके समा गए तब कहते कनवा जुक्ति कहती ये हीरा खंड अब उठा करके टांगा मार

टांगा मारे दो भाग हो गए, दो टांगा मारी तो चार भाग हो गए, तीन टांगा के मारे लकड़ी रहा 12-11 लकड़ी वहां पर ढेर लग गए। फिर आखन कहते

हे भगवान लकड़ी चीर मर चीर दे और कैसे मैं उठा कर की बन्ना में बांध कर की राज कचहरी में लगा और कहूँ नहीं ले गया तो रामा मोती कारण तेजगढ़ की राजा बंधुआ पड़े है गोर बिली हाथ जंजीरा नाग में भेलवा कौड़ी ऐसे बंधुआ पड़े है महाराज जी भर के कह दी ऐसे हीराखंड सोचा थे आज लकड़ी राज कचहरी में नहीं ले गया तो जियत भर के कह दी मोला राजा रुमल सा डाल दी ऐसे कहा थे अरे जुक्ति सकेलन जतका लकड़ी तेल सकेल सकेल के बांधन जुक्ति कहा एक के ठस्ते गड्ढा बना दे ऐसे कही बांध कर की वहाँ पर उड़वान युक्ति अधर में उड़वा दी अब वो उड़वा करके ही राखन रहा है तो बारह गारह लकड़ी ला राजे का चेरी में भैया कैसे मोर रावण लागाए बकवार बेगन लागाए बार बार जाके वो रामा कैसे मोर हीरा गड़िया कैसे मोर पड़े रहा है।

बांधन जुक्ति बांध चुड़ान जुक्ति उड़ा दी वेतन जुक्ति लेके फेंक दी। राजा रुमल साकी बकवार में निगी दीवान चौकीदार बरकंदार सड़ीदार भंडारी कहे अरे जा चोरी नहीं देखवे हीरा अखन आज लकड़ी कहू नहीं चीरे हो है ना गोड़ बेली हाथ जंजीरा नाक में भेलवा कौड़ी गुथिया जब भर के मैं कह दी दे ऐसे राजा के आर्डर रहा। यावा ना लागे रे नेगी कैसे मर देखन लागे लकड़ी के ढेर भैया।

0: जब महल से राजक महल से निकली ना तो लकड़ी बार अगारा वहाँ पर ढेर कुल्हाड़ा। आज कैसे नहीं कैसे राजा रुमल साहब, अरे वो लकड़ी तो दुए घंटे में चीर के ला करके बकवार में ढेर कर बार अगारा लकड़ी बन जाते रामा मोतीला हीरा खंड के साथ में ते शादी कर।
1: अरे
0: अरे राजा की आदर हो राजा हमारे बोलन लगा रोइमल सारे राजा का बेटी देखे दामा दे राजा हमारे लगा ऐसे मोर हीरन बोलाए कैसे मोर सुनन लगा। पापी राजा रोइमल साहब बेटी देखे दमान मार थे लेकिन दूसर की मैं दमान भले बन जा लेकिन मैं दमान कभी नहीं बनाऊ ऐसे राजा के प्रण रहा था। राजा रोइमल साहब जी तो का होते आगे चल की गा हीराखंड की कहना मान करके हीराखंड बार वट में सोए रहा यादी रात के यम मलवा रामा मोहते कहीं ना वो कैसे मर यमन लगाए सुर्रा काटे मर हीरा कैसे मर पड़े रहा जाके मर बोलन लगा यादा यादा देवता का यादा यादा माली। अधी रात की अमल में अति सालन बत्तीस भजन पका करके रामा मोती वहाँ से चले वहाँ पर कुटेला रोटी बनाए नकवार रोटी बनाए अघाए भूखाए के रोटी बनाए करके वहाँ हीराखंड के पास में आ गए। हीराखंड खुर्रा खाट में पड़े हैं ये माँ बड़े बड़े मंगसा चावा थी बड़े बड़े ढिकना चावा थी हीराखंड की सासत मरना होती। रामा मोती मर सुनाए सुन सुना गा राजा गा सुन सुना गा देवता गा ऐसे मोर बोलन लगाए कब

कई दिन हो गए खाए हज के पिए हज, तो लिए मैं भोजन लाया, भोजन पाले कहा थी। तब हीराखंड की थी रामामूति,

भोजन में नहीं खा तब साया अगर साय कोरी जुगती बारह कोरी मोनी चौबीस कोरी मटिया चटिया बोई तो चूड़े तीन पर थी गाँव के ठाकुर देवता ब्रह्म बाबा भवानी छत्रा महामाई आ कुछ देवता बुढ़ा देव हिंगलाज की देवी ये लता है ला करके तोर जो पिता है रोहिमल साय ना तेल लेकर की बारह ग्रहण के लोहा कोठी में उसको डाले है अक्का देवता तलावित में भोजन कहाँ कहाँ थे तो राम मोती सुन के फिर कैसे चला भोजन पाले मर जोता जामा न लगाए भैया कैसे मर रेग न लगाए कैसे लोहा तेरी कोठी देखा न लगाए वो रामा मोती मर देख न लगाए साब देवता लर भैया कैसे मर लामन लगाए वो कर हिराखंड की कहना मान कर की रामा मोती जागरी सात कन की सतकंडा बत्तीस कन को करी साहेब जड़ के ऊपर में ढक्कन खोल कर की जबका वो कर दे।

अब क्या देवता चलावे मैं भोजन पहा कहा थे तो राम मोती सुन के फिर कैसे चल राम मोती मर चला भोजन पाले मर देवता जावा ना लागे भैया कैसे मर रेगन लागे कैसे लोहा तेरी कोठी देखा ना लागे वो रामा मोती मर देखन लागे साब देवता लर भैया कैसे मर लावन लागे वो कर हीराखंड की कहना मान कर की रामा मोती जागरी सात खंड की सतखंडा बत्तीस खंड को करी साहेब जड़ के ऊपर में ढक्कन खोल कर की जटका वो कर देवता रहा जुक्ति मोहनी सब लसकेल के हीराखंड के पास में ला के रख दी।

एक थाली में हीराखंड बैठे, दूसर में रामा मोती। खोट खाट कर की जमीन में गिराए हीराखंड, ओ जीवा के भोजन निकाल कर की स्वर्गों में फेंक दी। जगत का देवता धामी रहा, सब भोजन पावा था, एक दाना नीचे नहीं आवा थे। अब रोटी खा कर के तैयार हो गए तो रामा मोती का कहा थे, रामा मोती मर बोला।

जावा नाजीपुर बेसालेगा जावा तुम नाजीपुर ना तो पूर्वे बान विद्यावा ना तो पूर्वे तय साल जवाब में पापी राजा रोमल साहेब मुला ते लेके हीरागढ़ में भौरी उतार लेवे ऐसे रावा मोती का हीरागढ़ अमर बोला शादी कार्य मर रामा मोती वह तो लावा नारी आये कन्ना बाप के गोड़ बेली काटे आये हम कन्या वो राजा गुंजा कर बेली कन्या तो शादी करे बर नहीं आए ना हीरागढ़ तो लेगा चोरी गिरवा नहीं खा ना चोर धरा ना दुनिया दुनिया निंदा हुआ तकरीब में चाहे मांस मोर हीरा खंड के मैं कभी नहीं लेगा मैं बाप के गोड़ मिली काटे में रहा हूँ राजा गुंजा के रामा मोती कारण में तेजगढ़ के राजा बंधुआ पड़े जी अब भर के कह दी ठोके तो पिता है देकर बेली काटे पर मैं आया ऐसे हीरा खंड जवाब दे दी जवाब देकर के रामा मोती सात खंड की सत खंडा बत्तीस खंड कोबरी सार गुजर के ऊपर में अपन चले गए हीरा कन ये थी भरगा कैसे मर रहे गए भैया रात के समय मगा रोटी की लावत हावे रामा मोती कहीं ना वो हीरा गरिया लर भैया रात्रि के समय में रामा मोती आकर के हीरा खंड को रोटी खिलाए अयती के चेहरे ने जी काए ये हीरा खंड जला घर जैया कई थान ते कैसे फूल ही मेसका भर भर लूट दुलूट मोटावा थे रे पानी पसिया देता तो पानी पसिया के पिए में दुबला जाते अब ये कैसे उल्टा पुल्टा देह एक बदला जाते ऐसे

0: पर बरकतदार को पिस्तौल धरा के भेज दी। कौन है? ये राजा रुमल साहब। कहूँ रामा मोती रात्रि के समय में घर में रोटी खवाए बर है ना, तो उसको गोली से ढूंक देना, नहीं तो बंद पकड़ के ले आना।
1: ले आना।
0: आज कैसे ये घर जिया उल्टा के फुलटा देह कर बदलत जाते, ऐसे कहा थी। पांचों जन ये दिन भैया कैसे मोर चलन लागा, चौकीदार बरतन दारी यादी रात के यो मंगा, राम मोती कही ना वो गंगा जमुना लोटमा, सोना के बर्तन मगा रोटी धर के मुरियावा। अधी रात की अमल में रामामती सोना की बर्तन में रोटी धर, आओ गंगा जमुना लोटा में जल लेकर की अधी रात

अब नहीं माना था कब हमें चल तोर पिता में हम लेखबो कहा चारों मुड़ा घेरे कोनो मार मार कहा कोनो पकड़ा कोनो धरा कहा एगा अरे आज बार आगे वस्ता काम करे लेकिन नहीं देखें कह दू ठौका गए थे राजा की नमक खान तो लेखबो ऐसे घेरा पर गए तो रामा मोती का कहा रामा मोती कही नगा बोला ना लागर भैया पांचों जन चौकीदारी बर्तन दारे लर भेजे ऐसे मोर कान लगाए हाथे बहना रे वो मर कैसे मोर खींचन लगा तार कैसे तुम नहीं मानोगा तो मैं तो दारू में शाला जात की बता आज पांच जन से चौकीदार बर्कंदाल भेजे तो मोर वहां बाला खींचत रही कहूं ऐसे मैं कहूं तियन खना के राजा रोमल साह गरिया है पांच जन ल पत्थर बैठ के स्नान बना जेकर ऊपर रोटी खा नाम नहीं सुने रामा मोती के अब रे चौकीदार बर्कंदाल अब तुम्हारा रोग में नहीं बाचा या इसे मोर बोलन लगाए राम मोहती गिर भैया चारन महागिरन लगाए चौचा दिन ये दिन भैया कैसे गा बर्तन दारी कार्य कार्य राम वो मोती मन सुनन लगाए पंचन मोहर लगा कैसे निकाल गिर देवा राम मोती हम पांचों जन कतको गुठियावत हमार बात ल नहीं लाए आ तोर बात ल तोर पिता है अवश्य करके ले ली के कहा तो नहीं देखे कही देवा आयस गई के पंच पठन मोहर पांच झमला दे है और दे करके अब राजा में चले गए राजा कहे अरे बरकतदार हाल बता दे रामा मोती महाराज अंधा राजा अपेल हाथी तुहार मन की नजर नहीं ये कान हावा अरे कहा अधी रात की अमल में रामा मोती घटिया रोटी खवा ये सब गलत बात है कहा आते महाराज तो कैसे वो उल्टा पुल्टा होते रे देह वकर बना थे ऐसे कहा थे राजा रोजमल रामा मोती कही ना वो कैसे बैल दरबार ये दी कैसे बाला गिर भैया चोर को रावण लगाए जहाँ ही रख रहा है चोर को रावण अधी रात की अमल में सुरंग फुरा दी भीतर भीतर रोटी खवावे रामा मोती घर नहीं ला अब जाके सतखंड में रहा राजा रोजमल साहब के से देखा तो आज मैं चौकीदारी रहा नाम भारत खरदा लेकर की राजा रोजमल साहब रहा वही दुबट्टे में जाकर के खड़ा होगा राजा

ये गाना बजा थे रामा मोती की, वही मेरे पांच बरकंदाज जा करके घेर ली। ए रामा मोती अधी रात की अमल में थे, कहां जा सज रे।

0: ठाकुर के खाड़ा लेकर के राजा अरुणमल साय वहाँ खड़े। रामामोती अधी रात की अम्मल वहाँ चकल मूर फांदे नाम नहीं सुने राजा अरुणमल साय के। अच्छा वो तो नीचे सुरुम फरा रहे रामामोती नीचे ला रोटी खवावा और खवा के अपन सतखंड में जाए। रात व्यतीत हो गए तब राजा रुमल साह की थी आज रामामोती नहीं आई न भेटे महाराज ये कैसे अचरू से कैसे मोटावा थे ऐसे कही करके वहां पर कही
1: दुल्ली चंद टंडन और साथियों का गाया हीरा खंड गोड़वाना का किस्सा अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुंजेश्वर गांव के अंतर्गत।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल।

0: जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप, आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: अब आइए सुनते हैं पांच गीत के अंतर्गत राजा सुंदर सिंह और रानी बेलकैना के किस्सा। गायक कलाकार हैं दुर्योधन प्रसाद दुबे और साथी।

0: भैया रागी
1: ओ
0: चकहा रहा है तो चकही ला कहा थे चकही।
1: अच्छा
0: मैं का कहानी तो लग कह के सुना चकही।
1: हाँ भाई
0: ऐसे चकहा रहा है तो कहा थे तो चकही का कहा थे।
1: हाँ।
0: महाराज कहा अपन के रहत ले दूसर के ला का कहबे महाराज।
1: हाँ
0: अपने ला कहना कहा थे।

0: जगही राजा सुंदर सिंह नाम के एक हरदी नगर में रही।
1: अच्छा भैया,
0: बड़े भोजन या 30 सालन 32 भोजन वाला खवावे।
1: अरे
0: वो कर भोजन ला कभू ही ताक नहीं बताए।
1: अच्छा,
0: कभू सिट्ठा कभू आलोना कभू खारो अजने कहत रहा है।

0: बड़े भौजाई रहे तो राजा सुंदर सिंह ला कहे बड़ा सफा खवैया लागत हो
1: हाँ भैया
0: रानी बेर कहना ला शादी करके लाहो तो कतेक सुघरता भोजन बनाही थे हम देख लेते ऐसे कहात रही से चखी ऐसे चघा रहा है तब चखी ला कहानी सुनाते जी।

0: राजा का सुनर सिंगा भैया बारे भाऊजी ना पूछाए। चकहा रहा तो चकीला बता थे कहानी।
1: अच्छा
0: अरे राजा सुंदर सिंह रहा तो मंदिर ले सुना थे।
1: हाँ भैया
0: किरानी बेल कहना कहाँ रहे थे कि कुछ ही से चली।
1: हाँ
0: तो बड़े भौजी रहा तो बेलगढ़ शहर में राजा बेला के लड़की रानी बेल कहना है।
1: अरे
0: बोला ते शादी करके ले आन कही के।
1: हाँ
0: बता है।

0: चकही।
1: अच्छा,
0: राजा सुंदर सिंह रहा तो बेलगढ़ शहर के है।
1: हाँ।
0: अब फुलवारी में जाके मल्लिन लगे है रानी बेलकैना के सोर संदेश ओला पूछे है मल्लिन ला।
1: अरे
0: ता उहां ले रानी बेलकैना ला ला है मल्लिन।
1: अच्छा,
0: ऐसे चकही रहा तो ला बता थे चक।
1: हाँ जी।

0: मोर मंदिर ले दो सुनायो।
1: भैया रागी
2: वो
1: देख तो कहा है रानी बेल कहना के बात ला।
2: हाँ
1: राजा सुंदर सिंह रहा है तन मंदिर ले सुनत रहा है, चक हा रहा है तन कहा है, चक ही सुने।
2: हाँ भाई
1: पुकारू देत रहा है।

0: देख तो राजा सुंदर सिंह अंधरा रहते है नहीं देखती सो ते रानी बेलकैना है कह के देख तो वहाँ लाने कुआं में जीवन पानी बना है।
1: अच्छा।
0: रानी बेलकैना ला दतली चमारी न ढकेल दी और दतली चमारी रानी बन के ओकर सतखंडा महल में है चकरी।
1: अच्छा।
0: आज ले राजा सुंदर सिंह नहीं देखे कहा
1: जी।

0: देख तो चाकी हां रानी बेलकैना है तौन ला फूल ला लानी ते लेके दतलीचे मारी लदेली अब वहां कोलकी में कड़िया दी लाल भाजी हो गए वाले लान के की थोला दे दी फिर राजा सुंदर सिंह हां
1: मोर
0: पर सागरांत कह के तो वहां लेख के बगीचा में कड़िया दी अब वहां आमा हो गए ते रानी बेलकैना हां धान बाई हो रही से
1: अरे
0: तेरा चार जल्लाद के हाथ में मधुबन जंगल में मारे है
1: हाँ भैया
0: आज से चकहा रहा है तुम चकी लगता है।

0: यमतालावारगमागिके मोरयप हत्या करे
1: चकही। रानी पेलकैना अपन हाथ में हत्या करके और चारों हाथ गोला काटे है ते पार बने हैं।
2: अच्छा।
1: और पेट ला चिरे ते तरिया बने हैं।
2: हरे हरे।
1: आ ये दोनों नैन ला काट के फेंके ते हमन चक ही चक हाँ।
2: अच्छा।
1: और सिर ला काटे है तो मंदिर में है वही राजा अंधरा सुंदर सिंह वही मंदिर में खुसर के सुनत है चक ही।
2: अच्छा।
1: ऐसे बतावा चक हरा है तो।
2: हाँ भाई।

0: चक ही रहा तुम चकहला कहा थे महाराज।
1: अच्छा
0: रानी पेलकाना ला राजा सुंदर सिंह कैसे मिल पाही?
1: हाँ
0: ऐसे बोला चक ही रहा तुम पूछा थे, अब बोला चकहा बता थे जी।
1: अच्छा भाई।

0: तेरे जावा हरा दीवो
1: चाचा। बांस गीत में अभी आप राजा सुंदर सिंह और रानी बेल कैना का किस्सा सुन रहे थे। गायक कलाकार थे दुर्योधन प्रसाद दुबे और साथी। और इसी के साथ गुंजे स्वर गांव के कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं, आपके पत्रों और आपकी पसंद के गानों को लेकर आज मैं हूं आपके साथ सीमा साहू। कार्यक्रम का पहला गाना ये सुनते हैं, खलनायक फिल्म से अलका याग्निक और साथियों के स्वर में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है दतरेंगी भाटापारा से नुखेलाल वर्मा, हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि वर्मा ने। ग्राम महमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी और आरती कैवर्त। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविन्द्र, खुशी, रौनक सेन। भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, शुभम, सौरभ और नीरज रावत। ग्राम बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति।

मैं आपने सुना अलका याग्निक और साथियों के स्वर में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। आपकी पसंद कार्यक्रम में एक बार फिर आइए सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत निर्देशन में वर्मा मलिक का लिखा गीत, गायक कलाकार किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल। फिल्म जानी दुश्मन के इस गीत को सुनना चाहा है भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झवेंद्र कुमार, बेदबाई, सुमित्रा, योगिता और फलेश्वरी वर्मा ने। गौतम नगर जिला नांदेड़ से हैं प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। बिरगांव तखतपुर से दिलीप कोल, जयमून भुवनेश्वर और रामायणी कोल। बनियापारा धमतरी से हैं रामचंद माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखी।

0: जानी दुश्मन फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। वर्मावली के लिखे इस गीत की धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फरमाइशी फिल्मी गीतों का आपकी पसंद कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार, दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर आप सुन रहे हैं उमाशंकर पांडे से। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जिले की प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग या मुख्य जिला मार्ग से लेकर सभी शहरी एवं ग्रामीण सड़कों में अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले में यातायात व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। हमारी यही शुभकामना है एवं प्रयास है कि आप सभी की इन सड़कों में यात्रा शुभ हो, सुरक्षित हो, किंतु इसके लिए आवश्यक है आप हमेशा यातायात नियमों का पालन भी करें। मित्रों, प्रायः देखा जाता है सड़क में दौड़ रहे वाहनों में यदि कभी दो वाहन आपस में टकरा गए, कोई बाइक वाला गिर गया, ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि गिरे वाहन को तत्काल उठाकर किनारे लाएं, या चार पहिया वाहन यदि आपस में रगड़ गए तो भी दोनों वाहनों को तत्काल बीच सड़क से किनारे ले जाकर दोनों ही वाहनों के चालकों को आपस में बातें करना चाहिए, किंतु ऐसे में दोनों ही वाहन चालक बीच सड़क में ही बाइक या आपस में टकराए वाहनों को यथावत छोड़कर आपस में वाद विवाद या हाथापाई करने लगते हैं। परिणाम सड़कों में दोनों ही दिशा में वाहनों की कतार लग जाती है, जाम की स्थिति बन जाती है। अतः ऐसे वाहन चालकों से अनुरोध है संबंधित वाहन को तत्काल सड़क से किनारे लाए ताकि अनावश्यक यातायात बाधित ना हो, लोग परेशान ना हो। साथियों, एक तरफ जहां शासन प्रशासन अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आम लोगों को सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने तत्पर है, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के चलते आम रास्ते में बाधा उत्पन्न करने से नहीं चूकते। प्रायः देखा जाता है कुछ लोग अपने घर या जमीन के पास सड़क में ही भवन निर्माण सामग्री जैसे ईंट, रेत, गिट्टी, मिट्टी, छड़ आदि इस प्रकार रख देते हैं जिससे सड़कें संकीर्ण हो जाती है, या रेत, मिट्टी, मुरुमादि के सड़क में बिखरने से दो पहिया वाहन वाले फिसल कर गिरते भी हैं, कई गंभीर दुर्घटना के शिकार भी हो चुके हैं। अतः इस संदेश के माध्यम से ऐसा करने वालों को सख्त हिदायत है कि ऐसा करने से बच जाए, क्योंकि यह अवैधानिक भी है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
0: ये था आज का ट्रैफिक अपडेट।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जयमाला
2: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
5: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज
6: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
7: मुझे याद सब है जरा जरा,
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
3: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
2: मन का सुकून, दिल की आरती,
3: सुरीली संदली।
0: कार्यक्रम आपकी पसंद में आपका फिर स्वागत है श्रोताओं। आइए सुनते हैं अगला गाना आप सभी की पसंद पर। ग्राम रसेड़ा कल्तरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या साहू और डिकेश कुमार साहू, यहीं से वासु, डॉली और पूर्वेश साहू। इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन, बानो अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ।

नईम रजा, रिंगनी से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, मयाराम रजक, पुनेश्वर रजक, फानेश्वर रजक, मुकेश कुमार हाव्या और टानिया रजक, भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोआराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम, जितेंद्र साहू, मारवाड़ी कुआ भाटापारा से सिया राम और अश्विनी पांडे, सोनाडीह से सुब्रत चौधरी और बेबी अनिशा, रायपुर से नीलू मेघ। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं कच्चे धागे फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: कच्चे धागे फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान, ज्ञान का भंडार।

0: विस्तार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, संतोषी, दुलौरिन, रेखा, मोतीलाल, कामेश्वरी और प्रीतम कुमार साहू। महादेघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति और बाबू रियांश ठाकुर। बलौदा अकलतरा से दिलहरण, प्रीतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल। नैला बोड़सरा जांजगीर से है हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन कुमार तिवारी, मीनाक्षी, उमाबाई, अंजुलता, ठगिया देवी, विष्णु प्रसाद, मोंगरा देवी मिश्रा और प्यारे लाल मिश्रा। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा, आदित्य देवांगन। बमहर चाटीडी से हैं गंगा देवी, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी, कुमारी मिल्की, बेबी मीनाक्षी और निधि देवांगन। लुत्रा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद अजीज। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं सावन भादो फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। वर्मा मलिक के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है सोनिक ओमी ने।

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा

सावन भादो फिल्म का गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और इसी के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, इस समय सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए पेश है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी।
1: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: सिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
1: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
1: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
1: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं, लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
1: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
1: यदि इसकी उत्पत्ति की

0: बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
1: जी
0: ऐतिहासिक और अनुवांशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
1: जी
0: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
1: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
0: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
1: जी।
0: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
1: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
0: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
1: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
0: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं जैसे
1: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
0: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

हम अपने सुनने वालों को याद दिला दें, शाम 5 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट। शाम 5:05 पर सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम, विषय होगा जैविक खेती की आवश्यकताएं एवं संभावनाएं। विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमेंद्र कुमार केशरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर। साथ ही सुनिएगा गीत, मौसम, मंडी की जानकारी और श्रोता भाई बहनों को सामयिक सुझाव भी दिए जाएंगे। शाम 5:35 पर युवा जगत कार्यक्रम में आज की बात का विषय, बचपन को संवारने में सहयोग करें, नशा पान से दूर।

दूर रहे। साथ ही सुनेगा क्रम स्वास्थ्य पत्रिका। ईमेल करें, गीत सुनिए, आप सुनेंगे शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे। शाम 7:10 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला। आज का विषय होगा जन विश्वास। चित्रपट संगीत शाम 7:45 पर और रात 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे मन्ना डे। कार्यक्रम रजनीगंधा का प्रसारण समय रात 8:15 पर। ये थी कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। इस समय सुबह के 11:30 होने वाले हैं। श्रोताओं, 11:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: चंदन दास की आवाज में ये गजल आप सुन रहे थे, कलाम था निदा फाजली का।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। बहुत जल्द संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक अनमोल श्रृंखला। आएंगे इसमें जाने माने बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। तो सुनते रहिए विविध भारती संगीत सरिता। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।

तलत अजीज की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। कलाम था कतील शिफाई का। मुमताज राशिद का कलाम, फिनाज मसानी की आवाज़।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 11:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे और समाचारों के बाद जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा से, जिसे आप सुन सकते हैं 5:00 तक। फिलहाल आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचारों के लिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राजस्व मंत्री ने एक ही स्थान में 3 साल से ज्यादा समय से जमे पटवारियों का पूरा ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के पैरा आर्म रेसलर श्रीमंत झा ने किर्गिस्तान में आयोजित एशियन पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह 2 दिवसीय प्रवास पर आज रायपुर आएंगे। अब समाचार विस्तार से। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि डिजिटल भू अभिलेखों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। कल रायपुर में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि गड़बड़ी रोकने के लिए EHRMS पोर्टल बनाया जाएगा। राजस्व मंत्री ने विभिन्न जिलों में 3 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक और राजस्व निरीक्षकों की सूची तलब की है। इसके साथ ही एक ही हलका में 3 साल से ज्यादा समय से जमे पटवारियों का भी पूरा ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को नगरीय क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों को पट्टा वितरण करने के लिए सभी आवश्यक सर्वे कार्य आगामी 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से पूरे करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। श्री सिंह आज दोपहर रायपुर के एक अस्पताल में विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे शाम को राजधानी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। श्री सिंह आज राजधानी में हैंडलूम हस्तशिल्प सिल्क और राज्य तथा क्षेत्रीय टेक्सटाइल अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। अपने प्रवास के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री कल 13 जून को राजधानी में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे ऑक्सीजोन गार्डन में पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस सम्मान सूची में छत्तीसगढ़ के 4 कलाकारों का चयन किया गया है। इनमें लोक कलाकार और रंगकर्मी तथा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर अनूप रंजन पांडे भी शामिल हैं, जिन्हें इस साल का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर अनूप रंजन पांडे के अलावा कथक नृत्य के वरिष्ठ साधक पंडित रामलाल बरेट को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप तथा युवा रंगकर्मी घनश्याम साहू और डॉक्टर आनंद कुमार पांडे को उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की सेवा अवधि में वृद्धि की गई है। आगामी चुनाव के मद्देनजर उनकी सेवा अवधि फरवरी 2027 तक या राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियमित पदस्थापना होने तक बढ़ाई गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। किर्गिस्तान के इसिक-कुल में 8 जून से 13 जून तक आयोजित एशियन पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के पैरा आर्म रेसलर श्रीमंत झा ने रजत पदक जीता है। श्रीमंत ने यह सफलता बेहद कड़े मुकाबले वाली PIUH 85 किलोग्राम श्रेणी में हासिल की है। पैरा आर्म रेसलर श्रीमंत झा ने अपनी इस कामयाबी को भारत के वीर शहीदों के नाम समर्पित

किया है। नवा रायपुर स्थित सेंधलेक में आज से 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता शुरू हो रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कायाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन द्वारा भारतीय कायाकिंग कैनोइंग संघ और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में होने जा रही 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देशभर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगामी 1-2 दिनों में छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। इससे पहले प्रदेश में कुछ स्थानों पर प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। बीती रात राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्व मंत्री ने एक ही स्थान में 3 साल से ज्यादा समय से जमे पटवारियों का पूरा ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के पैरा आर्म रेसलर श्रीमंत झा ने किर्गिस्तान में आयोजित एशियन पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह 2 दिवसीय प्रवास पर आज रायपुर आएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: आज सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय

0: नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक की वृद्धि से 23,382 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सदमा फिल्म के गाने से। सुरेश वाटकर की आवाज है, गुलजार के बोल, इलैया राजा का संगीत है।

0: छुपाए रखा, शोला दबाए रखा,
1: छुपाए रखा, शोला दबाए रखा।
0: हुस्न हमेशा रूठा रहता है, खुदा गवाह हम सच कहता है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: लकड़ी की काठी का ठीपे घोड़ा घोड़े की दुम पैजुमा।

तारे जमीन पर इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में प्रसून जोशी के बोल थे, शंकर एहसान लॉय का संगीत था। नमकीन फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

मोहब्बत की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने है एक ही बात कहना चाहता है, बोलिए क्या।

जमाने को दिखाना है, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन की आवाज में। संगीत भी राहुल देव बर्मन का था और रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की। नमकीन फिल्म का गाना सुनिए आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गुलजार के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत है।

0: अम्मा सर पे टोकरी लिए सारा दिन गांव में घूमा करती है, गोबर जमा करती है, उपले थापती है, सुखाती है और जाके गांव में बेच आया करती है। बदलते हुए वक्तों से बड़ी शिकायत है उसे, गांव से तो क्या गईयों से भी शिकायत करती है।
1: इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं इस कार्यक्रम के लिए। इस एक पैराग्राफ में वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा ही इस बात में है कि गानों की आपकी और हमारी लिस्ट मैच कर जाए। मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं तो फेसबुक पोस्ट पर आप बता सकते हैं, क्या पता वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिए जाए। और हाँ, अगर हमने गाने चुने हैं और आपने, कई श्रोताओं ने वही वही गाना लिखा है, तो हम अपने गाने बदलकर आपके वाले गाने भी बजा सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम आप सुनेंगे ही, और ध्यान से जरा आज की इबारत पढ़ लीजिए, हम सुना देते हैं, सुन लीजिए। कुछ बातें दिल नहीं मानता, कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती, किसी से मुलाकात कोई कहानी बन जाती है, तमन्नाओं और ख्वाबों का जहां आबाद हो जाता है। फिर एक सवाल उठता है, दिल ने तुम्हें चाहा, क्या यही खता है? हुई जो मोहब्बत तो दिल ने कहा, फिर कब मिलोगे, इस बात का वादा करो। एक बार जो सनम से दिल लगा, तो दिल दीवाना गाने लगा, लागी छूटे ना, उसकी अदाएं मन मोहने लगी, दिल को संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, दिल दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा कि कहीं मुलाकात अधूरी न रह जाए, गले से लग जा, जिंदगी में शायद साथ इतना ही था। और फिर दिल शायर बन गया गम नगमा। मोहब्बत का दस्तूर भी कितना अजीब है। वैसे बहुत सारे श्रोताओं की ओर से गाने सुझाए गए हैं, लेकिन हम कुछ खास शब्दों से पूछ रहे हैं कि कौन से गाने आपके जहन में आ रहे हैं। दिल शायर बन गया, इसका गाना बताइए, और बताइए कि दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा, और बताइए कि संभालने वाली जो बात है, यहाँ पर कहीं संभालने की बात आई है, उस पर कोई गाना बताइए। क्योंकि इन शब्दों पर कुछ गाने कम हैं, इसलिए मैंने यहाँ जानबूझ कर रखा है कि देखें आपको याद आता है कि नहीं। जैसे कि एक बार जो सनम से दिल लगा, यहाँ पर कौन सा गाना याद आया है। अब चलिए गीतों के माध्यम से एक कहानी भी सुनवा देते हैं। उस कहानी से जुड़ी हुई कौन सी कहानी आपको याद आती है, जरा बताइए। बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी आपने। सुनिए ये गाना और याद कीजिए कोई कहानी, या फिर कोई गाना, या फिर कोई अपनी जिंदगी की कोई घटना, जो यहाँ विविध भारती के फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं। तो बताइए कहानी, और आप भी कोई इबारत लिखकर भेज सकते हैं

हाँ, एक भी कहानी याद नहीं आई किसी को, न कोई फसाना याद आया और न ही कोई ख्वाब याद आया पुराना। हमने आपसे कहा कि कोई पुराना ख्वाब याद आया, लिखिए फटाफट। आपने किसी ने नहीं लिखा और न ही किसी ने ये लिखा कि हमने ये बचपन में ये कहानी सुनी थी या बड़े होकर कहानी अपने बच्चे को सुनाई। अरे एक लाइन में बता तो सकते थे कि फलाने लेखक की कहानी सुनाई थी, प्रेमचंद की, निराला की कविता सुनाई थी, कुछ तो लिख देते। नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आगे लिखिए। अब गानों से जुड़ी हुई बातें भी लिखते चलिए, सिर्फ अपनी टिप्पणी साझा करके बैठिए मत। आपकी टिप्पणी फेसबुक पेज पर सुरक्षित है, अगर हम पढ़कर नहीं भी सुनाते हैं तो आप वहां पर देख सकते हैं। हम सबकी टिप्पणी पढ़ रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों की टिप्पणियां हमारी आंखों से गुजर रही हैं और हम लाइक करते जा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल की खूबसूरती ये नहीं कि उसमें कितनी बातें हैं, बल्कि ये है कि उसमें कितने लोग बसे हैं। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, सीधे दिल से जुड़ते हैं और वही रिश्ते जीवन को खूबसूरत बना देते हैं। अगर दिल साफ हो तो छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगती हैं। क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि मेरी सनम मेरी धर्म पत्नी है, जो मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। मेरा तो दिल सिर्फ यही मानता है कि उसके अलावा कहीं और दिल नहीं लगाना है, और एक बार जो जन्म से दिल लगा लिया है तो मैंने समझ लिया कि दिल उसी का दीवाना हो गया। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम कहानी में एक लड़का होता है और बहुत सारे गाने, और एक श्रोता ने दीवाना लेके आया दिल तराना, दीवाने का नाम तो पूछो प्यार से। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गद्य मई इबारत की इबादत से निकले शब्दों में दिल मानता नहीं, घटनाएं भूलती नहीं, किसी से मुलाकात वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कोई हसीना जब रूठ जाती है, एक ने लिखा है किसी से तुम प्यार करो तो इजहार करो, एक श्रोता ने लिखा है कभी कभी दिल से दिल किसी का शुक्रिया अदा करना भी कितना अच्छा होता है ना। बिल्कुल, हम आपका शुक्रिया तो अदा करते हैं रोजाना। एक श्रोता ने लिखा है मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो। एक श्रोता ने लिखा है विविध भारती के नाम से कई सारी साइट है, नए लोगों को बहुत परेशान करती है, तो देखिए।

यहाँ पर जो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा लिखा है और ब्लू टिक है, विविध भारती की जो असली प्रोफाइल है, तो वहां जाके देख सकते हैं। और इस समय जहां से आपको ये सुनने को मिल रही है ये बात, जहां से टिप्पणियां मिल रही हैं, वहां पर आप आइए। और विविध भारती की लिंक भी है जो जिसे आप देखकर वहां पर पहुंच सकते हैं। बाकी जो प्रोफाइल है वो नकली प्रोफाइल है, याद रखिएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि एक छोटी सी प्यारी बात, दिल वो जगह है जहां यादें महफूज रहती हैं, रिश्ते खिलते हैं और दुआएं जन्म ले

देखिएगा, एक श्रोता ने लिखा है कि एक छोटी सी प्यारी बात, दिल वो जगह है जहाँ यादें महफूज रहती हैं, रिश्ते खिलते हैं और दुआएं जन्म लेती हैं। सांसों से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती है दुनिया, एक श्रोता ने लिखा है। वही वाह, गानों की तो लंबी फेहरिस्त है। हमें लगता है अगर गानों के बोल हम बोलने लगेंगे तो ये आज का सुरीला सफर इतना लंबा हो जाएगा कि कभी खत्म ही नहीं होगा। एक टिप्पणी और पढ़ देते हैं फिर गाने की ओर चलते हैं। लेकिन भाई, हमने आपसे कहानी पूछी थी, जरा याद करके उस कहानी की एक लाइन तो लिख दीजिए और वो फसाना भी लिख दीजिए, जो फसाना बन गया, जो कहानी बन गई, और वो ख्वाब जो इस गाने में आपने सुना, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, पुराना ख्वाब। बहरहाल, एक श्रोता ने लिखा है, प्रेम प्रसंगों के पर्याय बनी इबारतों की श्रृंखला में आज की कड़ी प्रमाणित कर रही है कि जीवन के सफर में सिर्फ मोहब्बत ही एकमात्र विकल्प है जो रिश्तों को आबाद करने में सक्षम है, चाहे वो प्रेमी दिलों की हो या आपसे रिश्तों की, प्रेम ही शाश्वत है। बहुत पते की बात आपने लिखी है कि अगर इस दुनिया से प्रेम हटा दिया जाए तो दुनिया कैसी हो जाएगी, एकदम बेरंग, सूनी, उदास। प्रेम के सहारे ही तो रिश्ते बनते हैं, प्रेम के सहारे ही तो परिवार बनता है, समाज बनता है। ये सृष्टि की रचना ही प्रेम से हुई है। चलिए, अब छोटी सी मुलाकात, ये फिल्म का नाम है, सुनिए गाना और बताइए गीतकार का नाम।

छोटी सी मुलाकात फिल्म का गाना था। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें थीं। अभी पिछले दिनों ये खबर आई थी कि गायिका सुमन कल्याणपुर नहीं रहीं, तो कितना दुख पहुंचा था, कितना अवसाद हुआ था हम सभी को, जितने उनके चाहने वाले हैं। सचमुच एक अलग तरह की आवाज़ थी। अब हम आपकी टिप्पणियों पर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल प्रेम की जगह मोबाइल ने ले ली है, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, मोबाइल में रहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि अनगिनत से सालों से मेरी तुझसे पहचान है आपके लिए। वैसे एक इस गाने में ये लाइन भी आती है, अनगिनत सालों से मेरी तुझसे पहचान है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि कब किससे पहचान हुई, कौन सी पहचान रिश्ते में बदल गई, ये हमारा सवाल है। कोई दोस्त मित्र, प्रेमी प्रेमिका, या पति पत्नी, या भाई बहन का रिश्ता बन गया एक पहचान से। कई बार हम कहीं जाते हैं घूमने, कुछ अजनबी लोग मिलते हैं, वहाँ मुलाकात होती है, तो कुछ रिश्ते बन जाते हैं। कई बार दोस्ती का रिश्ता बन जाता है, भाई बहन का रिश्ता बन जाता है, प्रेमी प्रेमिका का। तो आप ये भी बता सकते हैं अपनी यादें साझा करते हुए। एक श्रोता ने लिखा है, बचपन में नानी जी सुनाती थी कहानी, जब हम गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाते थे, खूब लंबी लंबी कहानियां। दादी और दादाजी बहुत प्यार करते थे। एक श्रोता ने लिखा है, नवीं कक्षा में था जब मैं एनसीसी कैंप गया था, रोजाना ही जूनियर से कुछ ना कुछ अफसर लोग हमसे पूछते रहते थे। लेकिन एक दिन कहानी किस्सों की बात हो रही थी तो सर ने पूछा, कल्चरल प्रोग्राम का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें सुबह परेड पर 4 बजे आना है ग्राउंड पर, लेकिन मेरी नींद लग गई, बार बार सीटी बजाने के बाद भी नहीं उठ पाया। तो जो हमारे सीनियर थे उसने हमारे टेंट में आकर खूब पिटाई हुई, और उसके डर से 2 दिन तक बीमार होने का मैं नाटक करता रहा। भाई नाटक क्यों किया, पिटाई भी ठीक नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ न कुछ तो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक अनुशासन तो होना चाहिए छात्र जीवन में। एक श्रोता ने जानकारी दी है, एक छोटी सी मुलाकात 1967, आवाज मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर, और तुझे चाहा तुझे पूजा, ये तो गाने के बोल हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कोई माने या न माने, जो कल तक थे मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। बहुत सारे गानों की इबारत हमारे श्रोता लिख रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप इन्हीं इबारतों से आप कोई और पंक्ति रच सकते हैं, कोई कविता रच सकते हैं। हो सकता है आपकी रची कविता एक दिन आपको कवि बना दे, कहानीकार बना दे। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की कहानी, एक चिड़िया की कहानी जो अपने दाल की चोरी होने पर सभी से गुहार लगाती है और अंत में वो जीत जाती है। ये कहानी बाबूजी हम लोगों को सुनाया करते थे और मैं भी अपने बच्चों को सुनाती हूँ। क्या बात है भाई, गानों से देखिए कितनी सारी बातें याद आ गई। इसलिए गाने जब हम सुनते हैं तो गानों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत सारे शब्द हमें यादों में ले जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिर कब मिलोगे, ये गाना हमें बहुत पसंद है, और बहुत सारे श्रोताओं की ओर से फरमाइश आई है भरोसा फिल्म के गाने की, वो दिल कहाँ से लाऊं। लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि जो इबारत है उनमें वो शब्द होने चाहिए। तो देखा कि उनमें ये शब्द है, तो चलिए वो गाना हम सुनवाते हैं। फिल्म है भरोसा। कलाकारों के नाम जरा बताइए कि पर्दे पर कौन गा रही हैं, कौन अभिनेत्री गा रही हैं ये गाना। वैसे पार्श्व गायिका है लता मंगेशकर। गीतकार संगीतकार का नाम आप बता सकते हैं, अगर आप ये नहीं बता सकते कि कौन है अभिनेत्री। हीरो का नाम भी बताइए आप ही, जरा जल्दी टाइप कीजिएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

भरोसा फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे रवि का संगीत था। और हमने पूछा था पर्दे पर कौन अभिनेत्री गा रही हैं ये गाना, अभी तक श्रोताओं की ओर से जवाब नहीं मिला। आशा पारेख और गुरुदत्त हैं इस फिल्म में हीरो। देखिए साथ साथ पहेलियों के जवाब भी देते चलिए, क्योंकि इबारत के साथ साथ पहेलियां भी शामिल हैं कि हम आपसे पूछते हैं जो सवाल, आपके जवाब का रहता है हमें इंतजार। और हम बाकायदा कमेंट को न्यूएस्ट कर देखते हैं कि नए कमेंट कौन आ रहे हैं। बस टिप्पणी साझा करके आप बैठ गए रेडियो सुनने, नहीं जी, हम आपको बिल्कुल साथ में लगा के रखते हैं, संलग्न रहें आप, ये हमें अच्छा लगता है जानकर। बहरहाल एक श्रोता की टिप्पणी पढ़ते हैं। कुछ मुलाकातें दिल में ऐसे ठहर जाती हैं जैसे माथे पर गिरी बारिश की पहली बूंद। हम उस पल को कभी भूल नहीं पाते, गाकर लिखकर रोकर हम उन लम्हों को फिर मिलने की चाह में याद करते रहते हैं। प्रेम की सारी मुलाकातें, सारी दूरियां, सारी शिकायतें, उसे एक लम्हे की याद में एक रुदन बन जाता है कि किसी को चाहना क्या एक सजा है। जिंदगी में चाहे कुछ लम्हों का साथ ही क्यों न हो, जाने वाले कभी नहीं जाते, वे रह जाते हैं कुछ अधूरी बातों में, मुलाकातों में और उन जगहों में जहां से कभी हम साथ गुजरे थे। और आपके दिल में, दिल वो जगह है जहां से कभी कोई जाता नहीं, हमेशा टिका रह जाता है। आप चाहें भी कि पला व्यक्ति दिल से चला जाए, लेकिन नहीं, मुमकिन नहीं होता है। तो अब चलिए यादों के गलियारों में चलते हैं। कौन सी यादें आपके जहर में दस्तक देती हैं ये बताइएगा आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, www.facebook.com/vbsmumbai ये टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब आ रहा है गाना उमर कैद फिल्म का, आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, देखते हैं इस बार सही कौन जवाब देता है। और यादों के गलियारों में जाकर कौन सी याद आई है एक लाइन में बताइए।

यादों के नाम बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं और कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम यहाँ नई जगह रहने आए तो एक प्यारी सखी मुझे मिली और हमने बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन हमारा साथ बहुत कम समय के लिए था। कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। एक श्रोता ने लिखा है कि हम साथ हैं आपके, काम बाद में करेंगे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और एक श्रोता ने लिखा है कि वो दिल कहाँ से लाऊं, बहुत मार्मिक है गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि आशा आशा पारिक थी उस फिल्म में जिसका आपने पूछा था, भरोसा के लिए लिखा है। और एक श्रोता ने, क्या कई श्रोताओं ने लिखा है, दिल आशायर है गमाज नगमा। हो सकता है इस पूरे प्रोग्राम में आपको ये गाना मिल जाए। बस ये बताइएगा कि आपको अगला गाना कौन सा आ सकता है, जरा ये भी तो अंदाजा लगाइए। देखते हैं कि आप, वैसे गाने तो आपने बहुत सारे लिखे हैं जो हमारे पास हैं, जो मतलब हमारी और आपकी पसंद आज बहुत सारी मिल रही है। और ये जो वो दिल कहाँ से लाऊं, ये तो हमने आपकी पसंद पर ही सुनवाया। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही गंभीर गाना है वो दिल कहाँ से लाऊं, सुपरहिट सॉन्ग है। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म भरोसा के नायक और नायिका हैं गुरुदत्त, आशा पारिख। और भरोसा के गाने के लिए बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई है। एक श्रोता ने लिखा है 1970 में खुले ग्राउंड पर शाम को हम अपने मामा मामी के साथ ये फिल्म देखी थी। और एक श्रोता ने जानकारी दी है आशा पारेख, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार रवि, फिल्म भरोसा। अब जरा कुछ और टिप्पणियां भी पढ़ दी जाए। एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत का फल मीठा होता है, पिताजी प्यासे कौवे की कहानी सुनाते थे, बाद में ये किताब में पढ़ा मैंने, मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, प्यासा कौवा वाली कहानी। और आप में से किस किस लोगों ने सुनी थी, किन किन लोगों ने, जरा बताइएगा। और जब प्यासा कौवा की कहानी सुनते थे तो आंखों के सामने क्या चित्र बनता था, वो भी बता सकते हैं। अब तो सामने आपके टेलीविजन पर देख लेते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख लेते हैं, लेकिन तब वो काल्पनिक चित्र बना करता था, और अब किताबों में चित्र बने बनाए आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत मैंने अपने डायरी में लिखा था और गाती भी थी, ये 1990 की बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमारे साथी की बात याद आई, अरे फिक्र क्यों करती है, मैं हूं।

0: ना, पर अफसोस वो अपने ही है। ओफ, एक श्रोता ने लिखा है कि कहते हैं वादा करना जितना आसान है उसे निभाना उतना ही मुश्किल। जब कोई वादा टूटता है तो सिर्फ एक बात अधूरी नहीं रहती, बल्कि किसी का अटूट विश्वास कांच की तरह बिखर जाता है। वादे अगर कांच के हों तो टूट जाते हैं, और अगर कच्चे धागे के हों तो छूट जाते हैं। क्या बात है भाई, ये वादे वाली बात आपने बेहतरीन लिखी है। अब कन्यादान फिल्म का ये गाना।
1: चेहरे से हटा सकता नहीं,
0: हीरो हीरोइन का नाम आपको बताना है।
1: दिल की बेताबी किसी सूरत छुपा सकता नहीं।

कन्यादान फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी की बोल थे शंकर जयकिशन का संगीत था, और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है आशा पारिख और शशि कपूर। जरा उन श्रोताओं के लिए जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर इस वक्त उपलब्ध नहीं है लेकिन रेडियो सुन रहे हैं, उनके लिए हम इबारत दोहरा देते हैं। कुछ बातें दिल नहीं मानता, कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती, किसी से मुलाकात कोई कहानी बन जाती है, तमन्नाओं और ख्वाबों का जहां आबाद हो जाता है। फिर एक सवाल उठता है, दिल ने तुम्हें चाहा क्या ये खता है, हुई जो मोहब्बत तो दिल ने कहा फिर कब मिलोगे इस बात का वादा करो, एक बार जो सनम से दिल लगा तो दिल दीवाना गाने लगा, लागी छूटे ना उसकी अदाएं मन मोहने लगी, दिल को संभालना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, दिल दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा कि कहीं मुलाकात अधूरी ना रह जाए, गले से लग जा, जिंदगी में शायद साथ इतना ही था, और फिर दिल शायर बन गया गम नगमा। मोहब्बत का दस्तूर भी कितना अजीब है। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं। इस इबारत के साथ आप भी कोई इबारत लिख सकते हैं, हो सकता है आपके भीतर छुपी प्रतिभा परवान चढ़े और एक कवि हो

0: जाए, आप एक कहानीकार हो जाए। बहरहाल, ये जो दिल शायर बन गया, इसको लेकर बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणी आई है और एक गाना चुना है हमारे श्रोताओं ने, गैम्बलर फिल्म का। दिल आज शायर है, गम आज नगमा। तो चलिए यही गाना हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन जरा बताइए कौन है हीरो, हीरो का नाम बूझना है आपको।
1: गम आज नगमा है, सब ये गजल है सनम।
0: गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

0: रहेंगे।
1: गैम्बलर फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, नीरज की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत। हमारे सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया देव आनंद, और गीतकार संगीतकार का नाम कुछ श्रोताओं ने गलत भी दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बचपन में सबसे पहले कहानी सुनी थी चिड़िया और कौवे की। चिड़िया मोम से घर बनाती है, कौवा गोबर से घर बनाता है। बरसात में कौवा का गोबर का घर बह जाता है और भीगा कौवा चिड़िया के मोम के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन घर छोटा होता है और चिड़िया अपने छोटे चूजे को खाना खिलाने में व्यस्त होती है, इसलिए वो कौवा को अंदर आने नहीं देती। इस तरह की कहानियां बहुत प्रचलित है और हम सब ने अपने अपने बचपन में सुनी है। दरअसल वो जो कहानी वाला बचपन था कहीं गुम हो रहा है। अब कहानियों की बजाय मोबाइल वाला बचपन है। अब बहुत सारे मम्मी पापा को कहानियां याद ही नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं कि कोई कहानी वाली किताब बताओ ना जो हम पढ़कर सुना दें, या कोई वो बताओ, लिंक बताओ जहां हम उसे लगा दें तो सुनते सुनते सो जाए। भाई वो लिंक वाली कहानी का वो सुख नहीं है जो माँ अपनी जबान से मॉड्यूलेट करके स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ सुनाती है। बहरहाल

एक श्रोता ने लिखा है कि लिखना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर ये वक्त बहुत जालिम है, मिलता ही नहीं। वक्त को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कीजिए और लिख डालिए। एक श्रोता ने लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह, अपने जीवन साथी से प्यार करना, रिश्ते को पवित्र रखना है और बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आप अपनी बहुत अच्छी दोस्त याद आ गई इस प्रोग्राम के साथ और अपना प्यारा पुराना घर याद आ गया जहां मेरी दादी और दादा रहते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत के साथ मैंने भी कुछ लिखा है कि उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, मशहूर शायर साहिल धानवी की पंक्तियां प्रेमियों के दिलों की हालात बयां करती हैं कि हर प्रेम कहानी मुकम्मल नहीं होती, प्रेम कहानी करवट लेती और उसमें विरह उत्पन्न हो जाता है। वो प्रेम जीवन भर नदी के दूसरे छोर की तरह साथ साथ चलता है, महसूस भी होता है किंतु ता उम्र पहले छोर से मिल नहीं पाता। भाई प्रेम के साथ दर्द तो जुड़ ही जाता है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो मीराबाई क्यों कहती कि जो मैं ऐसा जानती नगर ढिंढोरा पीटती, प्रेम किए दुख होए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला गाना सुनते हैं। जरा बूझिए आप गीतकार का नाम और स्वर किसकी आवाज में ये गाना है, फिल्म बड़ा आदमी। और कोई नहीं बूझ पाया ये गाना, बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग गाने लिखे हैं लेकिन ये गाना किसी ने नहीं लिखा। जरा सुनिए तो, और जरा संभालिए अपने दिल को और नोट कर लीजिएगा डायरी में ये गाना भी, जो लोग नियमित रूप से नोट करते हैं गाना।

एक श्रोता की टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि मोहब्बत का फलसफा अजीब है। जब प्रेम अपने रंग में होता है तो साधारण से दिन भी उत्सव लगने लगते हैं। हर आहट में संगीत सुनाई देता है और हर ख्वाब में उम्मीदों के फूल खिल उठते हैं। लेकिन यही मोहब्बत जब अधूरी रह जाती है या बिछड़ने की दास्तान बनती है, तब वही फूल यादों की चुभन और अश्कों की नमी में बदल जाते हैं। मोहब्बत इबादत भी है और इकरार भी है, मुकद्दर के इम्तिहान की तरह कठिन भी। शायद इसीलिए मोहब्बत का फलसफा अजीब होते हुए भी बेहद खूबसूरत है, क्योंकि ये इंसान को जीना, मुस्कुराना, इंतजार करना और कभी कभी टूटकर फिर से संभलना भी सिखा देता है और बहुत सहनशीलता भी सिखाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे चाचा जी बाहर गांव सर्विस करते थे, तो उन्होंने एक रेडियो लाया था। वो वापस सर्विस पे जाते थे तो रेडियो पूरे दिन मेरे पास रहता था। तो आज की इबारत बहुत सुंदर लग रही है और मैं वो दिन याद कर रहा हूँ। शुक्रिया इस बात के लिए। अब बहुत सारे श्रोताओं की ओर से इस गाने की फरमाइश आई है, फिल्म ये रात फिर ना आएगी, और जो इबारत है, इबारत में जो शब्द है, फिर मिलोगी कभी इस बात का वादा कर लो, तो इसमें कई शब्द आ जाते हैं। प्यार वाले शब्द भी आते हैं, इकरार वाले भाव भी आते हैं। तो सुनिए जरा ये गाना और हमें बताइए कि किस पर फिल्माया गया है ये गीत और गीतकार का नाम। और आपको अपनी मुलाकात याद आती है किसी से तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। यादों के गलियारों में आप टहल रहे हैं इन गानों के माध्यम से, तो अपनी यादें साझा करते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। कभी किसी से आपने ये बात कही थी जो गाने में है? कभी किसी से पूछा फिर कब मिलोगी?

बड़ा आदमी फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और आपसे पूछा था गीतकार का नाम और किसकी आवाज में गाना है। सभी श्रोताओं ने सही बताया, महेंद्र कपूर और लता।

गीतकार एस एच बिहारी, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजें फिल्म ये रात फिर ना आएगी। और श्रोताओं की ओर से जानकारी आई है, शर्मिला टैगोर, एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पत्नी से मेरी पहली मुलाकात मेरे जीवन का एक यादगार पल है, इस गाने के साथ जुड़ा हुआ है। पहली बार उन्हें देखकर मन में अपनापन और सम्मान का भाव जागा। उनकी सादगी, मुस्कान और सहज स्वभाव ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो मुलाकात भले ही छोटी थी, लेकिन उसी ने हमारे रिश्ते की खूबसूरती की शुरुआत की। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल पार्क में गर्मी बहुत हो रही है, कभी कभी कोई नहीं आती है। जब चलने का समय होता है तब पूछती हैं, कल आओगी ना, मिलोगी ना। भाई ये तो सहज सा सवाल है और ये इस गाने में जरूर है। और हमने पूछा था कि आपने कब किसको कहा था, पूछा था ये सवाल, तो बता सकते हैं आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता की टिप्पणी है कि लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह। अपने जीवन साथी से प्यार करना रिश्ते को पवित्र रखता है। बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यासा कौवा वाली कहानी अपनी पोती को सुना रही थी, जैसे कि मैं हिंदी में सुना रही थी। पूरी कहानी सुनाने के बाद बोलता है, दादी ये प्यासा कौवा नहीं था, ये तो थ्रस्टी क्रो था। तब मैंने उसे बताया कि तुम्हें प्यास लगती है तो बोलते हो ना कि मम्मी मुझे प्यास लगी है, तो हिंदी में प्यासा ही बोलते हैं। क्या बात है भाई। तो ठीक है, अगर वो थ्रस्टी क्रो के नाम से सुनता है तो भी उन्हें सुनाइए, धीरे धीरे वो प्यासा कौवा समझ जाएगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि जरा संभालिए अदाएं आपकी, ये गाना साल 1961 का है, बड़ा आदमी फिल्म का, बड़ा ही खूबसूरत और सदाबहार रोमांटिक युगल गीत है। इस गाने को सुर कोकिला लता मंगेशकर और दिग्गज गायक महेंद्र कपूर ने अपनी सुरीली आवाज से सजाया था। और अभी अभी एक टिप्पणी आई है, लिखा है हमारे श्रोता ने कि अनेकों प्रेरणादायक कहानियां बच्चों को बचपन से आज तक धर्म पत्नी सुनाती रहती हैं और साथ में मैं भी सुन लेता हूँ, मैं स्वयं व्यस्तता के कारण सुना नहीं पाता हूँ। चलिए अच्छी बात है, ये सुनते और सुनाते रहिए। अब फिल्म दिल ने पुकारा, बताइए पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना। मुकेश की आवाज है, गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

और अब हम गाने के साथ थोड़ी सी बेवफाई करके ये गाना पूरा नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि एक गाना जो जरूरी है इबारत से जुड़ा हुआ और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, दिल ने पुकारा फिल्म का ये गीत था, उसके बाद छोटी सी मुलाकात ये वाला गाना सुनवाना है, लेकिन कुछ टिप्पणियां भी आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ मुलाकातें टीस देती हैं, बात अधूरी रह गई, साथ छूट गया। कुछ एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पतिदेव मुझसे भोपाल मिलने आया करते थे, वो बात याद आ गई। एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह से 10:30 बजे तक विविध भारती हम सुनते हैं, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के साथ हमारी दोस्त याद आ गई, दादी और दादा याद आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लाइन में कहानी वाली बात, बहुत मजा आया पढ़कर। अब ये प्रोग्राम का आखिरी

0: छोटी सी मुलाकात, बस आज की मुलाकात तो बस इतनी ही हो सकती है। यही फिल्म का नाम था। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें थी, हसरत जयपुरी के बोल थे। आज के प्रोग्राम का सफ़र बस इतना ही। सुरीला सफ़र का ये सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 32वीं कड़ी।

0: बारिसाल अधिवेशन को पहले ही दिन मिले इस उत्स्फूर्त प्रतिसाद से बौखलाए हुए अंग्रेज अधिकारी जमा हुए युवाओं और नेताओं पर निर्मम लाठीचार्ज करके भी नहीं रुके। अधिवेशन के लिए आए सभी लोगों के नेता और आदरणीय स्थान रखने वाले सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को ब्रिटिश अधिकारी कैंप ने गिरफ्तार कर लिया। उस दिन अदालत की छुट्टी होने के कारण उन्हें मजिस्ट्रेट के घर ले जाया गया। वहां सुरेंद्रनाथ ने सरकार की तानाशाही की कड़े शब्दों में निंदा की। इससे चिढ़कर मजिस्ट्रेट इमर्सन ने अदालत की अवमानना के लिए उन पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया, साथ ही जुलूस में भाग लेने के लिए 200 रुपये का जुर्माना और अलग से लगाया। वकील और सबूत पेश करने का अनुरोध भी इमर्सन ने ठुकरा दिया। सुरेंद्रनाथ ने तुरंत यह जुर्माना भरा और सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए अधिवेशन स्थल की ओर दौड़ पड़े।
1: वंदे मातरम शब्द पर प्रतिबंध लगाना, सुरेंद्रनाथ की गिरफ्तारी, उन्हें हुआ जुर्माना, लाठीचार्ज, ये सब गैर कानूनी था। उस परिस्थिति में भी वंदे मातरम की विराट गूंज के साथ अधिवेशन की शुरुआत हुई। वंदे मातरम गायन से सभा शुरू हुई। अश्विनी कुमार दत्त और सुरेंद्रनाथ बनर्जी अभी सभा स्थल पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए निवारण चंद्र दास गुप्त ने भाषण दिया। अध्यक्ष अब्दुल रसूल ने कहा,
2: हिंदू हो मुसलमान हो, हम सबको मिलकर ये आजादी की लड़ाई लड़नी है। हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए। देश की भलाई के लिए हम में से हर एक को ये काम करना ही चाहिए।
1: ये भाषण चल ही रहे थे कि सभा मंडप के बाहर वंदे मातरम के नारे और शोरगुल सुनाई देने लगा।

0: सुरेंद्रनाथ बनर्जी का सभा मंडप में आगमन हुआ। उनके आने से सभा स्थल पर जुटे युवाओं में और भी उत्साह भर गया। लाठीचार्ज के घामों से लहूलुहान हुए शरीर का ख्याल भी कार्यकर्ताओं को उस उत्साह के जोश में नहीं रहा। स्वयं सुरेंद्रनाथ भी इस प्रतिसाद से भाव विभोर हो गए। मंच पर पहुंचने के बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अत्यंत संयमित स्वर में मजिस्ट्रेट के बंगले पर घटी घटना सुनाई। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल का भी भाषण हुआ।
1: बारिसाल का युवा नेता चित्तरंजन गुहा बुरी तरह से घायल हो गया था। एक दिन पहले ही निकले जुलूस में आगे रहने वाला यह युवक वंदे मातरम के नारे लगा रहा था और बाकी युवाओं से मिले प्रतिसाद से चिढ़े अंग्रेज अधिकारी ने इस युवक की बेरहमी से पिटाई की। उस

0: उनसे लथपथ हालत में भी वो वंदे मातरम के नारे लगाता ही रहा, इसलिए सिपाहियों ने उसे सामने के तालाब में फेंक दिया। साथियों के कारण उसकी जान बची। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि दिन दहाड़े सड़क पर वो भारत माता की जय जयकार कर रहा था। उस हालत में भी उसके पिता मनोरंजन गुहा उसे मंच पर लेकर आए। उनका भी भाषण हुआ।
1: दूसरे दिन 15 अप्रैल को सुबह फिर अधिवेशन शुरू हुआ। बिपिन चंद्रपाल युवाओं को मार्गदर्शन देने लगे। तभी बंग भंग विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संध्या के संपादक ब्रह्म बांधव उपाध्याय सभा स्थल पर आए। उन्हें देखकर तो प्रतिनिधियों ने फिर से वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। वंदे मातरम पूरे गीत का और मागो जाए जौन जीवन चले गीत का भी गायन हुआ।

0: अश्विनी कुमार दत्त ने सभा के सामने प्रस्ताव रखा,
1: जिस स्थान पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया, हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को गिरफ्तार किया, उस स्थान पर इस घटना की याद में एक स्तंभ बनाया जाए।
0: इस प्रस्ताव पर वहीं के वहीं अपने हाथों की अंगूठियां और पैसे देकर सदस्यों ने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया।
2: उसी समय कैंप ने निषेधाज्ञा का आदेश दिखाकर सबसे वचन मांगा कि कोई भी प्रतिनिधि सभा समाप्त होने पर वंदे मातरम का घोष नहीं करेगा। बीते कल निर्ममता से लाठीचार्ज करने वाले कैंप को सभा स्थल पर देखकर उपस्थित जन समुदाय और भी क्रुद्ध हो गया। कैंप सुरेंद्रनाथ बनर्जी के पास गया और बोला,
3: लिसन, आई बी सेफ हियर विथ यू। Being a government officer, I have to obey the government orders.
2: सरकारी अफसर होने के नाते मुझे सरकारी हुक्म मानना पड़ता है। सभा समाप्त होने पर यहाँ जुटे लोग वंदे मातरम के नारे नहीं लगाएंगे, ऐसा आश्वासन आप दें, तभी मैं ये सभा आगे चलने दूंगा, अन्यथा अभी ही इसी समय सभा बंद करनी पड़ेगी।
0: सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित सभी नेताओं ने ऐसी सहमति देने में असमर्थता जताई। कैंप ने सभाबंदी का आदेश दिया। उपस्थित जनसमुदाय सभाबंदी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लोगों को समझाया,
1: कल बहुत बड़ा रक्तपात हुआ है, आज फिर उसकी पुनरावृत्ति किस लिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिवेशन का हमारा उद्देश्य सफल हो गया है।
0: अध्यक्ष ने परिस्थिति पर विचार किया, अधिक विरोध से स्थिति बिगाड़ने की बजाय ये अधिवेशन सर्वसम्मति से बर्खास्त कर दिया, परंतु वंदे मातरम के संबंध में कोई भी वचन देने से उन्होंने इनकार कर दिया। क्रोधित कार्यकर्ता सड़क पर आ गए और भी जोर से वंदे मातरम का घोष करते रहे। खाली मंडप में रह गए केवल सशस्त्र सैनिक। अधिवेशन समाप्त होने पर बाहर निकल रहे लोगों से बिपिन चंद्र पाल ने कहा,
1: आज भले ही निषेधाज्ञा लागू की गई हो, फिर भी क्रांति की आग यहाँ भड़क चुकी है। आप सब अपने अपने गांव जाकर सभाओं का आयोजन करें और क्रांति की आग सब और फैला दें। आज का दिन शोक संतप्त होने का नहीं, बल्कि अत्यंत आनंद का दिन है।
2: अधिवेशन समाप्त कर घर जाने वाले प्रतिनिधियों का हर स्टेशन पर वंदे मातरम की घोषणाओं के साथ जोरदार स्वागत हो रहा था। बरिसाल से लौटते समय रेल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी से भगिनी निवेदिता ने कहा,
4: आपको जेल में बंद करने का सरकार का षड्यंत्र आपने विफल कर दिया है। अपने ही बुने जाल में ब्रिटिश सरकार फंस गई है। नैतिक विजय तो हमारी ही हुई है।
2: भगिनी निवेदिता की यह बात आगे सच साबित हुई।

नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है। जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम, एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 32वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद, संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार ममता सिंह, तकनीकी सहयोग किरण बंग, समृद्धि नाइक, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है। अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं। दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्ष

और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, SCO का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं IMO के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।
सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री

0: निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24 लाख रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

जिद्दी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। आइए अब सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। तीसरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं मुकेश की आवाज में।

मुकेश की आवाज में ये था तीसरी कसम फिल्म का गाना और रचना थी शैलेंद्र की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आइए अब सुने रोशन की बनाई तर्ज पर लता मंगेशकर का गाया गाना, रचना है साहिल लुधियानवी की फिल्म बहू बेगम।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमें। दिल दिया दर्द लिया फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी की बोल, नौशाद का संगीत।

दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। लिखा था इसे शकील बदायूनी ने, धुन बनाई थी नौशाद ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदा।

आप सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। राजा मेहदी अली खां के बोलते फिल्म थी वो कौन थी। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: दोस्तों, प्रकृति नियमबद्ध है, जैसे सूर्योदय होना, फिर शाम हो जाना, रात को चांद की चांदनी बिखेरना और भोर की पहली किरण के पहले चुपके से ओझल हो जाना। इसी तरह मौसम का भी चक्र है, जैसे गर्मी की तपिश के बाद रिमझिम बरसात, फिर गुलाबी ठंड और बाद में बसंत की बहार। इसी तरह जीवन के भी अपने चक्र हैं। इन्हीं में से बेहद मासूम और खूबसूरत नियम है छुट्टियों के बाद बच्चों का फिर से स्कूल लौटना। अब कई घरों में खेलकूद की जगह धीरे धीरे स्कूल जाने की तैयारियां अपनी जगह बना रही है। तो बस आज अपनी सहेलियों से इन्हीं बातों को, इन्हीं यादों को याद करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूं मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा महेश्वरी। पहली कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, सरिता कुमारी।
0: सरिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: दीदी, अयोध्या रसूलाबाद।
0: अरे वाह, अयोध्या से, अयोध्या नगरी से आप बात कर रही हैं। तो बताइए, क्या चल रहा है जीवन में, क्या करती हैं आप?
1: क्या दीदी, बस ये घर में रहती हूँ, घर के काम करती हूँ। अच्छा। आप बताइए, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं और हम तो हमेशा ही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाली जितनी हमारी सखियां हैं सब हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे।
1: इतना आज बहुत खुश हूँ, इतना दिन के बाद कॉल लगा, इतना दिन से तगाई कर रही थी।
0: जी, हमें पता है सरिता जी, बहुत कोशिश करने के बाद फिर जब फोन लगता है तो उसकी खुशी और उसका आनंद क्या होता है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हमारी बात हो रही है। तो बताइए, आप क्या सुनना चाहेंगी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: दीदी दी, प्रेम रतन धन पायो।
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का कौन सा गीत?
1: वही प्रेम रतन धन पायो गाना
0: जी,
1: ही है।
0: जी, तो टाइटल सॉन्ग आपको सुनाते हैं। तो चलिए विविध भारती की ओर से सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: आज जी,
0: जी
1: मैं चांदनी जी बोल रही हूँ, छत्तीसगढ़
0: चांदनी जी,
1: बिलासपुर से। हाँ
0: चांदनी जी छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, क्या बात है
1: जी
0: चांदनी जी,
1: जी
0: क्या करती हैं आप? कुछ काम करती हैं, गृहिणी हैं, क्या करती हैं? अपने बारे में कुछ बताइए
1: जी मैं हाउस वाइफ हूँ
0: जी, क्या
1: और
0: बात है।
1: घर को ही देखती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ और सारा दिन रेडियो सुनती हूँ। मेरा रेडियो सुनते सुनते सारा दिन पूरा काम होता है
0: देखिए, रेडियो से जो प्रेम है, विविध भारती से जो प्रेम है, इसी वजह से तो हम आपस में जुड़े हुए हैं, है ना चांदनी
1: जी
0: जी? अच्छा मुझे बताइए, बच्चे हैं आपके कितने हैं?
1: जी जी मेरे 3 बच्चे हैं मैम,
0: अच्छा
1: दो बेटे हैं मैम, एक लड़की है, एक
0: अच्छा,
1: भैया
0: क्या
1: है
0: बात
1: मेरी।
0: है।
1: जी मेरी एक जो बेटी है वो टीचर है, तो दोनों बच्चे मतलब एक पापा के साथ मतलब शॉप पे रहते हैं और एक बैंक में है बेटा।
0: अच्छा, तो बड़े बच्चे हैं, तो हम आपको यादों के गलियारे में ले जाना चाहते हैं, जहाँ जब ये छोटे हुआ करते थे आपके बच्चे, स्कूल जाने की जब तैयारियां होने लगती थी, तो घर में क्या माहौल रहता था? किताबें लाना, वो स्कूल के लिए लाइन में खड़े होना, फिर जब किताबें कॉपियां लेकर आके घर में उनके कवर चढ़ाना, आपकी क्या यादें हैं उसको लेके?
1: बच्चे जब आते थे कॉपी किताब लेके, पापा जब लेके आते थे उनसे, तो कहते थे मम्मी कवर चढ़ा के दो, तो हम बहुत उसको इतना तंग करते थे बच्चा। हालांकि तो हमारा ही काम बनता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं मैम
0: जी
1: तो उनके ऊपर कवर चढ़ाते थे, वो खाकी कवर चढ़ाने के बाद जो खाकी कवर आते थे ना पहले,
0: जी
1: खाकी
0: जी
1: कवर
0: जी
1: उसको चढ़ाते थे, फिर उसके बाद जो चिट बोलते हैं वो चिट लगाते थे, फिर नाम लिखते थे, उसके बाद
0: हाँ
1: फिर वो बोलते थे मम्मी उसके ऊपर पन्नी वाला कवर लगाइए, वो लड़कों ने हमारा पन्नी कवर लगाया, मम्मी हमको भी लगा के दीजिए, तो वो भी हम करते देते थे उनको, ताकि
0: क्या बात।
1: बच्चों को लगे कि नहीं हम उनकी कॉपी सही रहे, और उनको ये भी सिखाते थे कि बच्ची अपने हर चीज को संभाल कर अच्छे से रखना है।
0: बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें चांदनी जी। आज बताइए, आप कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: हाँ फिल्म का नाम है मैम रोटी कपड़ा और मकान, गाने के बोल है मैं ना भूलूंगा मैं
0: मैं ना
1: ना भूलूंगी।
0: भूलूंगी। तो चलिए सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, ये बताइए आज इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम धन्नो जायसवाल बोल रहे हैं झांसी से।
0: झांसी से धन्नो जायसवाल।
1: हमारे
0: धन्नो जी, मैं पूछना चाहती हूँ, आपके कितने बच्चे हैं?
1: हमारे
0: जी
1: 3 बच्चे हैं।
0: जी तो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं?
1: हाँ, बड़े हो गए। एक तो बड़ा है, उसकी शादी कर दिया है, बहू भी है, और दो लड़कियां हैं, वो दिल्ली में हैं, उनकी शादी कर दिया।
0: अच्छा जी, जब बच्चे छोटे थे तो स्कूल जाते थे, तो स्कूल के लिए उनकी कॉपी किताबें आती थी, उस पे कवर चढ़ाना हो या फिर उनके झगड़े होते
1: सब
0: थे,
1: हम ही करते थे मैडम, सब हम करते थे।
0: तो इसी तरह से आपने समझा बुझा के उनका पालन पोषण किया है और आज आपके देखिए बच्चे तीनों खूब अच्छी जगह पर हैं। इसी बात पे मुझे बताइए, आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम गीत सुनना चाहते हैं मैडम। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बैठाए दिल को बेचैन हो जाती है, जब होता है, जब किसी से प्यार होता है।
0: क्या बात है, तुम बिन फिल्म का। चलिए
1: हाँ,
0: आप ही
1: तुम
0: की
1: बिन तुम बिन
0: जी, तो तुम बिन फिल्म का आप ही की पसंद का ये गीत विविध भारती की ओर से आपके लिए।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में अंतराल हुआ खत्म और सुनते हैं किसकी घंटी आज फिर बजी है। हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: आपकी मधु झुंझुनवाला जयपुर से बोल रही हूँ मैं।
0: जयपुर से मधु झुंझुनवाला जी। जी बताइए मधु जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप
0: जी
1: बताइए।
0: जी हम लोग भी सब बिल्कुल अच्छे हैं। और ये बताइए, क्या करती हैं आप जीवन में?
1: ऐसे तो साधारण ग्रह नहीं हूँ, पर अपने भावों को कविताओं का रूप देती हूँ, लिखती रहती हूँ। लेखन मेरा प्रिय विषय है।
0: भाई देखिए, गृहिणी होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वो असाधारण काम है, हम सब जानते हैं। तो मधु जी बताइए, आप क्या लिखती हैं, किस तरह का लेखन है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: मैं वास्तव में तो भावों को ही, अपने भावों को ही शब्द रूप देती हूँ।
0: जी, तो आपकी कोई रचना आप हमें सुनाएंगी अपनी सभी सखियों के लिए?
1: हाँ,
0: जी
1: मैं
0: सुनाइए।
1: आपको एक अपनी रचना सुनाती हूँ।
0: जी
1: नमनाक हो चली थी पुरवाई, नमनाक हो चली थी पुरवाई, पतवार जिंदगी की जंग खाई, कर दिया तेरे हवाले खुदा को, देखी जब पारावार की गहराई। जब से तुमको नाखुदा माना है, कुत्ते हुआ ये दिल बेगाना है, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, गुफा में ढूंढती नहीं ठिकाना है। ये मेरी अतुकान कविता है।
0: बहुत सुंदर कविता। आप कहती है साधारण महिला है, कहाँ इतने असाधारण आप अपनी कला को लिए हैं और शब्दों में अपने भावों को उतार पा रही हैं, तो ये भी तो अपने आप में अद्वितीय एक गुण है ना। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: सरस्वती चंद्र का
0: जी
1: छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।
0: जी बेहद सुंदर गीत है, तो विविध भारती की ओर से आपको सुनाते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, मैं वैजयंती कैलाश सुतार बात कर रही हूँ, बीड जिले से। हाँ
0: बीड़ जिले से वैजयंती सुतार। वैजयंती जी, कैसा चल रहा है जीवन, क्या चल रहा है इन दिनों में, बताइए।
1: अच्छा चल रहा है।
0: क्या करती हैं आप?
1: कुछ नहीं, मैं घर में हूँ, मैसेज हूँ। और या इस समय मेरे मिस्टर की दुकान पे बैठी हूँ, टाटी चौक में।
0: जी
1: हाँ, उनकी रसवंती शॉप है, रसवंती
0: जी
1: गन्ने की रस जूस सेंटर। हाँ
0: अच्छा, गन्ने का जूस सेंटर। तो इन दिनों
1: बहुत
0: तो बहुत आप लोग एकदम व्यस्त रहते होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है।
1: बहुत
0: और
1: बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं और काम भी बहुत बढ़ जाता है ना मैम।
0: जी बिल्कुल, तो आप अपने पति का हाथ बटा रही हैं इन दिनों।
1: हाँ, उनका हाल तो क्या बताने का, वो हैंडीकैप्ट होके भी बहुत काम करते हैं। स्ट्रगल 7 बजे से शाम 8 बजे तक तो स्ट्रगल चालू ही रहता है मैम।
0: हम उसे स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, ये जीवन यापन का साधन है ना। मेहनत तो सभी लोग करते
1: हाँ
0: हैं, सभी
1: यस,
0: का एक
1: हाँ हाँ
0: अपना
1: यस,
0: अपना अलग अलग व्यापार है, काम का तरीका है। मेहनत करते हैं तो उसका रंग भी तो बहुत खूबसूरत निकल के आता है ना
1: बहुत बहुत बहुत।
0: जी। तो घर में आपके बच्चे भी हैं?
1: हाँ, मेरे को 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई है, 2 बेटे हैं, वो भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर है। और मिस्टर जो है वो काम भी कर रहे थे यहाँ पे।
0: जी जी तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब बच्चे आपके छोटे थे तो गर्मी की छुट्टी के बाद वापस स्कूल शुरू होते हैं, है ना, तो उन दिनों में बच्चों की कॉपी किताबें लेकर आना, फिर उस पे कवर चढ़ाना, तो ये सब, ये जो बातें हैं, ये सब इसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे हुआ करता था आपके घर में?
1: बहुत बहुत अच्छा स्ट्रगल। और छुट्टों में भी कैसा करते थे, पढ़ाई नहीं से ध्यान रहते थे उनके। फिर अब स्कूल शुरू होने ही वाला है, तो फिर ये बुक लो, बुक लो, पेंसिल लो, कुछ कुछ बॉक्सेस लो, पेंसिल लो, राइटिंग के, ड्राइंग के, जिसमें व्यस्त रहते थे। जब स्कूल होती थी शुरू, तो फिर कवर लगाने का, नए बुक लेते तो मैं कवर लगा के देती थी उनको, भी वैसे कॉपी करते थे।
0: जी बिल्कुल, और वो होता है ना कि नई नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपके बच्चे भी ऐसे
1: ओ
0: करते
1: बहुत बहुत,
0: थे?
1: हाँ ये शाम भी करते थे ना, वो उधर की पत्ता इधर इधर का उधर ऐसा करके हम
0: हाँ
1: उसको ऐसे कुछ खेल बनाते थे।
0: हाँ ये बात तो है। तो देखिए ना, बच्चों के साथ साथ
1: हाँ
0: आपको अपना भी जो वक्त है वो भी याद आ गया है ना
1: बहुत बहुत मैम,
0: जी। आपसे बात करके हमें
1: बहुत
0: बहुत
1: बिल्कुल।
0: अच्छा लगा वैजयंती जी। आज
1: हाँ
0: बताइए आप
1: हाँ
0: कौन सा
1: मुझे
0: गीत
1: जिंदगी
0: सुनना चाहती हैं?
1: हर कदम एक नई जंग है, उनको पसंद
0: अच्छा, तो आपके पति को पसंद है
1: है।
0: इसलिए आप सुनना चाहती हैं।
1: बहुत पसंद है, यस।
0: तो चलिए सुनते हैं आप दोनों की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद देखते हैं आज किस सखी से हमारी बातचीत होगी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम अनीता विजयवर्गीया है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं अनीता जी आप?
1: जी मैं जयपुर में रहती हूँ।
0: जी क्या बात है, जयपुर शहर यानी गुलाबी शहर हमारे देश का है
1: जी,
0: ना?
1: जी बिल्कुल
0: जी, तो अनीता जी क्या करती हैं आप?
1: जी जी मैं बेसिकली गृहिणी हूँ और मुझे लिखने का शौक है।
0: क्या बात है।
1: कविताएं लिखना पसंद करती हूँ, तो मैं जीवन पे और सभी मनोभावों पे मेरी कविताएं होती हैं।
0: ये तो बहुत ही सुंदर बात है। घर के सब कामों के बीच में इन सब के लिए वक्त निकाल पाती हैं आप। और ये भी बताइएगा कि बचपन से शौक था, किस तरह से आपने इसके लिए अपने आप को कुछ शिक्षित किया या मन में कुछ भाव आते थे, कुछ शब्द आते थे और फिर आपने उनको पन्नों पे उकेरा?
1: जी, मुझे लगता है कि कोई भी लेखक एक जन्म से ही वो लेखक होता है। बाद में उसको किस समय ये उजागर होता है कि वो एक लेखक है, वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो कुछ अपनी गहरे मनोभाव, उसकी संवेदनाएं कभी ऐसे जब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो लगता है कि अब इन्हें पन्नों पर उतारना चाहिए,
0: जी
1: तभी वो एक लेखक बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बचपन से ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लेटर्स लिखती थी,
0: जी
1: तो सभी को बहुत पसंद आते थे। बेसिकली वैसे लिखा नहीं कुछ, फिर बाद में धीरे धीरे जाके मेरी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक कविता लिखनी थी, तब पहली बार मैंने कविता लिखी और उसके बाद मैं लिखती चली गई।
0: जी, हम आपसे कविता तो सुनेंगे ही, ये भी बताइए कि आप सिर्फ अपने तक ही है ये कविता या आप कहीं पर मंचन करती हैं, कहीं जाती हैं?
1: जी जी मैं मंचन भी करती हूँ, मैं कई काव्य मंचों से जुड़ी रहती हूँ
0: जी
1: और उनके प्रोग्राम्स में जाती रहती हूँ।
0: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता जी, आपकी कोई रचना हमें अगर आप सुना सके तो जरूर सुनाइए।
1: जी बिल्कुल, मुझे एक कविता बेहद पसंद है, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी।
0: जी,
1: इसका शीर्षक है आशियाना।
0: आशियाना शीर्षक।
1: जी,
0: जी
1: ऐ मेरे हमसफर, एक ऐसा आशियाना बनाना जैसे पूरा हो कोई ख्वाब सुहाना, तुम्हारे कांधे सी मजबूत, उसकी छत हो छाया हो, मेरे इस जीवन पर बस तेरा ही साया हो, प्यार के सीमेंट में आंखों की थोड़ी नमी घोलना, ईंट दर ईंट रिश्तों की पुख्ता दीवार जोड़ना, तुम्हारे बड़े दिल की तरह हो एक बड़ा सा कमरा, हर शब हो शहर बस प्यार का ही हो पहरा, एक खुली सी बालकनी हो और हो तुम्हारी गलबैयों का झूला, महक हो रिश्तों की और सुलगता रहे रिश्तों का सांझा चूला, ऐ मेरे हम सफर, एक ऐसा आशियाना बनाना, दरीचों पर हया का पर्दा रहे, सूरज की रोशनी से आंगन महका करें, मुमकिन आशाओं सी खुली छत हो, हर आसमां पर सितारों की गश्त हो, ऐ मेरे हम सफर, एक ऐसा आशियाना बनाना, मन करता है हमारे आशियाने की बगिया में खो जाऊं, तेरे कांधे पर सर रखूं और सो जाऊं, चाहे जैसे भी हो हालात, हो सुकून दिल में और छूटे ना अपना साथ। धन्यवाद।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनीता जी। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आशियाना हर एक के जीवन में हो और हम आपसे और भी बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन अगली किसी बार, अगले कोई कॉल में हम आपसे आपकी और कविताएं सुनेंगे। आज लेकिन बताइए आप, आपके पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैंने ये कविता आशियाना पर सुनाई, तो आप मुझे हर फिल्म का आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है वो सुना दीजिए।
0: बिल्कुल, चलिए सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो मैडम,
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: साधना गजवे बोल रही हूँ मैडम। मैं नागपुर से। मैं
0: नागपुर से साधना जी। साधना जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ मैडम, आप लोग कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और इन दिनों क्या चल रहा है जीवन में अभी?
1: गर्मी के दिन है, विविध भारती है साथ में, गाने
0: जी
1: का मौज लेते हैं, दिन भर विविध भारती के साथ रहते हैं।
0: जी तो आप घर पर ही रहती हैं या कुछ काम, किसी तरह का कोई काम करती हैं?
1: काम तो मतलब मैडम, मैं ऑर्डर लेके पापड़ अचार बना देती लोगों को, और घर में रहती हूँ, गृहिणी हूँ घर की। पापड़
0: जी, मतलब आप अचार और पापड़ बनाने का भी काम करती हैं।
1: बनाते, ऑर्डर दे, हाँ ऑर्डर पे बनाते,
0: जी, तो ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं आपको, किस तरीके से लेती
1: किलो
0: हैं?
1: से। ओ, घर के जैसे सब लोग जॉब पे रहते हैं ना, यहाँ लता मंगेशकर हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है, तो यहाँ सब हॉस्पिटल के लोग रहते हैं
0: अच्छा।
1: जॉब वाले, तो उन लोग ऑर्डर देते हैं तो उनका बना देती हूँ।
0: क्या बात है। तो इस साल कितना ऑर्डर मिला, और मतलब अच्छी आपकी कमाई हो गई?
1: अभी 10 किलो का बनाई थी मैंने। हाँ
0: तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर का भी काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके अलावा इतने सारे आप ऑर्डर्स लेती हैं, और अचार और पापड़ बनाना ये हर एक की बस की बात नहीं है, इसके लिए भी कला होनी चाहिए। तो बताइए साधना जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: देवा श्री गणेश का ये गाना सुनना है,
0: बिल्कुल,
1: अग्निपथ 2 का।
0: आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: डॉक्टर श्रुति गुप्ता।
0: डॉक्टर श्रुति गुप्ता, कहाँ से बात कर
1: हाँ
0: रही हैं
1: जी,
0: आप डॉक्टर श्रुति?
1: कोटपुतली जयपुर राजस्थान से। कोटपुतली
0: कोटपुतली, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कैसा है ये?
1: हाँ जी, ये छोटा टाउन है, जयपुर और दिल्ली का हाईवे है, वहाँ पे एक छोटा टाउन है कोटपुतली, तो मैं
0: जी
1: वहीं पे रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपने बताया आप डॉक्टर हैं, तो किस विधा
1: हाँ
0: में
1: जी,
0: आपकी स्पेशलाइजेशन है बताएंगी आप?
1: मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ।
0: आयुर्वेदा डॉक्टर, तो ये तो
1: जी,
0: बहुत ही अच्छी बात है। और आप प्रैक्टिस कर रही हैं, करती हैं, कोटपुतली में करती हैं, किस तरह से हैं बताइए, आपके बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ जी, मैं प्रैक्टिस करती थी पहले, बट अभी रिसेंटली लोकेट हुई हूँ, तो अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट थोड़े टाइम बाद वापस प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी।
0: अच्छा, तो यानी
1: हाँ
0: आप अभी यहाँ पे, आपका ट्रांसफर हुआ है किस तरह से, मतलब आप क्या हुआ है?
1: हाँ जी, एक्चुअली रिसेंटली मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे अल्ट्राटेक में जॉब करते हैं,
0: अरे वाह।
1: तो इसलिए मैं यहाँ पे रिलोकेट हुई हूँ।
0: तो अभी अभी शादी हुई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर श्रुति। और अभी अभी आपका ये वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है ना?
1: जी, बिल्कुल।
0: तो कैसा लग रहा है अब आप यहाँ पर नए शहर में हैं? पहले आप कहाँ रहती थी, मतलब मायका कहाँ का है आपका?
1: मेरा मायका कोटा राजस्थान का है।
0: अच्छा, तो प्रैक्टिस अब यहाँ पर नहीं हो पा रही है, या आप अभी कर नहीं रही हैं?
1: नहीं, अभी मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर मैरिज, फॉर सेटलिंग इन।
0: तो ससुराल वाले अलाउ करेंगे ना आपको, मतलब काम करने के लिए, इस तरह से कोई रोक टोक तो नहीं है?
1: नहीं, मेरे ससुराल वाले दे आर वेरी फॉरवर्ड माइंडेड, तो वहां पे कोई परेशानी नहीं है,
0: बहुत अच्छी बात
1: इसलिए।
0: है। तो पेशेंट को किस तरह से आप, शुरुआती आपका जो उपचार है वो कैसे होता है?
1: हाँ जी, एक्चुअली शुरुआती उपचार में हम लोग आयुर्वेदा में सबसे पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं। हम पेशेंट से पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस समय क्या काम करते हैं उनका, और पहले की भी कोई बीमारी की अगर उनको हिस्ट्री रही हो, उनके परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी रही हो, तो हम ये पहले ये सब कुछ जानते हैं। उसके बाद आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेद उपचार जड़ से होता है, ऐसा सुना
0: जी
1: होगा, तो
0: बिल्कुल जी
1: इसीलिए जड़ से उपचार करने के लिए हम सबसे पहले वजह पे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को भी कोई बीमारी हुई तो आखिर वो क्यों हुई है। फिर जैसे ही हमें वो पता चलता है, धीरे धीरे सवाल से पेशेंट कुछ बताता है, तो फिर उसके बाद में हम उसके इलाज पे जाते हैं।
0: जी तो डॉक्टर श्रुति, हमने सुना है ये उपचार में थोड़ा वक्त लगता है आयुर्वेदा में, तो क्या ये बात सही है?
1: जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपचार में वक्त लगे, वो रोगी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर
0: जी
1: बीमारी बहुत पुरानी होगी तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा, अगर वो हमारी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो समय लगेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है, बीमारी भी नहीं है, वो सारी बातें भी जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, खाना पीना ये सब वो मानते हैं, तो बहुत जल्दी भी उपचार हो जाता है।
0: जी बिल्कुल। तो आपकी ये जो नई विवाहिता जीवन है उसके लिए, और अब जब आप वापस से अपना काम शुरू करेंगे उसके लिए, दोनों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैं सौदागर मूवी का तेरा मेरा साथ रहे गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो चलिए आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते। ये तो बताइए, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता उइके।
0: क्या बात है सुनीता जी, तो बताइए कैसे हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं सिकंदरा वाराणसी जिला बालाघाट से बोल रही थी दीदी।
0: जी सिकंदरा से। तो ये इसके
1: जी
0: आसपास
1: जी
0: कौन
1: जी
0: सा बड़ा शहर है?
1: ये पास में वाराणसी है
0: अच्छा
1: और बालाघाट है।
0: जी, बालाघाट के पास में। तो क्या करती हैं आप सुनीता जी?
1: मैं गृहिणी हूँ दीदी।
0: गृहिणी
1: हाँ,
0: हैं।
1: घर का काम, खेती में काम करती हूँ।
0: तो आप तो खेती में भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, यानी कि दिन भर आपका व्यस्त ही निकलता होगा।
1: हाँ दीदी। हाँ जी।
0: जी तो सुनीता जी, हमें ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: हाँ, देवर है दीदी, देवरानी है, मम्मी पापा हैं, मेरे पति हैं, दो बच्चे हैं, देवर
0: जी
1: के एक है, एक मेरा हूँ। हाँ
0: अच्छा, तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े हो चुके हैं अब?
1: नहीं, छोटे हैं दीदी, एक है अभी 9 साल का है, अभी ये मतलब 14 तारीख को हो जाएगा, 4 साल का बर्थडे है उनका।
0: जी, तो ये भी मुझे बताइए, अब तो बस कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाले होंगे।
1: शुरू होने वाले हैं दीदी, अभी चालू नहीं हुआ है।
0: ये बताइए कि उनकी कॉपी किताबें जब आ जाएंगी तो सब कवर वगैरह चढ़ाने का काम आप ही का रहता होगा, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं अभी, है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ मैं करती हूँ ना, फिर उनकी मम्मी को भी कभी मतलब ड्यूटी करते हैं पूरा
0: अच्छा।
1: दिन, तो हाँ उनको भी कभी कभी समय ही मिल जाता है तो वो भी कर देते हैं, लेकिन कवर चढ़ाना यानी इसका काम मैं ही कर देती हूँ।
0: जी, तो घर में बस अभी कुछ ही दिनों में ये सारा माहौल होने ही वाला है ना?
1: हाँ दीदी। हाँ
0: जी
1: अभी तो बस 2 महीने से मस्ती कर दी है, बच्चे अब स्कूल चालू होने वाले हैं।
0: हाँ बिल्कुल, यही तो बातें हैं ना, यही सब जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए यादें बन जाएंगी कि किस तरह से बच्चे
1: हाँ
0: गर्मी की छुट्टियों में मजे कर

0: थे। सुनीता जी, आपसे बातें करके हमें बहुत मजा आया। आप ये बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे कभी कभी फिल्म का गीत सुना था, मेरे घर आई एक नन्ही परी।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते
1: मैं अमीना जी मंसूरी बोल रही हूँ, पालराना का इंदौर से मैडम जी।
0: जी। ये बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक नारी दो रूप का सुनना चाहती हूँ। गाने के बोले दिल का सुनना सा ताराना ढूंढेगा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है।
0: जी तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियो, आज हमने कुछ सुंदर कविताएं सुनी, बच्चों के वो स्कूल की छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी की यादें ताजा की, और कुछ हुई मन की बातें। आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02-2400-2462, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02-2400-2466, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। अन्य नंबर है हिंदी में 02-2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02-2867-0288, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन में सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी, फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता, फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से

वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी दो लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी, और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नजर उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थामकर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और

रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है, और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि। बहुत जगह है मेरे कमरे में, यही हॉल में सिल लो जो सिलना है। मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो। वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहाँ रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा। मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने। कोई जरूरत नहीं है। आप अंदर रखवाती हो या नहीं? नहीं। आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से? तकरीबन 40 बसंत पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा, तुम पहले नाश्ता करो। नहीं। अच्छा ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो। पक्का ना? हाँ पक्का। अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदलकर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नजर हटाकर मेज पर सजी महिला की फोटो देखने लगी। फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूमकर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े

में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे। तुम उसे बता क्यों नहीं देती? क्या बताऊं? यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला। प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती। पर बताना तो पड़ेगा ना? पता नहीं। उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है, तुम परेशान मत हो पल्लू। प्रेम, ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है, देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूंगा। तुम जानते हो मेरी हालत, तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा। मुझे डर लगता है प्रेम। क्या डर लगता है? तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए। हाँ पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ। प्रेम मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे। अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा। तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती लेकिन अंजलि की सोच कर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

आधी रात होने को है, स्ट्रीट लाइट जल रही है, लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है, कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है, पूरे घर में अंधेरा है, लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के कोने में नीम दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू। लव यू टू। प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्म आ जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती है, और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना, बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली। क्यों, दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे, ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहाँ अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली, अरविंद झिझका, लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुराकर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें, मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी, अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया। अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए, और ये भी कि आज अरविंद क्या पहन कर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को

0: मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मेकअप। हाँ वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हूँ।
1: किसके साथ?
0: एक दोस्त के साथ जा रही हूँ।
1: अच्छा,
0: आपको कोई काम था क्या बुआ?
1: नहीं कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी।
0: हाँ हाँ बना लो मेरी भी।
1: बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली,
0: सुनो।
1: क्या?
0: मैं कर दूं मेकअप तुम्हारा?
1: नहीं बुआ मैं कर लूंगी।
0: अच्छा?
1: बुआ ने ज्यादा जोर न देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली,
0: गड़बड़ कर दी ना बुआ।
1: अच्छा ठीक है, आप ही कर दो।
0: आती हूँ चाय रखकर।
1: पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी,
0: किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना?
1: नहीं।
0: देखो अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना।
1: नहीं जा रही।
0: शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना।
1: बुआ मैं आ जाऊंगी।
0: पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी,
1: बाल तो बांध लो बेटा।
0: बुआ मुझे खुले बाल पसंद है।
1: अच्छा बाबा जैसी मर्जी, आराम से जाना।
0: आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ?
1: पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक और बुआ अंजलि का ये रूप देखकर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दो जवां दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं तेज धड़क रहे थे।

थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नजर अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा, और? अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी, और? हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना में हिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रहीं। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम भी ना, कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो। नहीं तो खूबसूरत हो तुम, वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात, तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो। बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे। ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो। कुछ भी, पल्लवी शर्मा कर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए।

जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए, मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे, पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी ही। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा झगड़ा हुआ। मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थी और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आई, लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया। फोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती, जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थी, लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूं कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मेरी मम्मा है। अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदाबांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था, सादा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में एक चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी, लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था, लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसके काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ती पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी

अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा। हाँ बताया था, अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी, लेकिन शिवानी अरविंद के इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेन्यू देखने लगी। क्या मंगाऊं मैं? कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भांप गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदा बांदी रुक गई थी, लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी, वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो घर ही चलना चाहिए।

अंजलि ने ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में शक आ चुका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियाँ और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों? पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ना उसे, ये बता अरविंद कैसा लगा? मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवानी इस बात को खत्म सा करती हुई बोली। बस ठीक? हाँ भाई ठीक बस। अरे यार तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना इसलिए ऐसा कह रही है, एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा। दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहाँ वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की घड़घड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को 2 दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय में पहुंच जाए। हल्के बादल थे लेकिन आज बारिश नहीं हुई थी। उमस ने मौसम में कसावट पैदा कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने को है। हवा का तेज झोंका पेड़ की एक डाल से सूखे पत्ते बालकनी में फेंक रहा था। हवा से अंजलि के बाल उड़ने लगे और उसे सामने से अरविंद नजर आने लगा। 2 दिन से परेशान अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अंजलि अरविंद से मिलने

नीचे आई तो दूर से ही धुंधलाती फिजा में भी उसे अरविंद के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो पहले की तरह खुश नहीं है, परेशान है। और ये सोचकर वो भी परेशान हो गई। अरविंद ने दूर से अंजलि को देखा और फिर पेड़ के पास रुक गया। अंजलि उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या पूछना है और कैसे। फिर उसने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ। परेशान हो क्या? हाँ, थोड़ा परेशान हूँ। बताओ मुझे, मैं दूर करूंगी तुम्हारी परेशानी, अंजलि ने आशा भरे शब्दों में कहा। नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी। अरे हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ समय में ठीक हो जाएगा सब। इसके बाद अंजलि बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ ना कह सकी। अरविंद जाने लगा तो एक बार अंजलि का जी चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन इसका भी क्या फायदा होता, यही सोचकर खुद को ही रोक लिया। अरविंद चला गया, अंजलि उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। फोन पर अरविंद बात नहीं कर पाने का कोई ना कोई बहाना बताता। अंजलि को भी एहसास होने लगा था कि या तो अरविंद को कोई बड़ी परेशानी है या फिर वो उससे दूर जा रहा है। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म हो गई थी। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती, लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था, ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज ही फोन पर सुन सकी थी। लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। एक दो बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां उसने बिजी होने की बात कह दी। अंजलि को अरविंद का ये व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। कहां तो वो प्यार भरे सपने सजा रही थी और कहां अरविंद उसकी खुली आंखों से ही दूर होता नजर आ रहा था।

उस रोज मोबाइल की रिंग हुई कि अंजलि ने अरविंद का कॉल समझकर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद की जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रुखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे? मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। फिर दो दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? शिवानी ने धमकाया। नहीं आई बस। अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे। क्या? मिलकर बताती हूँ। अरे बताना। नहीं, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा। पर क्या बात है, कुछ हिंट तो दे, अंजलि झुंझला उठी। अरविंद के बारे में है। अरविंद? हाँ, क्या हुआ अरविंद को? कुछ नहीं हुआ उस नीच को, शिवानी चिढ़कर बोली। अरे कैसी बात कर रही है अरविंद के बारे में? आकर बताती हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ भी। मैं आऊँ यूनिवर्सिटी? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ आज शाम को, कहकर शिवानी ने फोन रख दिया। फोन बंद होने के बाद से ही अंजलि उस बात को लेकर बेचैन थी जिसका जिक्र शिवानी करने वाली थी। अंजलि बालकनी पे खड़े अंदाजा लगा रही थी कि उसकी नजर पेड़ के पास खड़े अरविंद पर पड़ी और अंजलि का मोबाइल बजने लगा। देखा तो अरविंद का ही फोन था। घने बादलों से अंधेरा चारों ओर फैल गया था। हवाएं तेज रफ्तार में चल रही थी। फूलदार लॉन्ग स्कर्ट और सफेद शर्ट पहने अंजलि तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई दूसरे पार पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे, अरविंद बोल पड़ा, तुम मेरा इंतजार मत किया करो। अरे तुम फोन भी? लेकिन अंजलि कुछ और कहती उसके पहले ही अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये क्या कह रहे हो और क्यों? जोर से बादल गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गईं, क्योंकि यही सच है। अंजलि अरविंद को आस भरी नजरों से देखने लगी। तभी अरविंद ने कहा, मैं शिवानी से प्यार करता हूँ। उसके इस वाक्य ने अंजलि की आस को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद अरविंद ने क्या कहा उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने कठोर नजर से अरविंद की ओर देखा और फिर अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद जाने लगा लेकिन अंजलि ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो अपने दरवाजे के सामने जैसे बेसुध खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो घर के अंदर चली गई। शाम होते होते बारिश हल्की हो गई। पल्लवी बुआ अपनी स्कूटी गेट के अंदर ही कर रही थी कि शिवानी छाता लिए ऑटो से उतरती दिखी। दोनों साथ ही ऊपर जाने लगे। अचानक फिर से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी की बौछारें बालकनी तक आने लगी। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा से उड़ते उड़ते एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं जिस पर लिखा है, बुआ मुझे मालूम है मम्मा अब नहीं आएंगी। तुम्हें भले लगता हो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं है। हाँ मैं उन्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं करती। इतना जरूर करती हूँ कि जो साड़ी तैयार कर रही थी वो मम्मा के लिए नहीं तुम्हारे लिए है। अलमारी में रखी है साड़ी, तुम्हें दी नहीं क्योंकि समझ नहीं आया कि कैसे दूं। बुआ तुम प्यारी लगोगी उस साड़ी में, और वो जिन्हें तुम चाहती हो वो भी तुम्हें साड़ी में देखकर खुश होंगे। मैंने एक रोज तुम्हें उनके साथ देखा था और मुझे यकीन हो गया था कि तुम प्यार में हो। कितना अच्छा है ना? पता है मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। इस बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही सच है। तुम भी मेरी माँ के लिए दिल में कड़वाहट मत रखो। मुझे दुख होता है जब तुम उनको कुछ कहती हो। अंजलि। डायरी का पन्ना हवा से एक और बार पलटता है और आखिरी पन्ने पर आकर रुक जाता है जिसमें लिखा है, मम्मा मैंने तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया, तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन वो इंतजार बहुत साल पहले खत्म हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि तुम अब शायद ही कभी आओ, लेकिन लगता था कि कभी तो तुम मुझे फोन कर ही लोगी, पर वो उम्मीद भी खत्म हो गई। एक आस जिसकी वजह से मैं यहाँ थी अब वो भी नहीं रही। मेरी वजह से बुआ अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं नहीं चाहती कि हमेशा ऐसा रहे, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप आना तो ये नहीं सोचना कि मैंने आपका इंतजार नहीं किया, पर अब और नहीं। अंजलि। तेज हवा से डायरी के सारे पन्ने उलट पलट होते हैं और डायरी बंद हो जाती है।

0: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आप सुन रहे थे अरगवान रब्बही की लिखी कहानी अंजलि, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त है CFN विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का।

0: दीवाने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा, खड़गवा, रामेश्वरपुर, जाम दोहर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा

0: के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये सकालो, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, किशुनपुर, जमीरा, डांडपारा, शिवनाथपुर, घासीडी, बोड़ाझरिया, ढोढ़ा गांव, दांतीढाब, गढ़गांव, बरवाली, कंडराजा, बरिमा, पेंट, घोड़ा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चराईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टान पारा, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 36 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, औरानारा, करोंधा, जगड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा और करतला में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये चचिया, बैगामार, तौलीपाली, गेराव, बताती, कोरकोमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के एतमानगर, पसान और जडगा में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये मड़ई, कोदवारी, भूडूपानी, कठमोरगा, लालपुर, परला, चोटिया, कापानवापारा, खड़पड़ी, बनिया, झुनकीडी, बांधापारा, कुकरी कादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 61 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राट रोड, झिंगोल, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी, तालदादर, हरदी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ अभियान सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम।

कार्यक्रम के सुनैया जम्मो संगी संगवारी मल्ला सरवन भैया के जय जोहार हो, राम राम। संगी हो भाई, देखा अभी जेठ के महीना हा चलत है ना, अब कुछ दिन में आषाढ़ घलाव लग जाही। तो ए बखत में हमन ला संगी हो, जतका भी हमन जेन भी फलदार पौधा लगाना चाहत हन तेन ला हमन ओकर लगा के ओकर नर्सरी कह जाए तैयार कर सकत हन। काबर के अब आषाढ़ के जब महीना हा लग जाही तो बढ़िया पानी गिरही और ओमा अंकुरण हा बढ़िया होते। तो जिसे हमन कौन कौन सा फलदार पौधा लगा सकत हन, तो जैसे आमा है, बीही है, पपीता है, नींबू वर्गी पौधा है, चीताफल, जामुन, कटहल, करौंदा,

0: ए सब पौधा के हमन नर्सरी ला तैयार कर सकथन। आउ संगी हो, ए सब के हमन बीजा ला बो के नर्सरी तैयार अभी कर सकथन, काबर के अभी के मौसम हा बीजा ला अंकुरण करे के बढ़िया रहिथे। अब ए मौसम में नमी बढ़िया बने रहिथे तो इसना में अंकुरण अच्छा होते, वो पौधा हा जल्दी तैयार होते। तो संगी हो, हमन एला बढ़िया अपन झिल्ली मन में लगा के, है ना भाई, कैरी बैग में कहे जाए ओमा लगा के हमन एल तैयार कर सकथन, पॉली बैग मन में लगा के। और तहाँ जब बढ़िया पानी यहाँ गिरही तो वह भग भग ले पेड़ बाढ़ जाही, और पेड़ बाढ़ी तेखर बाद हमन ओला अपन खेत में लगा सकथन। तो इसना में जिन हमन के पौधा है तेन में नुकसान नहीं हुए, और वह बढ़िया तैयार घला हो जाते, है ना भाई। और नर्सरी तैयार करे बर हमन ला सबले अच्छा जिन पानी के निकासी बढ़िया व्यवस्था रहे, जल निकासी की अच्छा व्यवस्था रहे, तो इसना जगह में हमन ला इला लगाना चाहिए। और खबर माटी ला हमन ला कौन ढंग ले सही तैयार करना चाहिए, तो जैसे गोबर के बढ़िया सड़े हुए खातुल डाल दीन, और बीजा ला उपचारित करके हमन ला नर्सरी तैयार करना चाहिए, ताकि वहाँ कोनो प्रकार के रोग राई झन लगे, और बढ़िया बढ़िया बीजा रही, उपचारित बीज रही, तो हम पौधा हा जल्दी निकल ही, है ना भाई। ओला लगाए के बाद हमन ला हल्का सिंचाई करना चाहिए, ताकि ज़्यादा ओमा जल भराव हा मात्र है, जल भराव के कारण संगी हो बीजा हा सड़ जाते, और पौधा हा नहीं निकल पाए। अब हमन ला तेज धूप ले और पशु मन ले ओला वो पौधा मन ला बचा के रखना चाहिए, ताकि पौधा मन जल्दी से बाढ़ सके, और बाढ़े के बाद ही हमन ला ओमा लगाना चाहिए। और संगी हो देखो भाई, आज ये शुक्रवार, अब आज हमन आप मन ला फोन इन कार्यक्रम ला सुनवाथन। तो आज के विषय जैविक खेती की आवश्यकता और संभावनाएं, विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमेंद्र कुमार केसरी, जिनमन वरिष्ठ वैज्ञानिक मृदा विज्ञान कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के, और संचालन करते हमार नंदू भैया है। तो आवाज सुना था ना मैंने फोन इन कार्यक्रम ला।
1: फोन इन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत करथन संगवारी हो, झोकाओ नंदू भैया के जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, अभी के बेरा में हमन आप मन बर आनी बानी के जानकारी लेके आथन, और अभी के बेरा जौन खरीफ फसल बुवाई के बेरा आते, तो ऐसे में हमन आज के विषय रखे हन जैविक खेती के आवश्यकता और संभावना के बारे में। और पहुना ला हमन बुलाए हमन डॉक्टर प्रमेंद्र कुमार केसरी जी, जौन मन कृषि महाविद्यालय बिलासपुर में वरिष्ठ वैज्ञानिक हो। आप मन से गोठ बात करथन, जय जोहार, राम राम सर।
2: राम राम नंदू भैया, और सर जी, किसान भाइयों को मेरा प्रणाम।
1: सर जी, आज के हमार जौन विषय है उकर अनुसार हमन गोठ बात ला शुरू करबो, कि जैविक खेती के आवश्यकता और संभावना एला आप मन बताओ किसान भाई मन ला का काबर लगते, जेकर ले मन फसल में बढ़िया उपयोग करे।
2: जी नंदू भैया, सबसे पहला तो ये है कि आज जैविक खेती की बातें इतनी क्यों हो रही है, कहीं ना कहीं पर मृदा स्वास्थ्य और हम आपका स्वास्थ्य, ये सब चीजें जुड़ा है
1: जी।
2: मिट्टी स्वस्थ रहेगा है तो हम सब स्वस्थ हैं, क्योंकि हम सबको जो पोषण मिलता है वो उस मिट्टी से ही आता है
1: जी।
2: मिट्टी से पौधा लेता है, पौधे को हम और पशुधन ये सब हम लोग ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा भी पोषक तत्व की मात्रा की पूर्ति होती है
1: जी।
2: तो मिट्टी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, तो मृदा स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर इसके साथ पर्यावरण संरक्षण की बात है, ज्यादा रासायनिक उपयोग से पर्यावरण में कहीं ना कहीं असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है। कई सारे लाभकारी जीवाणु हैं जो मिट्टी में मर रहे हैं, केचुओं की मात्रा कम हो जाती है इनके रासायनिक कीटनाशकों और इनकी मात्रा से, रासायनिक उर्वरकों के ज्यादा उपयोग से। जल भी दूषित होता है हमारा इनकी मात्रा ज्यादा होने से, तो कहीं ना कहीं इनकी आवश्यकताओं के पीछे स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य, जल संरक्षण, इन सब को ध्यान रखते हुए यह अति आवश्यक हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं भी जैविक खेती की ओर अग्रसर हों
1: जी।
2: ज्यादा से ज्यादा एरिया पे जैविक खेती की जाए।
1: बहुत बढ़िया जानकारी बताया हो सर जी। आओ जानबो हमन कौन कौन से जैविक खाद के उपयोग किसान भाई मन कर सकते, इहुल बताओ सर।
2: नंदू भैया, वैसे तो हमारे पुरखे मन भी जैविक खेती ही करते थे, जैसे आपका गोबर खाद है
1: जी,
2: कंपोस्ट है, इनको सड़ा के उपयोग करते थे। और अब मैं एक और किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि वो अपने जैविक खाद के साथ साथ जैव उर्वरकों का भी समावेश करें अपने खेत में
1: जी।
2: जैसे अभी धान का समय आ रहा है हमारा खरीफ में, अभी हमारे किसान भाई धान लगाएंगे, तो इसमें धान में आप नीलहरित काय का उपयोग करिए, है ना, ये नाइट्रोजन के लिए है। नाइट्रोजन के लिए एक और सूक्ष्म जीव उर्वरक जिसको बोलते हैं जो स्पाइरिलम, इनका उपयोग

0: करें। फास्फोरस के लिए PSB है, फास्फोरस सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया, हिंदी में स्फूल घोलक जीवाणु, ऐसे ही है पोटेशियम घोलक जीवाणु भी। अगर हम इनका उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं पर रासायनिक उर्वरकों पर जो हमारा निर्भरता है उनमें कमी आएगी। तो
1: जी
0: हम कोशिश करें कि कम से कम रासायनिक खाद खेत में डालें और उसकी जो पूर्ति है वो जैविक और जैव उर्वरकों के माध्यम से करें।
1: जी
0: तो ये नाडेप कंपोस्ट किसान भाई बना सकते हैं, जिसमें कम से कम मतलब गोबर का उपयोग होता है और जो भी कचरा

0: ने लिया था उसको फिर से सड़ा के हम अपने खेत में डाल देंगे।
1: जी
0: तो ऐसा करके हम जैविक खाद का उत्पादन कर सकते हैं, उनको उपयोग कर सकते हैं।
1: बढ़िया जानकारी बताया सर जी। आओ जानबो कि जैव उर्वरक जो हवा है ओला हमन उत्पादित कर सकत हन कि नहीं, और कौन प्रकार के
0: जी भैया
1: विधि
0: जी नंदू भैया, इसमें जो जैव उर्वरक में जो नील हरित काई है इसको किसान भाई स्वयं भी तैयार कर सकते हैं अपने घरों पे।
1: जी
0: इसके लिए एक टांका बनाना पड़ता है 9 इंच गहरा और 1 से 1.5 मीटर चौड़ा और करीबन 2 मीटर जैसा हमारी आवश्यकता है उसके हिसाब से लंबाई कर लें। इसमें हमारा मिट्टी लगता है, मिट्टी खेत की काली मिट्टी लगती है, प्रति स्क्वायर मीटर 10 किलोग्राम।
1: अच्छा।
0: 1 स्क्वायर मीटर में 10 किलो मिट्टी लगती है और इसमें 200 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट लगेगा प्रति स्क्वायर मीटर और इसमें 100 से 200 ग्राम मदर कल्चर। ये कृषि महाविद्यालय से आपको मिल जाएगा या कृषि विज्ञान केंद्र से, और कृषि विभाग के हमारे अधिकारी गण भी अभी इसको बहुत उत्पादित किए हैं, उनसे भी ले सकते हैं अपन। तो किसान भाई इसको स्वयं भी तैयार कर ले तो लगभग 1 हफ्ते में ऊपर में एक काई का सतह आ जाती है।
1: जी बढ़िया जानकारी बताते रहो सर जी, आओ जारी रखते हैं।
0: हाँ तो उसमें जो ऊपर में एक सतह आ जाती है काई की, ये इसको हम निकाल के सुखा लेंगे, ये मदर कल्चर बनेगा।
1: जी
0: और इसमें इसमें सावधानी है कि पानी को हमेशा 6 इंच 4 से 6 इंच इसमें बनाए रखना है।
1: अच्छा।
0: और ऐसा करके 2 बार इसमें हम ग्रोथ लेंगे, जो ऊपर में वो मदर कल्चर बनेगा और तीसरी बार जो ग्रोथ आएगी उसको मिट्टी में सूखने देंगे।
1: जी।
0: तो वो जो नीचे में जो सूख जाएगा वही वही हमारा नील हरित काई का कल्चर कहलाता है। तो किसान भाई इसको तैयार कर सकते हैं। अब रही बात जैव उर्वरक की, जैसे मैंने अभी थोड़े पहले बताया कि एजोस्पाइलम है, पीएसबी है, केएमबी है, इसको तो हमको एक हमारा कृषि महाविद्यालय द्वारा संचालित है।
1: अच्छा।
0: चोर भट्टी में एक प्रयोगशाला है, राज्य जैव नियंत्रक प्रयोगशाला, यहाँ पे इनका निर्माण किया जा रहा है जो कि किसान भाइयों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसको लेके किसान भाई अपने खेत में उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करें और आपकी मिट्टी भी सदैव उपजाऊ बनी रहेगी इनसे।
1: तो जैविक खेती के का संभावना हवा इहुला बताहु सर जी, जेकर ले किसान भाई मन अपन खेती में उपयोग करे और बढ़िया से ओकर लाभ ला पावे।
0: भैया जैविक खेती की तो बहुत सारी संभावनाएं हैं और तारे आज के समय पे बाजार में बहुत मांग है इनका, क्योंकि अब हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत ज्यादा सजग है।
1: जी
0: तो हर कोई ये चाहता है कि मेरे को रसायन मुक्त भोजन मिले, रसायन मुक्त फल मिले, बाजार में बहुत ज्यादा मांग है। दूसरा आर्थिक लाभ, जो जैविक तरीके से उत्पादित हमारी भोज्य सामग्री है उनका कीमत बाजार में ज्यादा मिलता है और निर्यात में भी उसको बहुत सुगमता से निर्यात हो जाता है।
1: अच्छा।
0: तो कई सारे हमारे जो पड़ोसी है, देश है, राज्य है, वो उनको बहुत ज्यादा इनको इच्छा होती है कि मतलब हमको जैविक उत्पाद मिले।
1: जी।
0: और आज के समय पे हमारी सरकार भी बहुत समर्थन दे रही है, बहुत बढ़ावा दे रही है जैविक उत्पादन की ओर। तो और इससे एक फायदा ये भी होगा कि आपकी जो भूमि है वो सदैव उपजाऊ बनी रहेगी।
1: जी।
0: तो सतत क्रिया में भी एक इसका एक बहुत अच्छा सहयोग रहता है।
1: हेलो
2: हेलो,
1: जय जोहार, राम राम।
2: भैया मोर माया भरे राम राम। मैं नवागढ़ कटाई जिले में तरले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था भैया।
1: भैया आप मन के आवाज ला हमन चिंतन लेवा। आज के प्रश्न जो है जैविक खेती के आवश्यकता और संभावना के बारे में हवे, डॉक्टर सामन बैठे
2: हैं। तो डॉक्टर भैया राम राम।
0: राम राम भैया, राम राम।
2: हाँ भैया, जैसे हम अभी अभी माटी के जांच करवाए हवन।
0: हाँ भैया।
2: अब ये जांच के दौरान भैया पोषक तत्व के कमी पाए जावत है कुछ कुछ ऐसे करके, तो ये समस्या के निदान बर हमन जैसे जैविक खेती करना चाहत हवन।
0: जी भैया।
2: हाँ भैया, तो एक बारे में पूछना चाहत हूँ भैया,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भैया,
2: हम का लाभ मिली और हमारे जन माटी बिगड़े हुए उकर स्वास्थ्य में का प्रभाव पड़ी।
0: जी जी जी। तो भैया आप सबसे पहले तो ये है कि आप बधाई के पात्र रहे क्योंकि आपने मिट्टी का जांच करवाया और सॉइल हेल्थ कार्ड आपने बनवाया है ना।
2: हाँ,
0: तो क्योंकि हम लोग अपना जांच तो करा लेते हैं, मिट्टी का नहीं कराते थे, तो आपने कराया और उसके वहाँ के अपने मिट्टी की जानकारी आपको मिल चुकी है। आप ये कह रहे हैं कि आपके मिट्टी का जो परिणाम आया है वो कुछ में निम्न है, कुछ मध्यम, कुछ कुछ है, शायद ऐसे ही कहना चाह रहे हैं आप, है ना।
2: हाँ,
0: तो भैया जहाँ पे एक तो इसका आपका जो कार्ड है उसमें सब कुछ लिख के आया होगा कि जहाँ निम्न है वहाँ पे कितना डालना है, जहाँ पे मध्यम है वहाँ पे अनुशंसित मात्रा डालना है, जहाँ उच्च है वहाँ पे रासायनिक उर्वरक को घटा के डालना है ना। तो ये आपके कार्ड में जिक्र है। तो जहाँ पे निम्न है वहाँ 50% बढ़ा के देना है, 25 से

0: 50% तक, वो निर्भर करता है कि आपका जो परिणाम कहाँ पर है ना। ठीक है,
1: हाँ
0: तो
1: भैया,
0: ये दूसरा। अब अगला प्रश्न था आपका कि इसमें जैविक खाद का उपयोग करें, है ना, तो जैविक खाद का आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिए, आपकी मिट्टी सदैव उपजाऊ बनी रहेगी, मिट्टी का जो आपका स्थूल घनत्व है, कण घनत्व है, ये सब में लाभ मिलेगा, मिट्टी आपकी पोली बनेगी, इसके अंदर सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ जाएगा, और जो खनिजीकरण की प्रक्रिया है वो बहुत बढ़िया चलेगा, तो जो भी जाम तत्व है जैसे फॉस्फोरस जाम हो जाता है, ये सब घोल के पौधे को उपलब्ध होना चालू हो जाएगा, और जैविक खाद में खुद भी आपका नत्रजन, फास्फोरस, पोटास और कई सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, तो इनसे भी आपके खेत को बहुत लाभ होगा, आपकी फसल को लाभ होगा, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, उत्पाद को आप ज़्यादा दिन तक रख सकते हो, कीड़ा कीड़ा बीमारी की मात्रा कम हो जाएगी, तो आप बिल्कुल भी जितना संभव हो सके उतना जैविक खाद का उपयोग करिए, जैविक खाद के साथ साथ जैव उर्वरकों का भी उपयोग करिए फसल के अनुसार, तो अभी तो
1: हाँ
0: धान का
1: भैया,
0: समय आ रहा है, तो धान में आप नील हरित काई भी उपयोग करिए गोबर खाद के साथ, कंपोस्ट के साथ, साथ में एजोस्पायरिलम भी उपयोग करिए, पीएसबी भी उपयोग करिए, केएमबी भी उपयोग करिए, ये सारी चीज़ों का समावेश अपने खेत में करिए, आपका रासायनिक उर्वरक का बचत तो होगा होगा, और साथ में आपकी मिट्टी सदैव उपजाऊ बनी रहेगी।
1: हाँ
0: जी भैया,
2: ठीक भैया,
1: ठीक, हाँ भैया, हाँ, डॉक्टर भैया बहुत सुंदर जानकारी दी, शेखर बार बहुत बहुत धन्यवाद, और
0: धन्यवाद
1: आप ला
0: भैया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद जिन हमने डॉक्टर भैया से जोड़ के हमला बात करा भैया, राम राम
0: जी
1: जय
0: जी
1: जो।
2: हाँ, तब हमन गोट बात ला जारी रखबो सर। संगवारी हो, आज के विषय हमार जैविक खेती के आवश्यकता और संभावना के बारे में हवे। हमार बीच में हवे कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमेंद्र कुमार केसरी जी मन। गोट बात हमन आओ आगू बढ़ात हम संगवारी हो कि जैविक खेती जौन हवे तो जैविक कृषि के का सिद्धांत होते, इहुला बताहु सर जी।
0: जी, भैया, तो इसमें तो भैया सबसे पहला जो सिद्धांत हम लेके चलते हैं वो होता है स्वास्थ्य, मनुष्य का स्वास्थ्य, पशु का, पेड़ पौधों का स्वास्थ्य,
2: जी
0: हमारे खेत की मिट्टी का, है ना। अगर ये स्वस्थ रहेंगे, मिट्टी स्वस्थ है, तो हम आप भी, मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे सभी स्वस्थ हैं। तो
2: जी
0: पहला सिद्धांत हमारा होता है स्वास्थ्य। दूसरा सिद्धांत हम लेके चले पारिस्थितिक,
2: जी
0: तो इसमें हम जो भी तंत्र एक काम करता है, इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं, वो तंत्र को हमको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको ऐसे खेती करना है कि सब बने रहे,
2: जी
0: किसी के साथ भी कोई नुकसान ना हो। फिर इसके बाद हमारा जो अगला होता है वो निष्पक्षता का सिद्धांत, हमको अपने स्वार्थ के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे वहाँ पर नुकसान हो, पर्यावरण को
2: जी
0: नुकसान हो, जीवन को नुकसान हो, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमको काम करना है। अगला एक और होता है देखभाल का सिद्धांत, इसमें हमारी जो भविष्य की कल्याणकारी योजनाएं हैं, पीढ़ी है, अगला पीढ़ी है,
2: जी
0: पर्यावरण है, ये सब चीज़ों को ध्यान में देते हुए और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम किया जाता है कि जिससे हमारी जो सारी चीज़ सब चीज़ों का देख रेख हो और भावी पीढ़ियों को उसका लाभ मिल सके, जो
2: जी
0: चीज़ हमको मिला वो उनको भी मिले, यही एक कुछ एक सिद्धांत है जिसके आधार पे जैविक खेती में हम कृषि करते हैं।
2: जी बढ़िया बढ़िया जानकारी बताया सर। आओ हमन आगू जानबो कि जैविक खातू जौन है, जैविक खाद हवे, तो वो हर कतेक कन जौन रासायनिक खाद की बचत करते और किसान मन ला बढ़िया उत्पादन देते, इहुला बताओ
0: जी
2: सर।
0: भैया, अगर हम समन्वित पोषक तत्व तो प्रबंधन कर रहे हैं उस हिसाब से अगर हम इनका उपयोग करते हैं तो उसमें आप मान के चलिए कि लगभग हम 40% तक रासायनिक उर्वरकों का बचत कर सकते हैं
2: जी
0: जैविक खाद और जैव उर्वरकों के माध्यम से। और अगर हम शुद्ध रूप से जैविक खेती कर रहे हैं तब तो हमको इन्हीं को डालना पड़ेगा,
2: जी
0: तो उस समय तो हमको रासायनिक उर्वरक हमको डालना नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद डालिए और जैव उर्वरकों के माध्यम से जैव उर्वरकों का भी उपयोग करिए, तो आपकी मिट्टी उत्पादन हो सकता है कि प्रथम वर्ष थोड़ा सा कुछ कम आएगा, पर आगामी वर्षों में आपको पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता युक्त फसल मिलेगा,
2: जी
0: उत्पादन मिलेगा, और साथ में आपकी मिट्टी भी सदैव उपजाऊ बनी रहेगी। आज संतुलन के अगर संतुलित उर्वरक की बात करें, उसमें समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं, तो उसमें हम 40% तक का रासायनिक उर्वरकों की बचत कर सकते हैं
2: जी
0: जैविक और जैव उर्वरक के माध्यम से।
2: बढ़िया बढ़िया जानकारी बताते सर मन। आओ हमन जानबो सर, धान के फसल लेवत है संगवारी मान, तो जौन ये नील हरित काई हवाए के भूरा खाद हवाए, एकर उपयोग काबर जरूरी होते, इहुल बताओ सर।
0: जी जी भैया, नंदू भैया, नील हरित काई जो है ये धान के फसल में लगभग आपका 20 से 25%

0: नत्रजन की बचत करता है ना। और इसका देने का जो समय होता है रोपाई और ब्यासी के 7 दिन बाद, 7 से 10 दिन के बीच में पानी को खेत में 4 इंची रोक के रखना है, लगभग 4 इंची, उस समय 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इनका छिड़काव करना है और ये पानी को रोके रखना है आप।
1: जी
0: तो ये लगभग आपका 1 एकड़ में आधा से पौन बोरी यूरिया की बचत कर देता है।
1: जी
0: अब हम चलते हैं भूरा खाद, आपका अगला प्रश्न था भूरा खाद।
1: जी
0: तो भैया जो पहले हम हरी खाद तो जानते हैं सभी, ये हरी खाद को ढैंचा को उगाते हैं, ढैंचा सनई मसूर मूंग इनको उगाते हैं और मिट्टी में पलट देते हैं फूल आने के पहले, लगभग 45 दिन या उसके पहले पलटा देते हैं, ये सड़ जाता है और खाद बन जाता है। इसमें हम धान की रोपाई लगा कर देते हैं या तो सीधे बोए कर देते हैं, ये हरी खाद होता है। ये उन किसान के लिए हरी खाद जिनके पास पानी की सुविधा है अप्रैल मई में,
1: अच्छा।
0: वो लगा सकते हैं, पर जिन किसान के जो किसान वर्षा आधारित खेती कर रहे हैं वो कैसे करें?
1: अच्छा।
0: तो उनके लिए एक विधि खोजी गई है भूरा खाद।
1: जी।
0: इसमें भी वही बीज है, जो बीज है, जो बीज के चुनाव है आपका ढैंचा मूंग बरबट्टी मसूर इनको लेते हैं और धान के बीज के साथ मिला देते हैं। तो मान लो 1 एकड़ में 40 किलो धान का बीज ले रहे हैं, तो इसमें 15-16 किलो आपका ढैंचा का बीज ले लिया, मूंग का बीज ले लिए, इसको मिला के छिड़काव विधि से छिड़काव कर देंगे।
1: जी।
0: तो लगभग ये अंकुरण होगा, अंकुरण होने के बाद महीना भर में धान तो छोटे रहेंगे पर जो ये जो आपका ढैंचा है या जो भी हरी खाद वाली फसल हमने लिया है इनकी लंबाई काफी अच्छी विकास हो जाता है, वो हो जाता है लगभग 1 मीटर के आसपास।
1: जी।
0: थोड़ा ऊपर भी हो जाता है, थोड़ा नीचे भी रह सकता है।
1: अच्छा।
0: तो इनको इस स्थिति में इसके ऊपर में निंदा नाशक, चौड़ी पत्ती वाला निंदा नाशक जैसे 240 इनका छिड़काव कर देते हैं। इनके छिड़काव से क्या होगा, धान को तो कोई नुकसान नहीं होगा, सकरी पत्ती है, पर जो चौड़ी पत्ती वाला जो ढैंचा है ये मरना चालू होगा पौधा और ये भूरे रंग का हो जाता है, इसीलिए इसको भूरा खाद बोलते हैं। सबसे पहले पत्तियां गिरेंगे 3-4 दिन में, फिर उसका जो टहनी है वो सूख के गिर जाएगा और खेत में मिल जाता है, साथ में जो इसका जड़ भी सड़ेगा, पौधा मर गया तब सड़ेगा।
1: जी।
0: तो जड़ क्या, जड़ भी सड़ेगा तो अंदर में पूरा कोलापन आ जाएगा, मिट्टी भुरभुरी होगी, साथ में हवा की मात्रा बढ़ जाएगा, जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। और भैया नंदु भैया, अगर हम भूरा खाद का उपयोग करते हैं ना तो इससे भी लगभग हम 20-25% रासायनिक उर्वरकों की बचत कर सकते हैं। इसमें आपका नत्रजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इनका उपयोग कर इनकी भरपाई होती है। साथ में भूरा खाद से जो पोटास जो फास्फोरस जो हमारे मिट्टी में जाम हो जाता है वो भी घुल के उपलब्ध होता है।
1: जी।
0: दूसरी बात एक और है कि इनके जड़ों में ग्रंथि होती है जिसके अंदर में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो कि वातावरण से नत्रजन लेके मिट्टी में मिक्स करता है, उपलब्ध कराता है।
1: जी। बढ़िया जानकारी बताया हो सर जी, हमर किसान भाई मन और हमू मल्ला बढ़िया यार लाभदायक लगी से एकर ले आओ हमर जौन खेती किसानी के फसल होकर उत्पादन क्षमता हर बढ़ी। सर संगवारी हो आज के हमर विषय रही जैविक खेती के आवश्यकता और संभावना के बारे में। आप मन रहो कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमेंद्र कुमार केसरी जी, अतिक बढ़िया लाभप्रद जानकारी बताए हो और अपन अमूल्य समय दिया एकर बर धन्यवाद। जय जोहर सर।
0: जय जोहर नंदू भैया, आकाशवाणी परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी किसान भाइयों को धन्यवाद।
1: आज के हमारे कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रही श्रीमान पवन कुमार थवाई जी मन की, एकरे संग नंदू भैया के जय जोहर, राम राम।
2: संगी हो अभी आप मन फोन इन कार्यक्रम में सुने हो, विषय रही से जैविक खेती की आवश्यकता और संभावना। विशेषज्ञ रही है डॉक्टर प्रमेंद्र कुमार केसरी, जिनमन वरिष्ठ वैज्ञानिक मृदा विज्ञान कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के और संचालन करत रही से हमर नंदू भैया। और संगी हो देखो भाई, हमन का करथन आजकल खेत में जतका भी हमन के कहे जाए कि जिन फसल अवशेष है तेन मन ला आगी लगा देथन है ना, अब ओखर से का नुकसान होते तेखर बारे में हमन नहीं सोचन, कई थन बढ़िया खेत है, साफ होते, बढ़िया पैरा वेरा है, जिन फसल अवशेष है तेन जल के राख होते, फिर ओखर संगे संग हमन के जतका भी जिन मित्र कीट है तेन घलाव मन उमा जल के मर जाते, और जिन भुइया के ऊपरे हिस्सा है यह हमन के बढ़िया काक रही थे उपजाऊ बना रही थे, तेन उपजाऊ घलाव है हमार माटी के खत्म हो जाते, तो हमन ला अपन खेत मन में आगी नहीं लगाना है, और हो सके तो जिन फसल अवशेष है तेन ला बढ़िया सड़ो के हमन ला खेत में मिला देना चाहिए ताकि वह खातु के रूप में फिर हमार फसल ला मिल जाते, तो ऐसा में हमार फसल है बढ़िया तरीका ले आओ अच्छा होते और हमन उमा लाभ घलाव पाथन, और वर से हमन के खेत के जिन खेत घलाव हाँ बाँचते है ना, मित्र कीट मन बाँचते, उमा जतका

घलौ ह बाढ़थे। तय ढंग ले हमन ला अपन खेत घलौ ल बचाना हे और बेरा बखत म हमन ला अपन माटी के परीक्षण घलौ करवाना चाही ताकि ओमा का का बीमारी हवय नहीं हे, का वजह से हमर स्वस्थ शरीर ला बीमारी पता चलथे तइसने हमर माटी के घलौ बीमारी ह पता चलथे, ओमा का हे का नहीं हे, तो माटी परीक्षण हमन ला करवात रहना चाही। अब संगी हो, अब आवाज सुन लेथन एक ठी गीत ला, करू हरे करेला, और जिन गीत लगावत हे साधरा मरावी अउ संगवारी मन।

करू हरे करेला बैरी तरे में मीठा थे। ये गीत भी आप मन सुने हो, ये गीत लगात रही है साध राम बरावी और संगवारी मन। और संगी हो देखो भाई, गोट बात करत करत गीत संगीत सुना सुना बेरा हो गए है आज के मौसम के। तो आज के मौसम में अधिकतम तापमान रही से 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान रही से 31 डिग्री। और भाई देखो तो झटकिन पानी गिर जाते, फिर घाम हो जाते, फिर हवा गर्रा करे लगते है ना भाई। तो हाँ पानी फिर गिर जाते तैसा ना होते तो मौसम है यानी कि अपन बढ़िया बदलत जाते। और संगे संग संगी हो आज के जिन मंडी के हमन आप मतलब बता देते हैं, तो आज धान के कीमत रही से 2000 रुपया, निमाऊ की कीमत रही से 7000 रुपया ले 7500, मखना की कीमत है 1000 ले 1100-1200 रुपया, कुंदरू है 1200 ले 1400 रुपया, अनार है रही से 11000 ले 13000 रुपया, और बरबट्टी के कीमत रही से 1400 ले 1600 रुपया, पत्ता गोभी है रही से 1000 ले 1200 रुपया, करू करेला है रही से 2800 ले 3000, लौकी की कीमत रही से 700 ले 900 रुपया, और रमकेरिया है रही से 2800 ले 3000, कटहर की कीमत है 7000 ले 700 ले 900 रुपया रही से, और आज के मुरई की कीमत रही से 2000 ले 2200 रुपया, मुनगा है जिन अब्बड़ मीठा थे भाई तेन रही से 5000 ले 5200 रुपया, और गोंदली की कीमत रही से 1300 ले 1500 रुपया, आलू है रही से 1300 ले 1500, और पताल की कीमत रही से 3500 ले 3700 रुपया, आमा है 2800 ले 3000 रुपया कीमत है रही से। तो ये तो हो गया संगी हो आज के हमन के मौसम मंडी के और मौसम की जानकारी है। और संगी हो भाई देखो अब गोट बात करत रहे फिर बेरा हो गए जाए के, तो अपन अंतस्मा दया मैला राख के आज्ञा देव अपन सरवन भैया घर जाए के। जय जोहार राम राम।

जैविक खेती की आवश्यकताएं एवं संभावनाएं विषय पर श्रोताओं के फोन पर पूछे गए सवालों के जवाब अभी हमने सुने। कार्यक्रम फोन इन करे विशेषज्ञ रहे डॉक्टर प्रमेंद्र कुमार केसरी, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर, और ये कार्यक्रम रहा ग्राम सभा का। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:35 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा जगत।

युवा जगत सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकारें मातृका का नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का आज के अंक में। साथियों, हम जब यंग होते हैं तो लाइफ एकदम रॉकेट की तरह लगती है। हर तरफ एडवेंचर, नए सपने और कुछ तूफानी करने का जोश। लेकिन इसी जोश में कभी कभी हम रास्ते भटक जाते हैं। आजकल कूल दिखने के चक्कर में या फिर दोस्तों के दबाव में आकर या फिर किसी और कारण से कुछ लोग नशे की तरफ कदम बढ़ा लेते हैं। उन्हें लगता है कि एक कश या एक घूंट से क्या ही फर्क पड़ता है। पर सच तो ये है कि नशा सिर्फ शरीर को ही नहीं खोखला करता, बल्कि सुंदर मन और पूरी सामाजिक दुनिया को तबाह कर देता है। आजकल हमारे यंगस्टर्स में एक वर्ड बहुत पॉपुलर है, कौन सा? फोमो, FOMO, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। दोस्तों के ग्रुप में बैठे हैं, सभी के हाथ में या तो सिगरेट है या तो ग्लासेस है, तो हमें लगता है कि यार अगर मैंने मना किया तो थोड़ा अजीब लगेगा ना, बड़ा अनकूल लगूंगा, सुबह ग्रुप से बाहर हो जाऊंगा। पर सच बात तो ये है कि भेड़ चाल में चलना तो बहुत आसान है, असली दम तो उसमें है जब सबके बीच में खड़े हो

होकर हम अपनी शर्तों पर जिए। साथियों, जब कोई नशे के जाल में फंसता है तो सबसे पहले उसके वो करीबी दोस्त और परिवार दूर होने लगते हैं जो उसे सच्चे मन से प्यार करते हैं। समाज में वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत कहीं खो जाती है। दिमाग हमेशा स्ट्रेस में रहता है और जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है वो धीरे धीरे दम तोड़ देती है। क्या सच में किसी ऐसी चीज के लिए अपने खूबसूरत भविष्य की बलि देना समझदारी है? नहीं ना। एक और बात दोस्तों, आजकल पढ़ाई का प्रेशर, करियर की टेंशन या फिर कोई समस्या हुई नहीं कि हम सोचने लगते हैं इसी बहाने ही सही थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा। साथियों, नशा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बस वो थोड़ी देर के लिए दिमाग को सुन्न कर देता है। जब होश आता है तो प्रॉब्लम वहीं खड़ी मिलती है और साथ में आपकी सेहत भी गिरी हुई नजर आती है। टेंशन है तो योग करें, ग्राउंड पर पसीना बहाएं और गाने सुने, या फिर आपकी एक बात अगर आप अपनी समस्या किसी के साथ साझा भी करते हैं तो भी उस समस्या का समाधान आपको जरूर मिलेगा। और बस ये जो नशे का चक्कर है, इस चक्कर में ना जाने ही कितने ही लोग कितने ही पैसे बर्बाद भी कर देते हैं। अगर नशे को छोड़कर पैसे बचाए जाए तो इन सारे पैसों को मिलाकर कुछ ऐसा खरीदा जा सकता है जो हमारी समस्या के समाधान में हमारी मदद कर सकता है। साथियों, अगर आप नशे से दूर रहते हो तो आपकी लाइफ में जो रेस है उस रेस के विनर आप ही हैं। जहां एक ओर नशे करने के नुकसान हैं, वहीं नशे ना करने के कई फायदे हैं। साथियों, पहला फायदा, आपकी हेल्थ एकदम अच्छी रहेगी। जब आप योग, व्यायाम या प्राणायाम करेंगे या मैदान में जोर की दौड़ लगाकर पसीना बहाएंगे तो आपकी एनर्जी का कोई मुकाबला नहीं होगा। दूसरा फायदा, आपका फोकस और आपका दिमाग इतना शार्प रहेगा कि कैरियर का हर गोल आप आसानी से अचीव कर लेंगे। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, जेब में पैसे बचेंगे जो आपके सपनों को पूरा करने में काम आएंगे और परिवार के चेहरे पर जो मुस्कान होगी वो अनमोल है। तो साथियों, अपने अंदर के उस मासूम बचपन को, उस प्योरिटी को संभाल कर रखिए। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो खुलकर बात करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी का हिस्सा बने, म्यूजिक सीखें और अपने मन की बातों को दूसरों से साझा करना सीखें। लेकिन नशे को साफ साफ कहें, ना भाई ना, अपना रास्ता अलग है। आज खुद से एक वादा करते हैं, खुद भी संभलेंगे और अपने दोस्तों को भी संभालेंगे। चलिए इस प्रॉमिस के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है न्यूयॉर्क, आवाज है केके की, गीत है प्रीतम का और संगीत दिया है संदीप श्रीवास्तव ने।

तो अभी आपने सुना फिल्म न्यूयॉर्क का गीत, जिसे अपनी आवाज़ दी है केके ने। गीत लिखा है संदीप श्रीवास्तव ने और संगीत था प्रीतम का। अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: साथियों, बचपन की वो बेफिक्री जब धीरे धीरे समझदारी की दहलीज पर कदम रखती है तो शुरू होता है जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे नाजुक मोड़, जिसे हम कहते हैं टीनेज। लेकिन इस बेफिक्री से समझदारी के सफर को खूबसूरत बनाए रखने के लिए जो सबसे जरूरी चाबी है वो है सेहत। और सेहत की ही बातें लेकर आते हैं हम अपने क्रम स्वास्थ्य जागरूकता में। आज इस क्रम में हम जानेंगे डॉक्टर मनोज चंद्राकर, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, इनसे टीनेज से लेकर वयस्क होने तक के सेहत से जुड़ी बातें। और ये बातें की है हमारे दोस्त मनीष सिंह सलाम ने।
5: बच्चों की मुस्कान से ही तो घर में खुशियां आती हैं
6: और उनके सेहत का ख्याल रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
5: बिलासपुर के मंगला चौक पर अब आपके बच्चों के सेहत के साथी हैं चंद्राकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल,
6: जहां अनुभवी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज चंद्राकर के अंडर आपके बच्चों को मिलेगा बेहतरीन केयर। आज ही विजिट करें चंद्राकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल,
5: मुनरा हॉस्पिटल के सामने, मंगला चौक के पास, बिलासपुर।
6: चंद्राकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल, क्योंकि आपका बच्चा डिजर्व करता है बेस्ट केयर।
7: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं चंद्राकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल।
5: शहजादे के अलग ही ठाट हैं, बदले बदले से रहते उनके मिजाज हैं। खाना समय पे वे खाते नहीं और काम में मन लगता नहीं। टेंशन उनको दुनिया भर

0: कि ख्वाब उनके अधूरे हैं, चेहरा उनका खिला खिला सा अब मुरझाया रहता है, क्योंकि लड़कपन से किशोरावस्था उन्हें रास ना आया लगता है। इतनी भरी जवानी में आधे अधूरे वे रहते हैं, झांक रहे हैं खुद के अंदर, व्यथित वो रहते हैं। साथियों, नर होना निराश करो मन को, यही बात हम बतलाते हैं, अलग जगाते हैं युवाओं में स्वास्थ्य की, इसलिए स्वास्थ्य जागरूकता का यह क्रम हम लाते हैं। दोस्तों, पैदा होने से लेकर व्यस्त होने तक हमारे शरीर में हर अवस्था में बहुत सारे बदलाव आते हैं, और वो शारीरिक और मानसिक दोनों होते हैं। हर उम्र में हमारे दिल की धड़कन अलग होती है, एनर्जी अलग होती है, मेटाबॉलिज्म अलग होता है, और हमारी विचार शक्ति भी अलग होती है। और जब स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मन का मिलन होता है, तभी हम अपने कार्य क्षेत्र में अपने सपनों के प्रति नए जुनून से बढ़ पाते हैं और सफलता के नए आयामों को भी छू पाते हैं। तो साथियों, मैं आपका दोस्त मनीष स्वास्थ्य जागरूकता के हमारे आज के क्रम में लाया हूँ इसी विषय पर खास बातचीत, जहाँ हम आज जानेंगे कि किस तरह एक स्वस्थ किशोर एक सशक्त युवा बनता है और वो राष्ट्र निर्माण करता है, यानी कि टीनेज से युवा अवस्था तक सेहत की सही शुरुआत की आज हम बातचीत करेंगे हमारे आए हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञ जी से। सर, आपका स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मनीष जी।
0: हम जैसा देखते हैं कि एक स्वस्थ बीज होता है, वही एक स्वस्थ पौधा या पेड़ बनाता है। जब हम किशोर अवस्था में होते हैं, टीनेज की उम्र में होते हैं, वह एक युवा का एक बहुत ही अहम पहलू होता है, जहां पर हम एडोलेसेंस हेल्थ की बात करना अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, तो यह कितना महत्वपूर्ण है?
1: इसमें हमारा मानसिक चेंजेस भी होता है, शारीरिक चेंजेस भी होते हैं, और कुछ हार्मोनल चेंजेस से बॉडी में काफी सारे चेंजेस होते हैं, और कई सारे चीजें का अपने जिंदगी में आना होता है, जैसे कि टीवी, मोबाइल, दोस्ती, तो इन सब से क्या हमारे शरीर में और अपने जो व्यवहार में चेंजेस जो आता है, इसमें काफी फर्क पड़ता है
0: जी।
1: और आगे चल के जो हम इसमें सीखते हैं या इसमें हम पे जो भी बीतती है, उससे हम इसका अपना भविष्य जो है अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं।
0: सर, कितने वर्षों से आप हमारे शहर में सेवा दे रहे हैं?
1: लगभग मैं 5 से 6 साल से यहाँ पर बिलासपुर में सेवा दे रहा हूँ
0: जी,
1: और काफी सारे बच्चों का इलाज किया हूँ और अभी भी कर रहा हूँ मैं
0: जी। युवाओं की जब हम बात करते हैं, तो युवाओं में बढ़ता जो तनाव है और चिंता है, इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है?
1: क्योंकि अभी एक तो ज्यादा सोच रहे हैं भविष्य के बारे में, और ज्यादातर हम लोग टेक्निकल चीजें में ज्यादा घुसते जा रहे हैं, अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं जो चीज हमारे लिए जरूरी है, और खासकर हम लोग जैसे मोबाइल की आदत ज्यादा हो जा रही है, नशे के उसमें चले जा रहे हैं, ये सब चीजें काफी जो है हमारे युवाओं को प्रभावित कर रही है, तो इनसे बचने से ही हम आगे अपना भविष्य अच्छा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एकाग्र मन जब हमारा होता है, तभी हम अपने जीवन के अहम फैसले भी ले पाते हैं। तो क्या लगातार मोबाइल चलाने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है?
1: हो सकता है ना, क्योंकि हम लगातार अगर मोबाइल चलाते हैं तो हमारा नेक पेन है, आंखों में दर्द है, और आंखों की परेशानी बढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है हम लगातार अगर मोबाइल यूज करें तो, और उससे काफी सारा हमारा ध्यान भी भटकता है, और हमने ऐसे बायोलॉजिकली देखा कुछ हार्मोन्स होती हैं जैसे कि डोपामिन बोलते हैं
0: जी,
1: वो हमारे लिए एक हंसने और बाकी चीजों के लिए उपयोग में किया जाता है, लेकिन अगर मोबाइल ज्यादा और ऐसी चीजें यूज करने से हमारे ये जो हार्मोन है वो भी काफी डिस्टर्ब होते हैं, उसकी वजह से चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना, ये सब हो सकता
0: जी। युवाओं की क्या खान पान की भी आदतें नुकसान पहुंचा रही हैं?
1: हाँ, आजकल तो सबसे बड़ा फैक्टर हो गया खान पान, ज्यादातर आजकल बच्चे लोग बाहर के ज्यादा खाने लगे हैं, जैसे कि पैकेट फूड है, जैसे चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जैसे कि जैसे नामी जानी फ्रूट ड्रिंक्स हैं, दूसरा अगर फास्ट फूड है, पिज्जा है, बर्गर है, ये सबसे काफी हमारे हेल्थ में तकलीफ होते जा रही है, जैसे कि इससे कि मोटापा बढ़ रहा है, बच्चों में डायबिटीज के केसेस भी आ रहे हैं, हाइपरटेंशन के कुछ केसेस भी आ जा रहे हैं छोटे बच्चों में, इससे अदर न्यूट्रिशनल इश्यू भी हो रहा है, जैसे प्रोटीन्स की कमी होना, एनीमिया होना, ये सब भी ऐसे सब खाने से हो रहा है। इसके साथ साथ हम लोग एक्चुअली ध्यान ये रखना है कि जो भी फूड प्रोडक्ट है उसको ना लेबल पढ़ना बहुत जरूरी है कि पीछे इंग्रेडिएंट क्या है, ज्यादातर हम लोग पढ़ते नहीं है और कुछ भी चीज खा लेते हैं, जैसे अगर मान लो कोई भी एग्जांपल कोई ड्रिंक्स के लिए, उसमें 99% या 90% से ऊपर से बोलो शुगर रहता है पूरा
0: जी,
1: जो चीज हम पढ़ते नहीं है और हम ऐसे पी जाते क्योंकि हमको अच्छा लगता है, मीठा लगता है।
0: हाँ, क्योंकि उसके प्रमोशन इतने जोरदार तरीके से होते हैं, उसकी पैकेजिंग इतनी आकर्षक होती है, और उसे कल्चर या फिर युवाओं के बेस्ड इस पर ही आधारित कर दिया जाता है कि इसे पीना कूल लगेगा करके।
1: हाँ, इसलिए इस पे बहुत ध्यान देना, और खासकर पेरेंट्स को, टीचर्स को, और हम जैसे बच्चों के डॉक्टर को इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए, और हमको हमेशा प्रमोट करना चाहिए कि हमेशा खाने से पहले उसके लेबल पढ़ो
0: जी,
1: ये बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमें फूड अपने खाने के बारे में अगर पता रहेगा तो हम निर्धारित कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या गलत है और क्या सही। युवाओं को जब हम देखते हैं कि वह अपने काम में बिजी हो जाते हैं तो वह अपनी नींद पूरी नहीं ले पाते, या फिर काम के वजह से वह अपना खाना पीना तो स्किप करते हैं लेकिन कभी कभी अपना नींद भी स्किप कर देते हैं, तो यह कितना अहम है
1: हाँ,
0: उनके
1: नींद एक्चुअली
0: ग्रोथ के
1: बहुत
0: लिए।
1: जरूरी है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि हम 7 से 8 घंटे के एवरेज

0: नहीं तो हमको मिनिमम चाहिए। अच्छी नींद लेंगे तो आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा, चिड़चिड़ापन कम होगा, और जितने भी हमारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे बोलते हैं, जैसे कि आपका डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और अदर चीजें हैं, वो काफी कम हो जाती है
1: जी।
0: इसलिए नींद का लेना बहुत जरूरी है। साथ साथ सोने से पहले मोबाइल से टीवी का ज्यादा आदत न डालें, और खासकर बच्चे जो है देर रात तक टीवी मोबाइल यूज करते हैं, 12-1 बजे तक जगते रहते हैं, सोते नहीं है, तो उसको कम किया जाए, जिससे कि जो है आगे उसका दिन अच्छा रहे और चिड़चिड़ापन और बाकी चीजें उसके जो पढ़ाइयों में भी प्रभावित ना हो, इस पे जरूर ध्यान दें बच्चे।
1: कल्चरल शिफ्ट जो हम देख रहे हैं कि आज हमारे जो छोटी उम्र के हमारे जो भाई हैं बहनें हैं, माता पिता उन्हें चुप कराने के लिए या फिर अपने टेंशन कम करने के लिए भी उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो सर ऐसे में बच्चों को संभालना क्या पेरेंटिंग का भी खास महत्व है कि उन्हें सीखना चाहिए सब चीज?
0: हाँ, इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे तो गाइडलाइंस है, ऐसे जैसे अमेरिकन गाइडलाइन बोलो या फिर हमारा आईपी गाइडलाइन, कि लेस देन 2 ईयर तो स्क्रीन टाइम का बहुत ही कम है, मतलब या तो नहीं देना चाहिए
1: जी,
0: या तो मोबाइल नहीं देना चाहिए, दे भी रहे हैं तो मिनिमम 1 आवर या 2 आवर्स
1: जी,
0: है ना, ऐसा है। तो जनरली इस पे पेरेंट्स का बहुत ध्यान देना है जरूरी है। खासकर पेरेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो एक्चुअली खाने के टाइम बहुत मोबाइल दिखाते हैं, तो बच्चा खा नहीं रहा है तो मोबाइल दिखा दिए तो खाना खाएगा
1: जी,
0: तो उसको हमको डिस्ट्रैक्ट करके या फिर उसके मन के हिसाब से खाना को वैरायटी चेंज करना पड़ेगा। जैसे एक फिक्स टाइप का खाना नहीं देना नहीं चाहिए, है ना, कभी कुछ जैसे चावल का कुछ बना दीजिए, कभी दलिया बना दीजिए, कभी कुछ और बना दिए, कभी चीला बना दीजिए, कभी बेसन का कुछ और पराठा बना दिए, ऐसा कुछ, तो ये सब चीजें चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा, अदर चीज में इन्वॉल्व करके ही उसको खाना खिलाएं, या साथ में एक साथ बैठ के खाना खाए, तो स्क्रीन टाइम इससे शायद कम हो जाए।
1: और जैसे हमारे युवा साथी हैं उनको सोशल मीडिया भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है,
0: हाँ,
1: और जब वो खाली होते हैं तो वो दोस्तों से घुलने मिलने के बजाय, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के बजाय वो अपना आराम हम मोबाइल पे ही अपना काम कर लें, ऐसा हम सोचते हैं, तो इससे कैसे निपटा सकते?
0: एक्चुअली क्या है, हम लोग इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए मीडिया से, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से, हम लोग उन्हीं को देख के ऐसा लगता है सीख रहे हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन चाहिए
1: जी,
0: अपना एक जो एक टाइम टेबल जो है, हमको घर का खाना खाना है, नियमित क्लीन लेना है, और अपने जो टारगेट है, लक्ष्य है कि हम क्या करना चाह रहे हैं आगे, उसके हिसाब से अपने को पूरा टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। और ये मोबाइल्स और टीवी जो है इसका भी हेल्प लेना ऐसा नहीं है, जैसे कुछ चीजों में हेल्प चाहिए, हम लोग जैसे गूगल का यूज करते हैं, यूट्यूब का भी देख लिए, कुछ अच्छी बातें देखने वीडियो से देख लिए, तो ऐसे चीज के लिए यूज करने में ठीक है, लेकिन हम उसको कहीं मूवी देखने या फिर रील देखने में अगर टाइम बिता देंगे तो ये हमारा पूरा समय खराब हो जाएगा। और खासकर हम लोग इससे काफी इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है रील जो है शुरू से बचपन से कभी मूवी देखते आ रहे हैं तो सबको अच्छी लगती है रील्स देखना, तो इससे बचे, क्योंकि आपको ये रील से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, आपको सीखना है, अपने आप को सिखाना है, तो अपने समय को बचाना है, और दूसरे को देख के ये नहीं देखना कि दूसरा कुछ क्या कर रहे हैं, दूसरा कैसे बढ़ जा रहा है, उनको नहीं देखना, हमें अपनी काबिलियत देखना है कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ और कितनी मेरे में क्षमता है
1: जी,
0: तो उस हिसाब से आगे बढ़े, इससे काफी फायदा रहेगा और भविष्य में भी अच्छा कर सकते हैं
1: जी। परीक्षा और करियर के दबाव को संभालने के लिए आप क्या सलाह देंगे?
0: एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ा तो टाइम मैनेजमेंट है, और दूसरा क्या है कि अपना क्या लक्ष्य, क्या बनना चाह रहे हैं, तो जो चीज बनना चाह रहे हैं उस पर टारगेट अपना पहले से निर्धारित रहे, भाई हमको ऐसा इतना पढ़ना है, ऐसा नहीं लगातार अभी पढ़ते जा रहे हैं, बीच में हमको टाइम भी देना है थोड़ा फ्रेश होने का। मुझे लगता है कि जैसे मैं जब MBBS की तैयारी कर रहा था तो हम पढ़ते भी थे, और उस टाइम हम लोग जो है दोस्त लोग और बाहरी आउटडोर भी गेम खेलते थे कम से कम आधा एक घंटा
1: जी,
0: उससे काफी फ्रेशनेस रहता है अगर आप ऐसा करते हैं। और खासकर जो रिजल्ट्स का टेंशन ना ले कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, उसका तो हो गया, मेरा तो नहीं हुआ, ये सब को सोच के चलेंगे तो फिर दिक्कत आएगी
1: जी,
0: तो इसको नहीं सोचना है, बस अपना समय देना है, जितना समय चाहिए भाई, मुझे इतना पढ़ना है, मेरी इतनी काबिलियत है, और समय से सोना है, घर का खाना खाना है, अगर आपका ये सब लक्ष्य सही है, एक समय एक डिसिप्लिन से आप समय से उठ रहे हैं तो आपका लक्ष्य हमेशा पूरा होगा
1: जी,
0: इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी।
1: हमारे बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ध्यान देते हैं, बहुत सजग रहते हैं, और वह जिम और फिटनेस के बढ़ते क्रेज के बीच भी बहुत सारे नियमों को फॉलो करते हैं, तो ऐसे में उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: देखो, व्यायाम करना तो बहुत अच्छी बात है, और समय से जल्दी सुबह उठ के अगर आप योगा है या फिर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बहुत सारी चीजें हैं, आप दौड़ सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, कुछ वॉक कर सकते हैं, या फिर कुछ सेंटर ज्वाइन कर, जैसे जिम है या फिर कोई योगा सेंटर या फिर और आजकल बहुत सारी सेंटर है, वेलनेस सेंटर, उसको ज्वाइन करते हैं, अच्छी बात है। ये अंडर गाइडेंस होना चाहिए
1: जी,
0: कि जो भी कर रहे हैं आप किसी गाइड के अंदर करें, इससे का प्रॉपर क्या चीज मुझे करना है और कितना करना है, ज्यादा जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में काफी एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर बड़ी बड़ी मशीन का यूज करने लगते हैं जिम में, तो ऐसा नहीं है, गाइडेंस के आधार पे करें और एक समय दें, समय

0: के साथ ही शरीर बढ़ेगा, दूसरा साथ साथ इसके साथ न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो प्रोटीन्स जो है हमारे इंडिया में खासकर हम लोग नहीं लेते, हम लोग ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट दाल चावल पे ही ज्यादा फोकस रहता है, शुरू से बचपन से यही सिखा रहे हैं कि चावल दाल रोटी खा रहे हैं ना
1: जी।
0: तो प्रोटीन्स हम लोग उतना अच्छे से नहीं ले पाते, कोशिश करें कि जैसे जिसमें प्रोटीन सोर्स ज्यादा है, जैसे कि अगर वेजिटेरियन है तो मूंग है, सोयाबीन है या फिर पनीर है, नॉन वेजिटेरियन तो फिर आपका एग से, चिकन से और अदर नॉन वेजिटेरियन है, और खासकर जिम वाले कुछ स्टेरॉइड या फिर अदर ऐसे हाई सप्लीमेंट ले लेते हैं, तो इससे थोड़ा बच के रहें।
1: अक्सर हमारे जो युवा साथी हैं कई कई बार भ्रामक विज्ञापनों के असर में भी आ जाते हैं और वो ऐसे कुछ प्रतिबंधित दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: नहीं, ये सब तो यूज नहीं करना चाहिए। अगर कुछ मेडिकली यूज हो वो दवाई या जो भी चीज है वो अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर ही यूज करें।
1: जी, हम बात करते हैं कि हमारे जो युवाओं में जो मुख्य एक और जो चीजें हैं, जब हम बढ़ते हैं उनके सामने देखते हैं, हम अपने आसपास नशे की जो लत होती है वो भी हमें कभी कभी घेर लेती है, जिसकी शुरुआत किशोरावस्था से ही होती है, तो उसे कैसे बचा जा सकता है?
0: ऐसा तो जनरली क्या होता है कि कुछ नया चीज है और टीवी एड्स और कुछ इन्फ्लुएंसर को देख के कुछ या फिर मूवी देख के लोग चालू कर देते हैं
1: जी
0: नशे में, जैसे कुछ लोग गुटखा खा रहे हैं, कुछ लोग अल्कोहल ले रहे हैं, ये सब पूरा शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो इससे बच के रहें, यही इसका उपाय है, इससे कैंसर हो सकता है।
1: अभी जैसे कि बारिश के मौसम अभी आने वाली है और गर्मी अब विदा लेने वाली है, तो युवाओं को कौन सी स्वास्थ्य सावधानियां अपनानी चाहिए?
0: तो बारिश टाइम में ज्यादातर जैसे ज्यादा बीमारी होती है, जैसे डेंगू मलेरिया ये सब काफी फैलती है, तो ये है मच्छर से बच के रहो, और पीलिया के भी शिकायत आती है तो पानी भी साफ सुथरा पिए, और सबसे जरूरी किसी भी इन्फेक्शन को बचाने का तो हैंड हाइजीन, आप हाथ अच्छे से धोइए।
1: अच्छा, इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं और हम जानना चाहेंगे आपसे कि हमारे युवा साथी हैं स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जीने के लिए आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: सबसे जरूरी है तो आप एक नियमित जो है अपना एक डिसिप्लिन बनाए कि भाई मुझे सुबह उठना है, एक्सरसाइज करना है, ब्रेकफास्ट करना है घर का
1: जी,
0: है ना, और एक नियमित टाइम में लंच लेना है, डिनर लेना है, एक तो टाइम मैनेजमेंट हो गया। दूसरा ये कि अपने आप के कोई भी एक्सरसाइज जरूरी है या फिर आउटडोर कुछ भी गेम खेलना जरूरी है, कुछ भी आप कुछ भी एक्टिविटी करिए, आप साइकिलिंग करें या फिर कुछ दौड़ें या फिर कुछ खेलें, जो भी खेलना चाहते हैं क्रिकेट बैडमिंटन जो आपको आता है ये सब जरूरी है। दूसरा ये है कि एक्सरसाइज में हाई और जरूरी है योगा, योगा का बहुत बड़ा रोल है आजकल जो इतना स्ट्रेस हो रहा है भविष्य को लेकर, तो योगा का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा ये अपना एक जो गोल है, जो एडल्सेंट एज वाले बच्चे हैं तो अपना गोल जो है फोकस रहे भाई मुझे करना क्या है, वो अपने हिसाब से देखना है, दूसरे से तुलना नहीं करना है कि भाई वो क्या कर रहा है, उसको ये बनना है, मेरा जो मेरे कैपेसिटी है या मेरा जो लक्ष्य है कि भाई कुछ भी बहुत सारे ही डाइवर्स है, इतने सारे की जॉब भी है या फिर वो है, उस हिसाब से मुझे आगे पढ़ाई भी उस हिसाब से करना है जो मेरी क्षमता है। दूसरा सबसे बड़ा जरूरी है कि आप मोबाइल्स और टीवी का यूज कम करें, अपना समय ज्यादा बर्बाद इस पर ना करें। और एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि एडोलसेंट टाइम में लड़कियों में काफी हार्मोनल चेंजेस होती है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, डरना नहीं है क्योंकि आपके इस युवावस्था में काफी सारी चेंजेस होती है बॉडी में
1: जी,
0: शरीर में नई चीज का आना, मन का चेंज होना, तार चढ़ा, गुस्सापन, चिचड़ापन, ये सब भी कई चीजें जो होती धीरे धीरे ये सब नॉर्मल होती हैं अपनी एडोलसेंट एज में, उसको पहले समझे कि ये नॉर्मली चेंजेस हो रहा है, हार्मोन का इसका इफेक्ट है और शरीर में जो नई चीज आ रही है उसकी इफेक्ट है।
1: तो सर आज के हमारे कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, जिस्म स्वस्थ हो तो मंजिलें आसान लगती हैं, मन स्वस्थ हो तो मुश्किलें भी मेहमान लगती है। न दौलत, न शोहरत, न ऊंचे मकान चाहिए, सपनों को पूरा करने के लिए बस स्वस्थ इंसान चाहिए। थोड़ा दौड़ो, थोड़ा खेलो, खुद से भी कुछ वक्त तो ले लो। फिटनेस कोई फैशन नहीं, यह जीवन का अनुशासन है। स्वास्थ्य का कोई विकल्प नहीं और यही सफलता की पहली शर्त है। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा और हम मिलेंगे आप सभी से अगले किसी और क्रम में।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे चंद्राकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल।
3: बच्चों की मुस्कान से ही तो घर में खुशियाँ आती हैं
4: और उनकी सेहत का ख्याल रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
3: बिलासपुर के मंगला चौक पर अब आपके बच्चों के सेहत के साथी हैं चंद्राकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल,
4: जहां अनुभवी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज चंद्राकर के अंदर आपके बच्चों को मिलेगा बेहतरीन केयर। आज ही विजिट करें चंद्राकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल,
3: मुनरा हॉस्पिटल के सामने, मंगला चौक के पास, बिलासपुर।
4: चंद्राकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल, क्योंकि आपका बच्चा डिजर्व करता है बेस्ट केयर।
5: अभी आपने सुना टीनेज से लेकर वयस्क होने तक के सेहत से जुड़ी बातें। विशेषज्ञ थे डॉक्टर मनोज चंद्राकर और इनसे बातचीत की हमारे साथी मनीष सिंह सलाम ने। और साथियों, अब आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। जब हम भविष्य की बात करते हैं तो आपको क्या क्या दिखाई देता है? बड़ी बड़ी गाड़ियां, तकनीक या ऐसा आसमान जो धुएं से ढका हो? सोचिए, अगर आज हम नहीं संभले तो हमारा कल कैसा होगा? लेकिन एक

बहुत बड़ी उम्मीद की किरण हमारे पास है, वो है हमारा प्रण और हम युवा शक्ति। आज पर्यावरण संरक्षण की हम बहुत सारी बातें सुनते हैं और कुछ दिनों बाद और अभी से ही पेड़ लगाने की ढेर सारी बातें हम सुन रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण की इस जंग में हम युवाओं की भूमिका काफ़ी बड़ी हो सकती है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने का वक्त नहीं, बल्कि ज़मीन पर उतरकर बदलाव का हिस्सा बनने का समय है। अगर हम युवा चाहें तो अपनी रोज की ज़िंदगी से ही शुरू कर सकते हैं इन बातों का ख्याल रखना। प्लास्टिक को ना कहें, सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी में हम जब जन्मदिन होता है या कोई ख़ास मौका होता है तो पार्टीज करते हैं, लेकिन उस पार्टी के साथ साथ एक और काम कर सकते हैं, एक पौधा लगा सकते हैं और उस पौधे को ना सिर्फ लगाएंगे बल्कि उस पौधे को लंबे समय तक, थोड़े से लंबे समय तक, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता और जब तक उसे दूसरों से सुरक्षा की ज़रूरत नहीं की ज़रूरत होती है, तब तक उसका थोड़ा ख्याल रखें। आपकी तकनीक, आपकी नई सोच और वेस्ट मैनेजमेंट के नए तरीके इस धरती को दोबारा हरा भरा बना सकती है और हम साथ साथ में मिलकर अगर काम करें और बस साल में एक ही पेड़ लगाएं और उस एक पेड़ को संभालें, संवारें, तो शायद कल को ये धरती हरी भरी रहे। और बिल्कुल इस बात पे जोर दीजिएगा और ये ना सोचिएगा कि हमारे एक केक करने से क्या होगा। अगर हम सभी एक एक मिलकर पेड़ लगाएं और एक एक मिलकर काम करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तो कल को वो एक मिलकर हजार, लाख, करोड़ और कई हजार करोड़ बन सकते हैं। याद रखिएगा, आज का छोटा संकल्प आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ा जीवनदान है। धरती बचेगी तभी तो हमारा भविष्य होगा। तो उठिए, कदम मिलाइए और कहिए कि हम पर्यावरण के रखवाले हैं और इस बरसात एक पेड़ जरूर लगाने वाले हैं। आज के इस कार्यक्रम से दीजिए मातृका को इजाजत, स्वीकारें नमस्कार।

कार्यक्रम युवा जगत अभी हम सुन रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हो रहे हैं। वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आज शाम 7:10 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला। विषय होगा जनविश्वास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। शाम 6:20 और शाम 7 सुनिएगा ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुने। सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा। रात्रि 8:00 कलाकार होंगे मन्ना डे। आज हम सुनेंगे मधुशाला। रात्रि 8:15 पर खुशबू बिखरेगी रजनीगंधा की और रात्रि 9:15 से लेकर 11:00 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। ये तो थी आज के मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको बता देते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 6:30 पर सुनेगा खेती की बात। सामूहिक सुझाव होगा खरीफ में बैगन की उन्नत खेती विषय पर। वाचन स्वर होंगे अभिनव गौराहा के।

0: कार्यक्रम चिंतन होगा प्रातः 6:45 पर। विषय होगा सिर्फ उपदेशक ना बने अमल में लाएं। आलेख श्रीमती कामिनी माथुर का होगा। सुबह 8:30 पर हम लेकर आएंगे समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह, जिसका अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। सुबह 10:00 आनंद लीजिएगा छत्तीसगढ़ी गीतों के कार्यक्रम अमराई का, जिसमें कलाकार होंगे लता खापरडे, माया खापरडे, मनोहर यादव और साथी। सुबह 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम नए तराने। शाम 5:05 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी, जिसमें हम सुनेंगे हल्दी एवं अदरक को बोने के पूर्व उपचारित करें विषय पर आज की बात। साथ ही सुनिएगा खेत बचाओ पर चर्चा। उन्नत चारा प्रबंधन तकनीक विषय पर कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के अतिथि वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्ण डहेरे से जीतू भैया की बातचीत। शाम 6:20 और शाम 7:00 सुनिएगा ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्में गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने। शाम 7:10 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला। विषय होगा अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्य। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से समाचार के लिए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में आने आने क्षेत्र के कंपनी मन प्रदेश में 9,000 करोड़ रुपया ले ज्यादा के निवेश प्रस्ताव दिन। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज प्रदेश के 2 दिन के दौरा में राजधानी पहुंचे। प्रदेश के जम्मू सरकारी और निजी स्कूल गर्मी के छुट्टी के बाद 16 जून के खुली। और कांकेर जिला में गाज गिरे ले 3 मनखे मन के मौत, उन्हें 5 जिन दूसर महिला झुलस गिन। अब समाचार विस्तार ले। हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में आने आने क्षेत्र के 7 प्रमुख कंपनी मन प्रदेश में 9,580 करोड़ रुपया के निवेश प्रस्ताव दिन है। इखले 7,800 ले ज्यादा के रोजगार सृजित हुए के संभावना है। ए मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है बताइन कि नवा औद्योगिक नीति लागू हुए के बाद दिल्ली मुंबई बेंगलुरु के संगरा जापान और दक्षिण कोरिया में रखे गए इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम के माध्यम ले राज्य 8,00,000 करोड़ ले ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले है। राज्य सरकार ये प्रस्ताव मल्ला धरातल में उतारे बर तेजी ले काम करत है। मुख्यमंत्री है कहिन कि छत्तीसगढ़ आज निवेश बर देश के सबले बेहतर राज्य में ले एक बन के उभरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कहिन है कि सरकार है पाछू 12 बच्छर में महिला मल्ला राष्ट्र निर्माण और उमन के पूरा क्षमता के एहसास कराए बर अनुकूल वातावरण तैयार करे है। प्रधानमंत्री है कहिन कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता लेके शिक्षा हेल्थ केयर साफ सफाई आवास खेल विज्ञान और गवर्नेंस तक महिला मन आने आने क्षेत्र में अहम भूमिका निभावत हैं। एक ठिन सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी है कहिन कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरत क्षेत्र में महिला मन के बढ़त भागीदारी ले अवसर के नवा रास्ता खुलत है और पूरा देश के विकास परिदृश्य बदलत है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज छत्तीसगढ़ के 2 दिन के प्रवास में रायपुर पहुंचे। श्री सिंह आज मझनिया रायपुर के एक निजी अस्पताल में आयोजित विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल हुईं। इकर बाद उमन मोदी सरकार के 12 बच्छर पूरा होए के उपलक्ष्य में राजधानी में रखे गए विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुईं। श्री सिंह आज संझा राजधानी

नीमा हैंडलूम हस्तशिल्प सिल्क और राज्य संग्रह क्षेत्रीय टेक्सटाइल अधिकारी मन संग बैठका घलो करही। उन्हें अपन प्रवास के दूसरिया दिन काली देहरादून के राजधानी में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुई। केंद्र सरकार है खुदरा पेट्रोल पंप ले संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहक मन के ईंधन खरीदे ऊपर रोक लगा दी है। सरकार है कहे है कि एमल्ला अपन जरूरत के पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्र ले ही लेना होगी।

0: कारक कहे हे कि एमन ला अपन जरूरत के पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्र ले ही लेना होही। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा हकीन है कि डिजिटल भू अभिलेख के सुरक्षा पर कड़ा इंतजाम करे जाही। काली रायपुर में एक ठिन उच्च स्तरीय समीक्षा बैठका में ओमन कहन कि गड़बड़ी रोके पर EHRMS पोर्टल बनाए जाही। राजस्व मंत्री हा आने आने जिला में 3 साल या ओखले ज्यादा बेरा ले एके जगह में पदस्थ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक, सहायक अधीक्षक और राजस्व निरीक्षक के सूची मंगाए है। एकरे संग एके हल्का में 3 साल ले ज्यादा बेरा ले जमे पटवारी मन के घलो पूरा ब्यौरा तैयार करे के निर्देश दे गए है। उमन अधिकारी मन ले नगरीय क्षेत्र में पात्र हितग्राही मन ला पट्टा वितरण करे के जम्मो जरूरी सर्वे काम अवैया 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप ले पूरा करे के निर्देश दिन है। प्रदेश के जम्मो सरकारी और निजी स्कूल गर्मी के छुट्टी के बाद 16 जून के खुलही। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग हा जिला शिक्षा अधिकारी और संयुक्त संचालक मनला आदेश जारी कर दे है। आदेश में विभाग हा सबो स्कूल मनला पहले ही दिन ले समय सारिणी के अनुसार पढ़ाई लिखाई के काम शुरू करे बर कहे है। बता दन कि राज्य सरकार हा भयंकर गर्मी ला देखत 15 अप्रैल ले 16 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करे रहिस। सुनैया मल्ला बता दन के प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इधरी मोदी सरकार के 12 बच्छर पूरा होए ऊपर केंद्रित रही। एक तहत छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा ले गए भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एक प्रसारण काली 13 जून के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहाले FM और प्राइमरी चैनल में बिहनिया 9 बजे ले करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो माचे समाचार कोती। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय है बच्छर 2025 भर संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार मन के घोषणा कर दे है। इस सम्मान सूची में छत्तीसगढ़ के 4 जन कलाकार के चयन करे गए है। इमा लोक कलाकार और रंगकर्मी संग्रह पद्मश्री सम्मान ले सम्मानित हो चुके डॉक्टर अनूप रंजन पांडे घलो शामिल हैं, जे मल्ला इस साल के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दे गए है। डॉक्टर अनूप रंजन पांडे के अलावा कत्थक नृत्य के वरिष्ठ साधक पंडित रामलाल बरेठला संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और युवा रंगकर्मी घनश्याम साहू और डॉक्टर आनंद कुमार पांडे ला उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार पर चुने गए है। कांकेर जिला के कलगांव में गाज गिरे ले 3 मनखे मन के मौत हो गए है। उन्हें 5 जन दूसर महिला झुलस गिन। बताया जात है कि कलगांव में मनरेगा के तहत तालाब घरीकरण के काम चलत रही, जेमा करीबन 60 ले 70 मजदूर काम करत रही। आज बिहनिया बारिश शुरू हुए मां कुछ एक मजदूर रुख के नीचे खड़े हो गिन। यही दौरान अचानक गाज गिर गए। यह हादसा मां कलगांव के उप सरपंच समेत 3 जन पुरुष के मौकाचमा मौत हो गए है। वहां 5 महिला गंभीर रूप ले झुलस गिन, जेमल्ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतागढ़ में भर्ती कराए गए है। इमाले एक महिला के हालत गंभीर बताए जाते जिला बेहतर उपचार पर कांकेर जिला अस्पताल में रेफर करे गए है। कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर है मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी लग घायल मन के बेहतर उपचार के निर्देश दिन है। बलरामपुर जिला में पुलिस है करीबन 10 करोड़ रुपया के गांजा बरामद करे है। इस मामला में पुलिस है उत्तर प्रदेश के रहवासी 2 जन तस्कर मनला गिरफ्तार करे है। पुलिस बताया है कि गांजा एक दिन ट्रक में भर के ओडिशा के सोनपुर ले उत्तर प्रदेश ले जाया जात रहीस। मुखबिर मिले सूचना के आधार में पुलिस है आज बिहनिया नाकाबंदी करके ट्रक ला रोकीस और जांच करीस। ए दौरान बोरीमन में भरे करीबन 1941 किलो ले ज्यादा के गांजा बरामद करेगीस। किर्गिस्तान में रखे गए एशियन पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्रीमत झा रजत पदक जीते है। उमन PIUH 85 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के खिलाड़ी ला हरा के ए उपलब्धि हासिल करे है। श्रीमंत अपन पदक देश के वीर शहीद जवान।

मल्ला समर्पित करीन हे। नवा रायपुर स्थित सेंध लेक मां आज ले 36वां राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायाकिंग केनोइंग प्रतियोगिता शुरू हो गए है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कायाकिंग केनोइंग एसोसिएशन डहर ले भारतीय कायाकिंग केनोइंग संघ और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में होवैया 3 दिन के ए प्रतियोगिता में देश भर के खिलाड़ी हिस्सा लेवत हैं। छत्तीसगढ़ में शराब के ओवर ट्रेटिंग के शिकायत में आबकारी विभाग बड़का कार्रवाई करे है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल को तिले आने आने जिला के शराब दुकान में करेंगे औचक निरीक्षण के दौरान निर्धारित दर ले ज्यादा कीमत में शराब बेचे के मामला आगू आए के बाद आबकारी आयुक्त PSL महा 4 जिन आबकारी उप निरीक्षक ल निलंबित कर दिन है। उन्हें 8 जिन अधिकारी मल्ला कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगे गए है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA 21 जून के होवैया नीट UG पुनर्परीक्षा के अवधि में 15 मिनट के अतिरिक्त समय जोड़े के फैसला करे है। अबले अभ्यर्थी मल्ला परीक्षा पूरा करे बर कुल 195 मिनट मिलही। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घौ फेर। हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में आने आने क्षेत्र के कंपनी मन प्रदेश में 9,000 करोड़ रुपया ले ज्यादा के निवेश प्रस्ताव देन। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज प्रदेश के 2 दिन के दौरा में राजधानी पहुंचिन। प्रदेश के जम्मू सरकारी और निजी स्कूल गर्मी के छुट्टी के बाद 16 जून के खुली और कांकेर जिला में गाज गिरे ले 3 मनखे मन के मौत उन्हें 5 जिन दूसर महिला झुलस गिन। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।

FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हो रहे हैं। वक्त है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का। कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का पहला फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं नागर कोहरा राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा आराध्या साहू। महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश प्रगेश, प्रितेश संघई। भागलपुर से कमल किशोर साहू, अश्विनी अमरदीप, पशुपति सिंह और टीकू और इनके साथ है मुस्कान। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा और आदित्य देवांगन। मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार काले और इनके साथ है वसुधा वज्रसेन। ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लाव्या, आरव खुराना और एस के पप्पी। सहारनपुर से ही आशु मोची। कस्बा गुनौर से नसीमुल इस्लाम गुनौरी, फरहीन अब्बासी और दानिश गुनौरी। रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा विविधा वंडलकर। मोनताला महाराष्ट्र से विजय सुरड़कर, रत्नमाला और ओम कुमार सुरड़कर। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और साधना सरगम की आवाजों में समीर का लिखा हुआ गीत। फिल्म का नाम है प्रेम कैदी और संगीत है आनंद मिलन का।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और साधना के गाए प्रेम कैदी फिल्म के गीत के साथ अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है हिना, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। इस गीत की फरमाइश हमें ईमेल के माध्यम से भेजने वालों के नाम है, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, माया कुमार, निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरुप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या कीर्ति, डिकेश वासु, डॉली पूर्वेश साहू, इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता गणेश, कार्तिक परी, स्वाति और प्रयाग चौधरी, बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू तारा, कौशल सेन, फजिलका पंजाब से भूषण खेरा, विशाल, विशु, लाडी, शालिनी, तिवांशी, वाणी और आरबी खेरा, पांडरकवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री बुरांडे, खोंदला, उदयपुर सरगुजा से जीत धन सिंह पैकरा, घुरनी, करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि, ऐश्वर्या पैकरा, भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत, राघवेंद्र साहू, दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमाराज और दिव्या भारती, छत्तीसगढ़ से प्रभा जाटव, डॉली, कबीर और देवशंकर, भूतकछार लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम, रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भानपाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश और दिव्यांश बघेल, अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद, गौरव मंदुरकर, आरव और अर्पिता, पैठण से सुरेश जाधव, अनिता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल सिया जाधव, पोड़ीबाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल, वसुंधरा, प्रांजल चंदन, जलंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मुन्नत, भरत और कमल साहनी, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इसरार और नरगिस खातून, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से ही मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य, सोनी मोहिनी, ऋतिक बलवीर सिंह, सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु, सोनाली नारंग, बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल, भिलाई तीन चरौदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून, जीशान, शहनवाज अहमद सिद्दीकी, दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना, जनकपुर से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेरॉय, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम, राकेश कुमार, जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक, पूजा खटक, लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल, भारती बघेल, जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल, गांव हीरावाली, फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित गर्वी, हिमाक्ष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित तानिया, बुल्ढाणा वड़सिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई, दीपाली और श्लोक कुमार, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलेज डिकेस्ट्रो, बठेना से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, टोप सिंह, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश और रेशमा साहू, बोरसरा नैला से प्रबोध कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, गुमला झारखंड से नजम मुलहोदा, एस एम जावेद और शगुफ्ता अंजुम, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख और रहीम मुन्ना, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, लोरमी चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा पुष्पराज, ऋषभ मरावी, सौंगा जिला धमतरी से कोमल सेन, तोषण विनायक सेन, कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा, प्रथमेश चंदन और पांडु रंग कुंभार, रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश, राजेश्वरी उत्कर्ष चौहान, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरभ, शायना और मैंडी शर्मा, जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु, जलालाबाद पश्चिम से सूरज गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद, आलिया और आयान।

आनंद मिलिंद। इस गीत की फरमाइश हमें ईमेल के माध्यम से भेजने वालों के नाम है नांदघाट कातलबोर से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, ऋतु राजपूत, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका अनिष्का और तन्मय गजभिये, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल विनीत, सोनम वर्मा, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और रमेश साहू, कैदी मोड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा ऋषभ सिंह, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना, चेतन भगत, सांदुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, दिल्ली से आसमा परवीन, आमना परवीन और वली भाई अंसारी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, बुलंदशहर से मोहम्मद सिद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासिन अंजान, साइमा नवाज, हसद अहद, मिफ्रा नवाज और चाहत, बिलासपुर से हमारे साथी हैं छनूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा, अंजू योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश कमलेश, गनुलाल रजक और मुरली छत्रिय, सावंतपुर से ऋषि सेन, रितेश कंचन, माही सेन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पप्पी भाटिया, मुंबई से अदीबानास, फातिमा, नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी, जलंधर से संदीप जटोलिया, तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, बेंगलुरु जिला नांदेड़, महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गमहणकर, टुकटुक, एकांश, सुमित गमहणकर और इनके साथ है ध्वनि, जालंधर से मीना कौर, मन्नत नूर, यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा श्राव्या रामटेके, भाटापारा से बचकमल, मोतीलाल यादव, सियाराम चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु और भुवन कामरी, ओवरेठीपारा भाटापारा से अनिता साहू, वीणा नेहा, मोनिशा साहू, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उबर डावर और इनके साथ है राजेंद्र कटारे, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दुदी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार दुदी, महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहां नाज, तलत फरहत, रिफत नुजहत, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा हनुमान, उत्तम जमदाड़े, भूचो कैचिया, बठिंडा पंजाब से परेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन अभिजोत, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी, वीरमगाम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल, पूजा परिहार, रायगढ़ बिहार से उमाराज, पवन, संजय, दीपक और कमल, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, समडेल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकुर, राघव गुप्ता, राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, सरगुजा मैनपाट से अजिता पॉल, प्रभा रानी, प्रियांशी शर्मा, छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन, पिपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा, पाहंदा पलारी से नितेश कुमार, तनुजा देवांगन, निशांत लखनलाल, सावित्रीबाई देवांगन, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, बलौदा से दिलहरण गौतम, अंजलिद आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा, दाढ़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप अमूल्य बाठे, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल यशस्वी वर्मा, देवरी भाटापारा से गनुलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम, टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी थांदी,

कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने के इस अंक का अगला और अंतिम फरमाइशी गीत है फिल्म दिल से। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजें हैं। समीर ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार हैं आनंद।

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण के गाए दिल फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से और सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।

0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों ने प्रदेश में 9,580 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव दिए। आज छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में हुए शामिल। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 16 जून से खुल जाएंगे। और कांकेर जिले के कलगांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 5 अन्य महिलाएं झुलसी। अब समाचार विस्तार से। हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की 7 प्रमुख कंपनियों ने प्रदेश में 9,580 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इससे 7,800 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के साथ ही जापान और दक्षिण कोरिया में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य को 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
2: छत्तीसगढ़ को विकसित करने के लिए हम लोग विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उसमें उद्योग का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। एक जो परसेप्शन था कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त करने में हम लोग कामयाब हुए हैं और खनिज संपदा भी भरपूर है। सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं और एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हम लोगों ने बनाई है और बहुत कम समय में करीब 8 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है और धरातल में काम भी चालू हो गया है।
1: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। श्री सिंह आज दोपहर रायपुर के एक निजी अस्पताल में आयोजित विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद वे मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राजधानी में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुए। इससे पहले रायपुर विमानतल पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीते 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं।
3: मैं 2 दिनों के प्रवास पे छत्तीसगढ़ आया हूँ और 12 साल में जो भारत को दुनिया के पटल पर केवल एक सेक्टर में नहीं बल्कि मल्टी सेक्टर में ले जाने का काम किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो सारे रिपोर्ट को छत्तीसगढ़ वासियों के सामने पेश करना ये हमारा काम है।
1: श्री सिंह आज शाम राजधानी में हैंडलूम, हस्तशिल्प, सिल्क और राज्य तथा क्षेत्रीय टेक्सटाइल अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। वहीं अपने प्रवास के दूसरे दिन वे कल 13 जून को राजधानी में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे ऑक्सीजन गार्डन में पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री सिंह कल रायपुर में विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 16 जून से खुल जाएंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालकों को आदेश जारी कर दिया है। आदेश में विभाग ने सभी स्कूलों को पहले ही दिन से समय सारणी के अनुसार अध्ययन अध्यापन कार्य शुरू करने को कहा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए 15 अप्रैल से 16 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया था। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस सम्मान सूची में छत्तीसगढ़ के 4 कलाकारों का चयन किया गया है। इनमें लोक कलाकार और रंगकर्मी तथा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हो चुके डॉक्टर अनूप रंजन पांडे भी शामिल हैं, जिन्हें इस साल का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर अनूप रंजन पांडे के अलावा कथक नृत्य के वरिष्ठ साधक पंडित रामलाल बरेठ को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप तथा युवा रंगकर्मी घनश्याम साहू और डॉक्टर आनंद कुमार पांडे को उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है।

0: श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्रित रहेगा। इसके तहत छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 13 जून को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कांकेर जिले के कलगांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 5 अन्य महिलाएं झुलस गई हैं। बताया जा रहा है कि कलगांव में मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण का कार्य चल रहा था, जिसमें करीब 60 से 70 मजदूर काम कर रहे थे। आज सुबह बारिश शुरू होने पर कुछ मजदूर पेड़ के नीचे खड़े हो गए, इसी दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। इस हादसे में कलगांव के उप सरपंच सहित 3 पुरुषों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतागढ़ में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर उपचार के लिए कांकेर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बलरामपुर जिले में पुलिस ने करीब 10 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश निवासी 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने बताया कि गांजा एक ट्रक में भरकर ओडिशा के सोनपुर से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था।
1: जब हमने प्रॉपर NDPS के तहत कार्रवाई शुरू की और कार्रवाई के पश्चात हमें पता चला कि कुल 1941.110 किलोग्राम अवैध नशीला पदार्थ गांजा जो है ट्रक के अंदर लोड थे। उसी ट्रक के साथ ये लोग जो है वो उत्तर प्रदेश की तरफ जाने के लिए आगे अग्रसर थे। इसी के तारतम्य में बसंतपुर पुलिस द्वारा NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में रिमांड में भेजा जा रहा है। कुल मशरू का जो है जो बरामद की गई है उसका कुल कीमत जो है वो तकरीबन 10 करोड़ 50 लाख के तहत जो है वो काटी जा रही है।
0: किर्गिस्तान में आयोजित एशियन पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी श्रीमंत झा ने रजत पदक जीता है। उन्होंने PIUH 85 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। श्रीमंत ने अपना पदक देश के वीर शहीद जवानों को समर्पित किया है। नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में आज से 36वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर कायकिंग केनोइंग प्रतियोगिता शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कायकिंग केनोइंग एसोसिएशन द्वारा भारतीय कायकिंग केनोइंग संघ और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में होने जा रही 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने के मामले सामने आने के बाद आबकारी आयुक्त PS एल्मा ने 4 आबकारी उपनिरीक्षकों को निलंबित कर दिया है, वहीं 8 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की सेवा अवधि में वृद्धि की गई है। आगामी चुनाव के मद्देनजर उनकी सेवा अवधि फरवरी 2027 तक या राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियमित पदस्थापना होने तक बढ़ाई गई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों में संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाले NEET UG पुनर्परीक्षा की अवधि में 15 मिनट का अतिरिक्त समय जोड़ने का फैसला किया है। अब अभ्यर्थियों को परीक्षा पूरी करने के लिए कुल 195 मिनट मिलेंगे। राज्यपाल रमेन डेका आज रायपुर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि फिल्में और डॉक्यूमेंट्री केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करने और सकारात्मक संदेश देने का एक प्रभावी साधन है। सरगुजा संभाग आयुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा ने आज सरगुजा संभाग की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। यह छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी संभाग की पहली आधिकारिक वेबसाइट है जो नागरिकों, पर्यटकों और विभिन्न हितधारकों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी। कोंडागांव जिले के विश्रामपुरी पुलिस ने ग्राम उड़ीद गांव में एक व्यक्ति से मारपीट कर रकम लूटने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गौरेला पिंडा मारवाही जिले के राजस्व अनुविभाग स्तर पर 18 से 30 जून तक पंजीकरण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राहियों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। खेत बचाओ अभियान के तहत

0: कोरिया जिले में कृषि विशेषज्ञ गांव गांव जाकर किसानों को प्राकृतिक खेती और संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए जागरूक कर रहे हैं। और दुर्ग पुलिस ने कुथरेल और अंडा क्षेत्र में संचालित दो अवैध गुटखा फैक्ट्रियों पर छापा मारकर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों ने प्रदेश में 9,580 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए। आज छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में हुए शामिल। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 16 जून से खुल जाएंगे। और कांकेर जिले के कलगांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 5 अन्य महिलाएं झुलसी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का राय।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का। कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने के इस अंक का पहला फरमाइशी गीत है फिल्म फूल और कांटे से। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजें हैं। समीर ने इस गीत को लिखा है और संगीत नदीम श्रवण का है। इस गीत की फरमाइश हमें ईमेल के माध्यम से भेजने वालों के नाम है। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर, सरिता प्रिंस, एकांश गवांडकर, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रेहान, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल, राजेश, पोटियाला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक, सीमा साहू, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश साहू, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी राय, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला, विशाल नावकर, सौंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित देवीकरानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन, कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता अनिकेत, रोहिणी ऋषिकेश, जीविका दले, कर्मा चौक लोहारी डीह जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी खुशांत निशांत साहू, रोहासी से मुकेश साहू, नंदिनी मनीष मयंक, जानकी साहू, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद और कालिंदरी लहरे, मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु, सागर बालूजा, सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन पल्लवी, राजेश्वरी वर्मा, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी मनवर, दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमलारानी, गीतिका, भानुप्रकाश, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसुतासु, अर्णवानंद और सत्यमानंद, कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर, राजेश जाधव, प्रशांत, संचित वायाड़, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली, सर्वत देशमुख, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य और मेघा मस्कीन। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं फूल और कांटे फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने में अभी हमने सुना फूल और कांटे फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में। कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अदनान सामी और अलका याग्निक के गाए युवा फिल्म के इस गीत को, जिसे लिखा है महबूब ने और संगीतकार हैं AR रहमान। इस गीत की फरमाइश हमें ईमेल के माध्यम से भेजने वालों के नाम है बजनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची प्रवीण पुजारी, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिसा नायाब और लड्डू, हांसी से राजू मिगलानी, बबीता सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, जगराव से सुनील पाठक, कमल दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद और अलका मिड्ढा, बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, निधि, निखिल, यश, प्रयाण, शिवम, रेखा, धनेश्वरी वर्मा, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, भिलाई से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला आसमा श्याम कुंवर, गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ और ऋचा देवांगन, कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शायना हसन, नाजिया इब्राहिम, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शकीर, अल्तमश खत्री, अलकमा, रमेश गौड़ और शादाब खत्री, लुतरा खमरिया से अक्रम अमीन, अर्श आतिका, लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन अपार ढिंगिया, लुतरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अक्रम, मोहम्मद अजीज, तेवरता डबरी पारा कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहोदरी बाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम, चंद्रपाल मरावी, लक्ष्मी थदवानी, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ शौर्य नामदेव, बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण चंद्रेश कुमार चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे, महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर और साजिद।

अदनान सामी और अलका याग्निक के गाए युवा फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7:10 होने को है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला। विषय है जन विश्वास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं। एक ओर वेदों की वाणी,
2: हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं। एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति। एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आए मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की। हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
1: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव

0: खाब उसका दिखाई देता है। मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा, तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसमें संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक

0: थे इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर, वो राष्ट्र अपना प्रोवेनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 13 की संख्या बढ़ करके और 670 से ज्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में, उस समय में उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके, ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है, उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं, और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है, और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण, उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहाँ अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहाँ जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ, ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर के आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके, जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से

0: फ्रिज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहाँ परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहाँ लेकर के जाऊँगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूँगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूँगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ। और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्न एज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति बढ़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया। उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की जीडीपी में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा, तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है, होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है, निवेश विज रोजगार सर्जित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रोक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है, और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा, उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट, जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णुप्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए, जिस पर हम काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके

0: विजन के साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे, जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखी गढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहाँ से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 50 से ज़्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की, तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। यह हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे। उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पे काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च की 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए, प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था।

0: तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, उस सूली पे लटकाने एक तक का उपक्रम किया गया था। लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मेन्यूस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफ्रेंस कितना है, और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि हमारे पूर्वज जो है 2500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे, और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी, और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा, और न केवल भारत के प्रति अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी, और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई, राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था, देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी, और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पंख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आजादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा

0: रहने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की। अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े। जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए। और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें, जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इंपॉर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रिलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में

0: गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है। और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप, छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने हैं। एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया, जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी
1: जी
0: देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए हैं जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव होगा,
1: जी
0: या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई है, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, भाव जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग, जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसा क्या भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें।

0: भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें, और ये भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का, और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष में विशेष श्रृंखला भी हम सुन रहे थे, जिसमें अभी हमने सुना जनविश्वास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विषय पर बातचीत। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7:45 हो रहे हैं। वक्त है चित्रपट संगीत का। कार्यक्रम चित्रपट संगीत का पहला गीत है फिल्म साजन से, अनुराधा पौड़वाल की आवाज है। समीर ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अभी हमने सुना अनुराधा पौडवाल की आवाज में साजन फिल्म का गीत। कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में 100 डेज फिल्म का गीत, जिसे लिखा है रविंद्र रावल ने और संगीतकार हैं राम लक्ष्मण।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत का अगला और अंतिम गीत है फिल्म हमसे। मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी की आवाजें हैं। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी के गाए हम फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बज रहे हैं, वक्त है कार्यक्रम सुगम संगीत का। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे मधुशाला, मन्नाडे की आवाज़ में, जिसे लिखा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने और संगीत संयोजन है जयदेव का।

मन अड्डे की आवाज में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के लिखी हुई मधुशाला को अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत में FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का।

जेठ की वो तपती दोपहरी अब धीरे धीरे ढल रही है। आसमान के कोने में बादलों ने अपनी महफिल सजानी शुरू कर दी है और हवाओं में एक अजीब सी बेताबी है उस पहली बारिश की बूंद को चूमने की। इस सुहाने मौसम में जब मिट्टी की सौंधी महक जागने को बेकरार है, जैसे रजनीगंधा के फूल रात के अंधेरे में अपनी खुशबू से फिजा को सराबोर कर देते हैं, ठीक वैसे ही आज की ये शाम मानसून की पहली फुहार से पहले आपके दिल को पुराने और चुनिंदा गीतों की खुशबू से महकाएगी। तो थाम लीजिए यादों का दामन और डूब जाइए सुरों के इस सफर में।

इंतज़ार। जी हाँ श्रोताओं, जो हमें है मानसून के आने का। श्रोताओं, अभी अभी जो धुन आपके कानों से होकर दिल में उतरी है, उसने यकीनन एक हलचल सी मचा दी होगी आपके दिलों में। मानसून के आने से पहले इस हवा में एक जादू है। सूखी प्यासी मिट्टी पर जब हवा में तैरती नमी की चंद बूंदें भी गिरती है, तो जो सौंधी सी महक उठती है, उफ, दुनिया का बड़े से बड़ा इत्र, महंगे से महंगा परफ्यूम उस खुशबू के आगे पानी भरता नजर आता है। वो महक हमें सीधे खींच कर ले जाती है हमारे बचपन के उन दिनों में, जहाँ कागज़ की नाव अलमारी के किसी कोने में पहले से तैयार बैठी होती थी। हमारा ये कार्यक्रम रजनीगंधा भी उसी सादगी का प्रतीक है। आज के इस दौर में जहाँ सब कुछ बहुत तेज हो गया है, वहाँ ये मौसम और आकाशवाणी के ये सुर हमें थोड़ी देर ठहर

तैरना सिखाते हैं। ये मौसम कहता है कि भागना छोड़ो, जरा बैठो, खिड़की खोलो और इस ठंडी हवा को खुद से कुछ गुफ्तगू करने दो।

सचमुच कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है मानो समय वहीं ठहर गया हो। श्रोताओं, ग्रामीण अंचलों में या छोटे शहरों के उन पुराने मकानों में इस मौसम का मजा कुछ और ही होता है। याद कीजिए, जब आसमान में काली घटाएं घिरने लगती थी तो घर की छत पर या बालकनी में खड़े होकर उस ठंडी हवा का स्वागत करना कैसा लगता था। पतंग आसमान से नीचे उतर आती थी और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ तेजी से पर फड़फड़ाने लगते थे। एक अजीब सी हलचल, लेकिन उस हलचल में भी कितना ठहराव था। आज कंक्रीट के इन जंगलों में शायद हम उस आसमान को ठीक से देख भी नहीं पाते, लेकिन रेडियो की ये तान बंद कमरों की दीवारों को तोड़कर आपको सीधे उस खुले मुंडेर पर ले जाती है, जहां हवाएं सीधे आपकी जुल्फों से खेलती है।

श्रोताओं, जरा गौर से सुनिए। दूर पहाड़ों के पीछे बादलों ने ढोल बजाने शुरू कर दिए हैं। बिजली की एक हल्की सी कौंध शायद अभी अभी आपकी खिड़की के कांच पर चमकी होगी। हवा में अब वो गर्मी नहीं रही, एक ठंडी सिहरन है जो सीधे रूह को छू रही है। अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। प्रकृति ने अपना श्रृंगार पूरा कर लिया है और बस अब कुछ ही पलों में आसमान से वो पहली बूंद टपकने ही वाली है जो इस धरती की प्यास बुझाएगी। कहते हैं कि बारिश में हर कोई शायर हो जाता है, और जो शायर नहीं होता वो किसी ना किसी पुराने गीत को गुनगुनाने जरूर लगता है।

सुरों की इस महफिल ने आज की शाम को वाकई यादगार बना दिया। लेकिन श्रोताओं, वक्त की सुइयां किसी के लिए ठहरती नहीं हैं। घड़ी का इशारा ये कह रहा है कि अब मुझे आपसे विदा लेनी होगी। कार्यक्रम रजनीगंधा का ये सुरीला सफर आज यहीं मुकम्मल होता है। बाहर देखिए, शायद पहली बूंद ने आपकी छत को चूम लिया है। इस पहली बारिश का आनंद लीजिए, सौंधी महक को सांसों में भरिए और अपनों के साथ इस मौसम को जिए। आज के रजनीगंधा से अब अपने दोस्त अंशुल गुलकरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

कार्यक्रम रजनीगंधा अभी आप सुन रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही देर में हम समाचार अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र

0: की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।

0: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम बीएसएफ चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
3: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हो, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम

0: In the news at 9, good night.
1: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हो रहे हैं। आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।
2: और मेरी तन्हाई सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यह आवाज़ें मोहम्मद रफी की फिल्म का नाम है प्यार का मौसम, शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन हैं।

ये आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था प्यार का मौसम। आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में गुलशन बावरा की रचना, स्वर लता मंगेशकर का है और ये फिल्म है हाथ की सफाई।

ग्यावासी लता मंगेशकर की फिल्म का नाम था हाथ की सफाई। इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म आंधी में, गीत गुलजार साहब का, अर्जुन राहुल देव बर्मन की।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

इस दो गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार हैं गुजरे जमाने के जानी मानी ऐसी अदाकारा जो हैं बला की खूबसूरत, जिनके चेहरे पर है नूर।

0: अभिनेत्री श्यामा लाहौर में एक मुस्लिम परिवार में जन्मी थी। उनके माता पिता ने उनका नाम खुर्शीद अख्तर रखा था। फिल्मों में आने के बाद उनका नाम श्यामा पड़ा।
1: एक दिन मैं गई प्रकाश पिक्चर
0: जी,
1: प्रकाश पिक्चर वालों ने मुझे बुलाया और उसमें कहा नई माँ एक पिक्चर थी, उसमें रोल था छोटी लड़की का
0: जी।
1: तो मुझे बीजू भाई ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मैंने कहा खुर्शीद अख्तर। तो कह लगे खुर्शीद तो गाने वाली है, और फिर हमारे पास एक दूसरी भी है खुर्शीद, वो है खुर्शीद जूनियर, और ये तुम सीनियर कहाँ से आ गई
0: जी।
1: तो मैंने कहा तो फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं। मैंने कहा जैसे आप कहें। तो उन्होंने मुझे मेरा नाम श्यामा दिया।
0: अच्छा, उस
1: समय और मुझे
0: नाम
1: वो नाम इतना पसंद आया कि लोगों को अभी तक याद है कि श्यामा कौन है
0: जी। बिल्कुल।

1909 साल की नन्ही खुर्शीद ने पहली बार फिल्म जीनत की कव्वाली में बतौर सिंगर काम किया। उन दिनों नूरजहां की किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और खुर्शीद अख्तर यानी श्यामा अपनी सहेलियों के साथ पहुंच गई दादर के स्टूडियो में शूटिंग देखने। तभी उस फिल्म के निर्देशक और नूरजहां के पति शौकत हुसैन ने पूछा कि तुम में से कोई लड़की इस फिल्म में काम करोगी।

श्यामा ने तुरंत कहा, हाँ मैं करूंगी। बस इस तरह श्यामा का फिल्मी पर्दे की शुरुआत हो गई। हालांकि श्यामा के माता पिता हरगिज नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में काम करें, लेकिन श्यामा के जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा।

गाने में सिचुएशन ये है कि कार में गुरुदत्त और श्यामा हैं और रूठे हुए गुरुदत्त को श्यामा मना रही हैं। उन्होंने आंखों और चेहरे के भावों से ऐसी खास अदायगी की है कि जब जब आंखों से और चेहरे से अभिनय की बात चलती है तो श्यामा का नाम

श्यामा को बचपन से ही एक्टिंग और डांस से बेहद प्यार रहा है। स्कूल के दिनों में लंच टाइम में वे डेस्क पर खड़ी होकर डांस किया करती थीं। बाद में उन्होंने नृत्य और गायन की बाकायदा तालीम ली। घर में फुर्सत के लम्हों में डांस की प्रैक्टिस किया करती थीं। अब सुनिए फिल्म शारदा का ये गीत।

0: श्यामा को फिल्म शारदा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म देखने की बड़ी शौकीन रही हैं श्यामा। खास बात यह है कि करीब करीब हर फिल्मों से जुड़ी उनकी याद आज भी ताजा है।
1: जब मैं साइड हीरोइन बनी
2: जी,
1: तो तब दिलीप साहब के साथ एक पिक्चर आई थी मेरी, उसका नाम था तराना
2: जी,
1: जिसमें थी मधुबाला और दिलीप साहब और श्यामा ही कहूंगी अपने आप को अब
2: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर पिक्चर मिली मुझे सजा। सजा पिक्चर में भी देवानंद साहब थे और निमी जी।
0: उस दौर के जाने माने सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री ने श्यामा की खूबसूरती को कैमरे के लेंस से देखते हुए और सेल्यूलॉइड पर उतारते हुए उन्हें दिल में उतार लिया। फली मिस्त्री और श्यामा पहले प्यार के बंधन में बंधे और सन 1953 में फली मिस्त्री से उनका विवाह हो गया।

1979 में श्यामा अकेलेपन से घिर गई और उनके पति फली मिस्त्री उन्हें इस फानी दुनिया में अकेला छोड़ गए। लेकिन श्यामा हिम्मत नहीं हारी, वे कदम दर कदम आगे बढ़ती गईं फिल्म संसार में। अभिनेत्री श्यामा ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। फिल्मी पर्दे पर लगभग एक दशक श्यामा का एक छत्र राज था, यानी पांचवें दशक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में उनका नाम शुमार था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की इस छवि को श्यामा ने कभी धूमिल नहीं होने दिया। उन दिनों सशक्त अभिनय के चलते उनके पास फिल्मों की भरमार थी, उनकी अदाकारी के जलवे थे और श्यामा उन दिनों खूब व्यस्त रही फिल्म संसार में।

श्यामा ने पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए, लीड रोल भी किए, चरित्र अभिनेत्री के किरदार को भी बड़ी कुशलता से निभाया और कई फिल्मों में खलनायिका के रोल को भी पर्दे पर उन्होंने साकार किया। बहरहाल सुनिए बरसात की रात फिल्म का ये गाना।

0: मैंने ऐसे ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम किया है कि वो कहते हैं ना कि प्यास बुझ गई
1: जी।
0: उसका नाम है बीमल रॉय
1: जी,
0: गुरुदत्त
1: जी,
0: कारदार साहब, फिर सत्यन बोस, फिर शक्ति सामंता, फिर ऋषिकेश मुखर्जी, फिर एसपी ईरानी, फिर बी मित्रा
1: जी,
0: और फिर आईएस जौहर, वो भी डायरेक्टर थे
1: जी।
0: और किन किन के नाम गिनवाऊं, बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके नाम फिलहाल मुझे याद नहीं है, लेकिन कई ऐसे भी डायरेक्टर आए जिनके साथ वाकई मेरी तमन्ना थी कि मैं काम करूं
1: जी।
0: वैसे तो मैंने बचपन से लेके अभी तक 60 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो कहते हैं ना कि सिर्फ एक आदमी बचा होगा बेचारा
1: जिनके साथ बेचारा अच्छा।
0: जिनके साथ मैंने काम नहीं किया
1: जी। दोस्तों आइए अभिनेत्री श्यामा की मशहूर फिल्मों पर एक नजर डालें। फिल्म मिर्जा साहिबा, खानदान, छोटी बहन, स्वर्ण सुंदरी, भाई भाई, छू मंतर, लाला रुख, दरवाजा, धूप छांव, भागवत महिमा, शबनम, निशाना, रूपलेखा, पतंगा, तकदीर, आसमान, ठोकर, मुसाफिर खाना वगैरह वगैरह। बाद की कुछ फिल्मों में अभिनेत्री श्यामा चरित्र अभिनेत्री के रूप में नजर आईं, लेकिन उन फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय की बारीकी से दर्शकों को खूब आकृष्ट किया। श्यामा की उस दौर की फिल्में हैं खेल खेल में, सेवक, अजनबी, नया दिन नई रात, हनीमून, सूरज और चंदा, कंगन, जिंदगी जिंदगी, पायल की झनकार वगैरह वगैरह। अभिनेत्री श्यामा चली गईं इस फानी दुनिया से, दे गईं फिल्मी दुनिया को खलिश और सन्नाटा। जब इंसान नहीं रहता तब वो हमारे आसपास और ज्यादा रहता है, उसके न होने का एहसास कचोटता है, दुख देता है। जब सुनी थी श्यामा जी की आवाज तो वे सामने थीं, उन्हें छूकर उन्हें नमन किया था, लेकिन आज सिर्फ उनकी आवाज है, वे नहीं है हमारे

0: शोध आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

छाया गीत में आप सभी का स्वागत है। ये दुनिया ही अजीब है, यहाँ कोई प्यार मांगता है तो उसे मिलती है झिड़की। उस पर आलम ये है कि एक मुस्कान को भी लोग प्यार समझ बैठते हैं और संजोने लगते हैं ढेर सारे एहसास। मौका मिलते ही चल पड़ते हैं इन भावनाओं का बोरिया बिस्तर बांधकर अपनी मंजिल की ओर। पर कहते हैं ना, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। एक ना एक दिन असलियत सामने आ ही जाती है और होता है कुछ ऐसा हाल।

0: बार जो दिल टूट जाता है तो गिनी जाती हैं अपनी कमियां, 100 नुक्स खुद में निकाले जाते हैं तो 100 इल्जाम दिए जाते हैं हालातों को। यूं होता तो ऐसा ना होता, यूं ना होता तो ऐसा होता, पर क्या इन कमियों को गिनकर कभी गुजरा वक्त और बिगड़े हालात सुधरते हैं भला? लेकिन करें क्या, मन तो यही सोचता रहता है कि शायद यूं होता तो यूं ना होता।
1: हारमोनियम बजाया, तबला बजाया, ये भी बजाया और वो भी बजाया, मगर अफसोस
2: गाना न आया, बजाना न आया।

की सड़क टेढ़ी है देसी राग की ई, ई, ई, ई, ई, चल मोड़ ले टमटम गले को गर्म कर ले गले को गर्म कर ले छोड़ अंग्रेजी में एक एटम हाँ अंग्रेजी में एक एटम हाँ अंग्रेजी में एक एटम।

जब अपनी कमियों और हालातों को दोष देकर कुछ आराम मिलता है, तब समझ आता है कि भाई सारा कसूर है इस दिल का। ये बदमाश न जाने क्या क्या मन में घोलता रहता है और मन इसके इशारे पर नाचता रहता है। लाख कोशिशें की जाती हैं कि दिल और दिमाग की दुश्मनी करवा दी जाए। न ये दिल बहकाएगा और ना ही डोलेगा मन, वरना इस दिल का क्या भरोसा, पता नहीं कब कहां कौन सी मुसीबत खड़ी कर दे।

छाया गीत में आप सुन रहे हैं दिल और दिमाग का सुरताल। लो जी, लाख समझा लो पर मन को तो करनी है अपनी ही। अब देखिए ना, आ पहुंचा है किसी के पीछे पीछे इतनी दूर, और उस पर ये दिल मन को बहका रहा है कि कुछ बदमाशी तो की जाए। अब इन दोनों बदमाशों के चक्कर में लेने के देने ना पड़ जाएं। जाने कौन सा सुर साध रहे हैं और कौन सा राग चल रहा है इनका।

जहाँ दिल और दिमाग अपने सुर और ताल मिला लें, वहाँ समझो इंसान का बंटाधार है। उस पर जो नजर आए कोई खूबसूरत चेहरा, तो मानो हम गए काम से। डरते डरते भी आ पहुंचे हैं उनके पीछे, लेकिन वो भाई वो तो वो हैं, क्या कहने।

गाए माशा अल्लाह बाकी अदाए माशा अल्लाह माशा अल्लाह पलकों की उठती गिरती चिलमन तीर चलाए माशा अल्लाह दिल का करार हो तुम जाने बहार हो तुम करने को आए हैं नजारे हम बेचारे प्यार के मारे और तुम तो तुम हो

तुम्हारी सबसे आला ला ला ला ला। बात तुम्हारी रस का प्याला अपना तो हाल कुछ ना पूछो कैद हुआ है चाहने वाला जुल्फों के जाल में हम तेरे ख्याल में हम उलझे हैं अरमा हमारे हम बेचारे प्यार के मारे और तुम तो तुम हो बहरे बहरे तो डरते डरते

0: दिल और दिमाग की ये तिकड़म कभी कभी काम भी कर जाती है। जी हाँ, भले ही सामने हमसे बातें ना की हों, लेकिन खिड़की से वो भी झांकते हैं चुपके चुपके। तो क्या उधर भी चल रही है दिल और दिमाग की सरगम? क्या वहां भी हो रही है वही तिकड़म? अब ये बात जाने भी तो कैसे। हाँ, एक रास्ता है
1: वो झरोके से।

0: जिंदगी आज नजर मिलती ही लग जाए।
1: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम में अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel.